0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि हर मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें एक भी गुण ना हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम गुण देखते हैं या अवगुण। हर मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है। भगवान की संतान होने के नाते हर मनुष्य आत्मा में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता के संस्कार विद्यमान होते ही हैं। हर आत्मा में ये 7 गुण हैं। जो मनुष्य आत्मा जिस गुण को ज्यादा यूज करेगी, अपने कार्य में लाएगी, उस गुण का विकास होगा और वो मनुष्य आत्मा उसी गुण में मास्टर बनेगी। गुणों को बढ़ाने का सरल उपाय है उस गुण को अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करना। जब हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हैं, तब हम अपने अंदर के शांति को बढ़ाते हैं। हर परिस्थिति में कैसे रिएक्ट होना है, यह मेरी चॉइस है। अगर हम परिस्थिति में गुस्सा करेंगे तो गुस्से वाले बन जाएंगे। जब मनुष्य आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप के विपरीत अवगुणों को चुनती है, तब वह दुख महसूस करती है, क्योंकि उसने अपने ओरिजिनल स्वभाव के विरुद्ध जाकर अवगुणों को चुना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये अवगुण हैं। परमात्मा कहते हैं तुम्हें अवगुणों को छोड़कर अपने वास्तविक गुणों को चुनना है। जैसे राजहंस मोती चुगता है और बबूला कंकड़ चुगता है, उसी प्रकार हमें राजहंस बनकर गुणों रूपी मोती को चुगना है। हर मनुष्य आत्मा जब परम धाम से इस धरा पर आई, तब वह पवित्र थी, 7 गुणों से भरपूर सतोगुणी थी। आत्मिक शक्ति भरपूर होने के कारण उसकी बैटरी फुल चार्ज थी। जब हम मनुष्य आत्मा आत्मिक शक्ति से भरपूर होते हैं, तब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। अनेक जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, अर्थात हमारी आत्मिक शक्ति घटने लगती है। जब मनुष्य आत्मा की शक्ति घटती है, तब उसके कर्म विकर्म बन जाते हैं। आत्मिक स्मृति को छोड़ देहभान में आने के कारण मनुष्य आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रवेश करता है। कलयुग तक आते आते मनुष्य आत्मा के अंदर ये विकार बढ़ जाते हैं। आत्मिक शक्ति घटने के कारण मनुष्य आत्मा पर कलयुगी वायुमंडल का असर होने लगता है, इसीलिए उसके कर्म बिगड़ते हैं। जैसे ही कर्म बिगड़े, मनुष्य का भाग्य भी बिगड़ता है। मनुष्य आत्मा का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। देहभान, विकार, परचिंतन, परदर्शन, निंदा, ग्लानि से हमारी आत्मिक शक्ति घटती है। जिस शक्ति की हमें जरूरत होती है अच्छे कर्म कर अच्छा भाग्य बनाने के लिए, उसे हम दूसरों के अवगुण देखने में खर्च कर देते हैं। जितना दूसरों की निंदा ग्लानि करेंगे, अवगुणों का वर्णन करेंगे, अवगुण देखेंगे, उतनी हमारी आत्मिक शक्ति घटेगी, भाग्य बिगड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कमजोर मनुष्य आत्मा गलत कर्म करेगी ही, क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसे कमजोर मनुष्य आत्मा के कर्मों का चिंतन, वर्णन, निंदा, ग्लानि हमारी शक्ति भी घटाता है और हमसे भी कोई ना कोई गलत कर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के अवगुण देखने में गवा दी। हम भी कोई ना कोई गलत कर्म करने लग पड़ेंगे और हमारा भी भाग्य बिगड़ेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी के अवगुणों को ना देख, उसमें क्या गुण है उसे ढूंढने की कोशिश करो। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं हम जिस भी चीज पर ध्यान लगाएंगे वो चीज बढ़ेगी, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित किया है। अगर हम अवगुणों पर ध्यान लगाएंगे तो अवगुण समाज में बढ़ेंगे, सामने वाली मनुष्य आत्मा और कमजोर बनेगी और उसके साथ साथ हम भी कमजोर बनेंगे।

क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा निगेटिविटी की ओर लगाई। इसके विपरीत जब हम प्रयत्न पूर्वक किसी में गुण खोजने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा सकारात्मक बातों की ओर लगाते हैं और इसी कारण समाज में ये गुण बढ़ेंगे। सामने वाली मनुष्य आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी और हमारी भी शक्ति बढ़ेगी। कलयुग में ज्यादा अवगुण नजर आते हैं क्योंकि हर कोई शक्तिहीन हो गया है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भले सामने वाले मनुष्य आत्मा में कई अवगुण हैं, लेकिन एक ना एक गुण तो होगा ही। आप अपनी ऊर्जा उस एक गुण पर लगाओ। जैसे ही हम अपना फोकस अवगुणों को देखने से हटाकर गुण खोजने में लगाते हैं, तब हम गुणग्राही बन जाते हैं। गुणग्राही अर्थात दूसरों के गुणों को परखना और उन्हें अपने जीवन में धारण करना। गुणग्राही बनने से व्यक्ति की कल्याणकारी भावना जागृत होती है और मन में कभी भी हलचल नहीं होती। हर व्यक्ति में कमियां देखने के बजाय उनकी खूबियों को देखना और उसका सम्मान करना। परमात्मा कहते हैं, जब आप गुणों को ग्रहण करने की आदत बना लेते हैं, तो दूसरों की नकारात्मक बातें आपका मन अशांत नहीं कर पाती। परमात्मा कहते हैं, हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। आज तक कलयुग में हमें दूसरों के अंदर की बुराई देखने की ही आदत पड़ी थी। परचिंतन, परदर्शन पतन की जड़ है। जितना हम बाह्यमुखी होंगे उतना हम दुखी होंगे। जितना हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते रहेंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे। दूसरे हमारे अनुसार नहीं चल सकते। हर मनुष्य आत्मा स्वतंत्र है। हर मनुष्य आत्मा के अपने संस्कार, स्वभाव, विचार है। हर मनुष्य आत्मा अपने अपने शक्ति अनुसार कर्म करती और भाग्य बनाती है। आज तक हमने दूसरों के अवगुणों को देखने में बहुत शक्ति गवाई, लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अब गुण को खोजो। गुणग्राही बनेंगे तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी, हम भी गुणवान बनते जाएंगे। हमें केवल अपनी आदतें ही तो बदलनी है। दूसरों के स्वभाव संस्कार देखने की आदत तो हमें है ही, तो क्यों ना परमात्मा के श्रीमत अनुसार बुराई देखने के बजाय अच्छाई देखने में अपनी ऊर्जा को लगाए। अच्छाई देखते देखते एक दिन हम भी अच्छे बन ही जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि गुणों को देखोगे तो तुम भी गुणवान बन जाएंगे, अवगुणों को देखोगे तो तुम भी अवगुणी बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं, कलयुग में बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन तुम्हें देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। स्वयं की रक्षा करनी है कलयुगी वायुमंडल से। परमात्मा ने सभी मनुष्य आत्मा को ज्ञान, शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, पवित्रता, आनंद, ये सातों गुण दिए हैं। इसलिए हर मनुष्य आत्मा इन सातों गुणों को अनुभव करना चाहती है। शक्ति घटने से हर मनुष्य आत्मा
ये गुण स्वयं में अनुभव करने के बजाय बाहर तलाशती है। जब बाहर भी नहीं मिलता तो दुखी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं, तुम्हें ये गुण बाहर नहीं तलाशना है, बल्कि इन गुणों का चिंतन करो तो तुम्हें इन गुणों का अनुभव होने लगेगा। तुम हो ही शांत स्वरूप आत्मा। हमें इन सातों गुणों का चिंतन करके इन्हें अनुभव करना है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं हर व्यक्ति से, प्रकृति से, प्रकृति के पांचों तत्वों से, फूल पौधों से, नदियों से गुण धारण करो। परमात्मा कहते हैं सागर से गंभीरता का गुण धारण करो। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो सागर अपने लहरों के द्वारा उसे किनारा कर देता है, अपने अंदर नहीं समाता। उसी प्रकार हमें कलयुगी अवगुणों का कीचड़ा किनारे कर देना है, अपने अंदर नहीं समाना। जैसे गोताखोर सागर के तले में जाता है तब उसे मोती रत्न मिलते हैं, वैसे ही हम बच्चों को परमात्मा के ज्ञान सागर के तले में पहुंचना है ताकि हमें भी ज्ञान रत्नों की प्राप्ति हो। हवा के कारण सागर के ऊपर कितनी भी लहरें क्यों न हो, लेकिन सागर अंदर से शांत धैर्यव्रत होता है। परमात्मा कहते हैं बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें सागर के अंतरंग के समान शांत धैर्यव्रत होना चाहिए। सागर के किनारे पानी के वजह से घिस घिस कर पत्थर भी शालिग्राम बन जाते हैं। इसी प्रकार परिस्थिति के अनुभवों से तुम भी गुणवान बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जैसे अग्नि में कुछ भी डालने से वो उसे जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार जब हम परमात्मा याद की अग्नि को जलाते हैं तब हमारे जन्म जन्म के विकारों का कीचड़ा जलकर भस्म हो जाता है। परमात्मा कहते हैं वायु समान मन को हल्का रखो। मन से भूतकाल की घटनाओं का, दूसरों के अवगुणों का बोझ उतार दो। परमात्मा कहते हैं आकाश की तरह विशाल बुद्धि रखो, विशाल हृदय रखो। हद इंसान को बांधता है। आसमान की तरह अपने बुद्धि को बेहद में रखो, अर्थात उच्च विचार करो। परमात्मा कहते हैं जल में वस्तुओं को धोने, शुद्ध करने का गुण है। जिस प्रकार जल शरीर को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार ज्ञान का जल मन बुद्धि को स्वच्छ करता है। जल में कोई पत्थर मारता है तो बहता हुआ पानी उस पत्थर के नामो निशान को मिटाकर आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब परिस्थितियां, लोग हमारे ऊपर वार करें तो उसके वार के नामो निशान को मिटाकर हमें भी आगे बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं जैसे चंद्रमा शीतल है, उसी प्रकार आप भी शीतल बन जाओ। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी में संपूर्ण रूप में सुहावना लगता है, उसी प्रकार आपका संपूर्ण पवित्रता का रूप, 16 कला संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न सुहावना रूप लगता है। परमात्मा कहते हैं तुम्हें पूर्णमासी चंद्रमा के तरह संपन्न और संपूर्ण पवित्र बनना है। परमात्मा कहते हैं जैसे गुलाब सुगंधित मनमोहक लगता है, उसी प्रकार परमात्मा के बच्चे भी खिले हुए गुलाब की तरह हर्षित मुख रहे। जैसे कमल फूल दलदल में रहते हुए भी उस दलदल के कीचड़ कमल फूल को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस कलयुगी वायुमंडल का कीचड़ा भी आपको स्पर्श ना करे। कमल फूल समान आप भी न्यारे प्यारे रहो। जैसे सूर्यमुखी फूल सदा सूरज को ही देखता है,
उसी प्रकार आप भी सदा परमात्मा को अपने मन बुद्धि की नेत्र से निहारते रहो तो शक्तिशाली बन जाओगे। जैसे रात रानी का फूल रात्रि में सुगंध देता है, उसी प्रकार आप भी इस कलयुगी रात्रि में अपने गुणों की सुगंध फैलाओ। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा गुणों का सागर है। अगर हमें गुणमूर्त गुणग्राही बनना है तो हमें परमात्मा के गुणों का चिंतन करना होगा। परमात्मा क्षमा का सागर है, हमें भी मास्टर क्षमा का सागर बन सबको माफ करना होगा, क्योंकि हम भी तो परमात्मा की संतान है। जैसे हमारा परमपिता होगा वैसे ही तो हमें बनना होगा। हमारा परमपिता रहम का सागर है, वो ये नहीं देखता कि उसका बच्चा कैसा है, कितने अवगुण है, वो तो सब पर रहम करता है। हमें भी अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करनी होगी। परमात्मा अपकारी पर उपकार करने वाला है। भक्ति में अज्ञानता के कारण हमने परमात्मा की बहुत ग्लानि की, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा। कण कण में तो धूल मिट्टी पत्थर कीचड़ा गंदगी सब आ गया। क्या पवित्रता का सागर, पतित पावन जो हमेशा पवित्र है, परम है, वो धूल मिट्टी पत्थर कीचड़े में होगा? नहीं ना, परमात्मा तो सबसे पवित्र स्थान परम धाम में रहने वाला है। अज्ञानता के कारण हमने उसे सर्वव्यापी कण कण में कहकर उसकी ग्लानी कर दी। ऐसा अपकार करने वाले हम बच्चों पर भी परमात्मा ने उपकार किया। ग्लानी करने वाले को भी गले लगाया। इतना विशाल हृदय वाला है मेरा परमात्मा। हमें भी ऐसा बनना है। परमात्मा ज्ञान शांति शक्ति प्रेम सुख पवित्रता आनंद का सागर है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, सभी को सुख देता है। परमात्मा के सामने कोई भी आए वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, सभी को उनके कमी कमजोरियों के साथ अवगुणों के साथ स्वीकार करता है। परमात्मा पतित पावन है, पतित विकारों से भरे हुए मनुष्य आत्मा को पावन पवित्र बनाने वाला है। परमात्मा पत्थर बुद्धि वाले मनुष्य को भी पारस बुद्धि वाला बनाता है। परमात्मा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला है। परमात्मा मनुष्य आत्माओं में दैवी गुण भरकर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। परमात्मा कल्याणकारी है। परमात्मा किसी का अकल्याण नहीं करता। परमात्मा सभी को सुखों का रास्ता बताता है, सद्गति देता है। परमात्मा सभी को श्रेष्ठ कर्म करना सिखाकर सभी का श्रेष्ठ भाग्य जगाता है। परमात्मा सतचित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा सुख दुखों से न्यारा है। परमात्मा गुणों के भंडार है। अगर हम अपना ध्यान मनुष्यों के अवगुणों से हटाकर परमात्मा के गुणों पर लगाएं, तो हम कितने गुणवान बन जाएंगे। क्या रखा है मनुष्यों के अवगुणों का चिंतन करने में, हमारी ही शक्ति घटेगी। इससे तो अच्छा है कि अपना ध्यान गुण खोजने में लगाना, उन गुणों को धारण करने में लगाना, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना। जितना हम गुणों का चिंतन करेंगे, उतना हम गुणवान बनेंगे। अब स्वयं को बदलना है, उस परमात्मा के गुणों को अपनाना है, क्योंकि हम भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चा बाप समान ही तो होगा। हमारा परमपिता इतना पवित्र, इतना अच्छा, और कलयुग तक आते आते हम क्या से क्या बन गए। अब वापस ऊपर चढ़ना है, व्यक्तियों से, प्रकृति से, परमात्मा से गुण उठाने हैं, गुणों को ग्रहण करना है, गुणों को धारण कर गुणग्राही बनना है। गुण धारण भी तभी होंगे जब हमारे अंदर शक्ति होगी, और शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना है। तभी हम गुणग्राही, गुणमूरत बन पड़ सकेंगे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। जी हाँ, जहाँ सेंसेक्स के इंडेक्स को देखते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है। तो जब हमने अपने आप को देखा और हमने पिछली कड़ी में आपसे कहा था कि एक मिनट का पॉज जरूर लें, एक सेकेंड का पॉज जरूर लें और देखें कि दिन भर में आपकी खुशी कहाँ तक जाती है, तो यो यो करती इस हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास है इस पूरी श्रृंखला में। और हमारा सौभाग्य कि आज भी हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति। हाउ योर इंडेक्स
0: टुडे? इट्स परफेक्टली फाइन अभी तक तो, लेकिन अगेन यू नो लाइक हम इतने अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कि हमें नहीं पता
1: कब क्रैश करेगा,
0: कब क्रैश करेगा और कब कोई। अब अगर पिछली कड़ी को देखते हैं तो हमने ये समझा था, देखा था ये बात कि जैसे ही किसी अपने को जिस पर जिसकी खुशी पर मेरी खुशी निर्भर कर रही थी, उनका इंडेक्स खराब हुआ तो मेरा इंडेक्स भी खराब हो रहा था। वो एक्चुअली हम अल्टीमेटली इस पर भी आना चाहेंगे सुशिवानी कि कैसे ये सब अनअफेक्टेड में रह पाऊंगी।
1: एक्चुअली जो पिछली बार हमने बात किया, आई वाज जस्ट थिंकिंग राइट नाउ व्हाइल यू वर टॉकिंग, वो एक कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल फेलियर भी बनता है।
0: हाँ,
1: यू नो सपोज आई वाज जस्ट पुटिंग इट ऑन माय सेल्फ एंड आई थॉट कि अगर मैं आज सारा दिन मेहनत करूं आपके लिए, कुछ करने के लिए कि आपको खुश करूं, और फिर आप नहीं खुश हो, तो देन दैट बिकम्स माय पर्सनल फेलियर कि मैं नहीं खुश कर पाई आपको। तो दो मेरे ऊपर वो आ जाते हैं, एक कि आप खुश नहीं हुए और दूसरा मैं केपेबल नहीं थी,
0: मैं फेल हो गई।
1: तो वो पर्सनल फेलियर भी कहीं ना कहीं मुझे दर्द में ले जाता है, और आप खुश नहीं हुए वो भी मुझे दर्द में ले जाता है,
0: तो मेरी खुशी बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। वंडरफुल। सो अगर दो तरह का दबाव पड़ेगा तो मेरा सेंसेक्स डेफिनेटली डाउन जाएगा, तो उन दबावों से कैसे अपने आप को ध्यान रखना है वाली बात है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं खुशी के बारे में सोच रही थी शिवानी, तो ना सिर्फ लोगों के साथ, मेरे पास बहुत सारी और चीजें खुशी देती हैं। When I buy a new dress, you know.
1: You're wearing a new sari today.
0: Yes. People have been talking about my sari, actually, if I look at it. Yeah. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं, या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूं कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूं कि घर, इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, यू नो कई बार, या फर्नीचर, सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिजाइनर है, जो बहुत इट डेफिनेटली गिव्स me happiness.
1: So let's keep buying every day new things.
0: No, but we can't
1: do that. सही बात है। It is true. एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में जरूर ढूंढते हैं। एक्चुअली तो अगर हम अपनी पूरी दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, समटाइम्स एन एडिक्शन, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना। समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस।
0: अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, यू नो व्हेन यू सेड इट आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज देखी, सपोज मैंने शोरूम में देखी, सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विद मी till the time I buy it, it stays, you know.
1: Yes.
0: And true. The thought keeps on coming that true. I have to buy that.
1: Because जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई. You know, अगर आप अटैचमेंट की बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहां पे ड्रेस है या गाड़ी है, वट एवर, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ इट इज देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड. चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माय माइंड. एनीथिंग व्हिच इज ऑन माय माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर
0: इज अटैच्ड,
1: माय अटैचमेंट, पीपल ऑन माय माइंड.
0: एक्टर पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग
1: में. मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर
0: हमेशा, यस,
1: इट इज लिविंग विद दोज पीपल या वो ऑब्जेक्ट्स या वो सिचुएशंस. तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड. तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते ही हैं सुख सुविधाओं के साधन, यू नो, सुख भी सुविधा भी. तो सुविधा डेफिनेटली कम्फर्ट, बट समवेयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने मिक्स कर दिया और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी.
0: लेकिन इफ आई एम कम्फर्टेबल, आई एम हैप्पी.
1: कम्फर्टेबल फिजिकली,
0: No, otherwise.
1: Let's look at it. Fine. अगर मैं लेट्स लुक एट इट डज दिस लॉ वर्क फॉर मी कि अगर मैं फिजिकली कंफर्टेबल हूँ देयर फोर मैं खुश हूँ विल दैट ऑलवेज बी एप्लीकेबल
0: आई फील दैट वे
1: अच्छा चलो आज आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं ठीक है
0: इट फील्स गुड यस
1: इट फील्स गुड और फिर आप उस गाड़ी में बैठ

0: स्टिम्युलेंट है, एक नवीनता है, एक कुछ एक्साइटिंग है, वो मैं कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. कितनी देर?
1: हाँ उतनी देर तक
0: है ना. अब उतनी ही देर में वो कंफर्टेबल गाड़ी, वो गाड़ी कंफर्टेबल है और वो हमेशा कंफर्टेबल रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड. ठीक है ना. लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड?
1: नहीं,
0: दिस इज
1: ऑफ
0: व्हाट वी
1: कोर्स
0: हैव टू
1: नॉट.
0: से कि वो ऑब्जेक्ट किस क्या चीज देने के लिए बना है.
1: वो कंफर्ट दे रही है, वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है, वो सब कुछ
0: उसका
1: कर रही है.
0: एसी बहुत अच्छा
1: फीचर्स
0: है,
1: उसके हैं ये.
0: उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है. ये चीजें मेरे शरीर को, मेरे कानों को, मेरे कंफर्ट को, मेरे बैठने के पोस्चर को, मेरी बैक को, ये सब चीजों को बहुत कंफर्टेबल है. आज कंफर्टेबल है, कल होगा और हमेशा रहेगा. उसका कंफर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है. लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं. आपका कंफर्ट लेवल हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जो फीचर उसने आपको सेल किया उस कार ने, उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा, तो हमेशा रहेगा ना, हमेशा रहेगा. आप कभी भी उसमें बैठो, लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे?
1: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम खुश हैं.
0: अभी आप ऑफिस से निकले, आपके अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में, खुश हैं या कंफर्टेबल हैं?
1: नहीं है, खुश नहीं है.
0: कंफर्टेबल तो है ना, लेकिन
1: तो कंफर्टेबल होते ही
0: हाँ.
1: मैं थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है. सी
0: सी, कंफर्ट तो इज नो डिनाइंग के हमें फिजिकल कंफर्ट चाहिए, लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे. हमने कहा, आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल बी हैप्पी, बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर हो सके बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ में कि मैं एक्चुअली सुसाइड करने का सोच रही हूँ, या मैं अभी अभी साइकाइट्रिस्ट से ही आ रही हूँ उस गाड़ी के अंदर बैठ
1: सही बात है. वो तो
0: के.
1: एक्चुअली
0: या आई
1: यस.
0: मीन इट जस्ट द कार इज नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व माई इश्यूज इन लाइफ, द कार इज नॉट बीइंग एबल टू गिव मी
1: लेकिन
0: हैप्पीनेस.
1: उतनी देर तक तो दे रही है ना हैप्पीनेस,
0: कंफर्ट
1: थोड़ी
0: दे रही
1: देर.
0: है ना,
1: हाँ
0: कंफर्ट दे रही है. सी, अब हो सकता है कि मैं एक 2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी
1: एक
0: में
1: सेकेंड.
0: हूं.
1: यहाँ ना अगर मैं एंगर में हूँ, आई एम वेरी एंग्री अपने, या मैं कुछ बहुत पेन में या हर्ट में आती हूँ और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, अब यहाँ पे ये कंफर्ट भी ना होता तब तो मैं और एंग्री हो जाती.
0: नो डिनाइंग
1: तो
0: दैट.
1: कम से कम एक नॉच कम तो किया उसने एंगर को में.
0: गुस्से को आपको ये कम नहीं करेगा.
1: हाँ मतलब
0: आपका
1: मेरे
0: शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा तो आपका एक जिस चीज का आपको ध्यान रखना होता है, एक चीज आपके यहां से निकल जाएगी. लेट्स से एसी भी नहीं है तो बहुत पसीना है तो मैं उस बात से परेशान हूं, लेकिन चलो कम से कम कुर्सी तो ठीक है ना. ठीक है, अगर कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होती तो एसी भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, लाइट्स भी इतनी ज्यादा है, तो ऑब्स्टिकल्स जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कंफर्टेबल कुर्सी दे दी तो मेरा वो एक
1: ऑब्स्टिकल कम
0: ऑब्जेक्ट
1: हो.
0: जिसके बारे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ वो मेरी लिस्ट से बाहर चला गया. लेकिन कुर्सी मुझे खुशी दे देगी
1: ये नहीं हो
0: या
1: सकता.
0: मुझको ताकत
1: मेरा
0: दे
1: जो
0: देगी
1: बेसिक वो था वो नहीं कर
0: वो
1: पाती
0: नहीं
1: हूँ.
0: करेगी. हाँ ये है कि कंफर्टेबल कुर्सी होने की वजह से मैं उसके बारे में एटलीस्ट निश्चिंत हो गई, नहीं तो मैं कुर्सी पर भी बैठ के बोलती रहती बैठा ही नहीं जा रहा, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है. लेकिन कुर्सी खुशी नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही. अगर ये मुझे खुशी दे देती तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊं ना इस पर बैठते. आई एम स्टिल इन पेन, आई कुड बी इन एंग्जाइटी, आई कुड बी इन एंगर. कुर्सी पर बैठने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता. हाँ एक और बात जिसके लिए आप गुस्सा करने वाले थे
1: तो एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं आने देता.
0: वो ठीक
1: और
0: है.
1: दूसरा एक और भी है कि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आते ही आई हैव सीन दैट, मतलब ज्यादातर लोगों के सामने, कि अगर वो बहुत गुस्से में है कुछ है, अपनी कंफर्टेबल जगह पे आते ही एक बार को तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मतलब ले सकते हैं
0: इफ दे
1: वो.
0: डू दैट दैट्स फाइन, बट फिर भी गुस्से का,
1: हाँ पूरा साइकिल तो चलता
0: और जो
1: रहता
0: ये ऑब्जेक्ट्स जो
1: है.
0: हम
1: एक्चुअली हम भूल ही
0: खरीदते
1: जाते हैं उसके बाद. तो
0: उस टाइम
1: जब
0: हमें
1: इतनी
0: याद भी नहीं
1: मेजर
0: रहता.
1: प्रॉब्लम चल रही होती है, यस ऑफ कोर्स आई थिंक यू ऑल एग्री कि जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आ जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ये क्या कर रहे
0: आपने जब पहले दिन अगर बड़ी गाड़ी खरीदी तो एवरीवन इन द हाउस इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? 8 दिन, 10 दिन, महीना?

0: दो महीना, उसके बाद इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस, जैसे बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। फिर वही जीवन है, झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही डिस्कशंस, फिर हम कहें कौन सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लें। सी व्हाट इज हैपनिंग, मेरी जीवन, जैसे आपने शुरू में बोला, वो यो-यो की तरह जो चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है। अब मुझे कुछ कुछ ऐसा करना है हर थोड़े दिन बाद, जिससे आई गो टू द पीक।
1: यस, यू नो, बिकॉज़ आई यस
0: आई
1: बिकॉज़
0: अग्रीड कि माय लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स। अब डाउन्स किस सिचुएशन में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग अलोंग विद पीपल, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार स्वभाव टक्कर में आ रहे हैं, मेरा दर्द है। अब मैं क्या करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं अप वाली फीलिंग क्रिएट कर
1: क्योंकि
0: सकूं?
1: जैसे ही हम ज्यादा देर लो में होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है.
0: नाउ
1: फिर लगता है कि उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए.
0: अब अगर मेरी फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड है हम एक दूसरे से, ये चलो आज मैं एक चीज खरीद के लाती हूँ घर के लिए, एक प्लाज्मा ले लिया आज, ठीक है। सी द होल एनवायरमेंट इन द हाउस
1: चेंजेस,
0: चेंजेस,
1: यस, वी रीच टू
0: सारे,
1: दैट अगेन. वो योयो का वो ऊपर वाला आ गया.
0: और सब एक दूसरे से आज बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, सब कहते हैं आज तो ट्रीट होनी चाहिए,
1: लेट्स थ्रो अ
0: जिन्हें
1: डिनर पार्टी.
0: अपना
1: यू नो,
0: अंदर।
1: अगेन कई रिलेशनशिप्स में देखा है, कई कपल्स में, कि जब ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, सो दे डू कि फ्रेंड्स के साथ एक डिनर कर लेते
0: यस
1: हैं.
0: यस, सो व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स? तो जैसे हम ये लाते हैं घर के अंदर, तो एक नवीनता आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक कुछ हमारी वो फीलिंग कि हमने अचीव किया वो बढ़ता है, और सडनली सब लोगों का अटेंशन किस चीज पर चला जाता है, उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट आने पर और उसके एक्साइटमेंट पे, तो पूरा एनर्जी लेवल घर में क्या हो जाता है,
1: बहुत अच्छा.
0: इट्स वेरी हाई, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज टॉकिंग वेरी नाइसली। कल झगड़ा कर रहे थे, कल आए तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू द हस्बैंड, हस्बैंड वॉज कंप्लेनिंग टू द वाइफ, बच्चे कह रहे हैं आपके पास तो हमारे लिए ये, लेकिन आज घर का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है। 2-3 दिन वो प्लाज्मा का इफेक्ट रहेगा पूरे घर पे, फिर फाइनली कितने दिन, कितने दिन,
1: प्लाज्मा एक तरफ है,
0: फिर
1: वो लड़ाइयां फिर
0: हाँ,
1: से.
0: फिर नॉर्मल आ गया, इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द वॉल, फिर उसके बाद मेरी वही वाली चल रही है सारी, फिर मैं थोड़े दिन के बाद, अब मैं क्या नया
1: But
0: खरीदूं?
1: this is what life is. See, what is
0: यो
1: the
0: यो इज व्हाट लाइफ इज।
1: no? But that's what we say, you know, कि कभी खुशी है, मतलब जिंदगी में यही तो है कि अब हमेशा तो खुशी नहीं रह सकते, इन द सेंस कि हमेशा ही तो कुछ नहीं आप अचीव कर सकते. तो जब आप अचीव करो, जब आपको वो मिले, तब आप, यू नो, यू शुड एंजॉय इट, एंजॉय द मोमेंट्स एज मच एज यू कैन,
0: नो
1: लिव द
0: डिनाइंग,
1: मोमेंट्स, यू नो, दीज आर ऑल.
0: नो डिनाइंग, नो डिनाइंग, लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी बार चीजें खरीदते रहोगे, कितने बार साल में नई गाड़ियां खरीदोगे, कितने बार नए टेलीविजन, नए मोबाइल, नया मोबाइल आया नहीं मार्केट में तो आई वॉन्ट टू बाय द न्यू
1: And
0: मोबाइल,
1: you know, now to another thing which has started happening to Sachivani is, I want it. You know, people have just, you know, the moment they see it,
0: नाउ ये जो आपने एक्सप्रेशन क्रिएट किया, आई वॉन्ट इट, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सो मच यू नो
1: need,
0: नीड,
1: yes,
0: सो
1: yes.
0: मच स्ट्रेस, टिल आई गेट इट, तो जब तक मुझे नहीं मिला मेरी
1: You know, I had
0: स्टेट ऑफ
1: an
0: माइंड कैसे?
1: altercation with my daughter. Actually, I don't want to talk about it, but then that happened. She wanted different colored lenses, you know. And why? Because she had seen in the ad, and this was like, I want them. I need them, you
0: नो
1: know.
0: इट्स नॉट आई नीड देम, आई वॉन्ट
1: हाँ,
0: देम,
1: I want them,
0: नीड, या
1: yes, you know. Because what for? Everyone else has them.
0: ठीक है, तो फिर उसके लिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा हो सकता है, घर में झगड़ा भी, फिर सपोज वो आ गया तो वेरी हैप्पी, कितने दिन,
1: गुम अगले दिन गुम जाते
0: हाँ
1: हैं वो चीज.
0: 2 दिन के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम, सो वी हैव टू बी नॉट सेइंग दैट वी डोंट वांट दीज ऑब्जेक्ट्स, भले घर में जितना खरीदना है खरीदते जाएं, लेकिन कई बार तो इन चीजों के पीछे ही घर में स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि मेरे घर में ये नहीं है, उनके घर में है, या हमारे पास ये होना चाहिए, तो ला तो खुशी के लिए रहे हैं लेकिन क्रिएट क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस? जब वो आ जाएगा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें हमें क्या देती हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये हमें आराम देती हैं, आराम देने के लिए बनी है, शरीर को आराम देने के लिए बनी है, मन को आराम देने के लिए ये नहीं बनी थी, और ये शरीर को आराम देने के साधन इकट्ठे करने में कहीं ना कहीं हम मन को तंग कर रहे हैं सारा दिन, यू नो आई क्रिएट पेन, जेलेसी, कॉम्पिटिशन, एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई अक्वायर दीज ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो कंफर्टेबल हो गया, दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, इसका क्या हाल है? और फिर इसको तो अगले दिन, ये तो कंफर्टेबल रहेगा, जितना दिन कुर्सी पर बैठेगा कंफर्टेबल रहेगा, इसके कंफर्ट का ध्यान रखने का क्या? तो जितना ध्यान शरीर के कंफर्ट का रखते हैं उतना ही ध्यान, इसीलिए हमने कहा साथ साथ मन को कंफर्टेबल करने का क्या।
1: तो हमारी ये इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए, वेरी ट्रू वन थिंग विच यू सेड विच वी नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट, कि हम जो चीजें चाह रहे हैं वो हमें क्या देंगी, पहले इस पे हमें क्लैरिटी रहे, यू नो, बिकॉज दिस इज अंडरलाइन।
0: यू नो जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से
1: समझ
0: यूज करती है, दे आर वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट आई फील। जो भी एड बनती है वो क्या दिखाती है कि ये जब आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश हो जाएगी, आपके बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे, आपका रूठा हुआ हस्बैंड आपसे खुश हो जाएगा। नाउ दिस प्लेज विद माय साइकोलॉजी एंड आई से ओके इफ आई आल्सो गेट दिस, मेरे भी ये जो सारे लोग हैं ना ये खुश हो जाएंगे। तो एक चीज है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों को जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वन इज फॉर फिजिकल कम्फर्ट, वेरी गुड, बट रिमेम्बरिंग खुशी नहीं देगी। दूसरा है लोगों को खुश करने के लिए हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि यू नो अगर मैंने ये खरीदा तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा। एक बार रुक कर चेक करना पड़ेगा उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आजकल, बच्चों का कितने दर्द में है वो बच्चे आज, नोबडी इज लुकिंग एट दैट। हम रोज शाम को घर आते आते उनके लिए कोई एक प्ले स्टेशन, कोई ये वीडियो गेम, कोई ये ले आते हैं, सोचते हैं कि ये दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे।
1: एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए वो
0: हो जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे हम अगर मैं खाली हाथ आ रही हूँ तो उन्होंने तो गुस्सा करना, आप आए इतने लेट, मुझे आज मेरे स्कूल में वो था प्रोग्राम था आप आए नहीं, व्हाटएवर, सो आई गेट वन प्ले स्टेशन व्हाइल कमिंग फ्रॉम वर्क, उनको दे दिया। वो भूल गए उस बात को, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, उसको खेला, हमें लगा हमने उनको खुशी दी, हमने उनको थोड़ी देर के लिए एक स्टिमुलेंट दिया, उल्टा हमने उनको और भी उस प्रोसेस से हटा दिया कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है, हमने उनको एडिक्शंस की तरफ लेकर गए कि जितनी ये चीजें आपके पास आती जाएंगी आपको खुशी मिलेगी। फिर कल हम बाद में मुड़कर कहते हैं इनकी तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती, ये रोज नई नई चीजें मांगते हैं, सिखाया हमने ही था कि ये कैसे लाना। सो वन इज टू गिव हैप्पीनेस टू फैमिली, डिजायर बहुत प्योर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट वी आर बैड और व्हाटएवर, हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है लेकिन तरीका समवेयर
1: हमने खुद के लिए भी तो यही रखा ना, सी समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली हम गलत नहीं कर रहे क्योंकि हमने यही समझा कि खुद को खुशी देने के लिए भी तो मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी या मैं एक नई ड्रेस खरीद के, शॉपिंग में बहुत दुखी हूँ तो आई जस्ट गो एंड बाय समथिंग गुड, यू नो लाइक एंड आई बॉट समथिंग गुड और आई गो आउट।
0: डेफिनेटली ये जो बाइंग समथिंग गुड की चीज है ये हमें थोड़ी देर के लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है लेकिन साड़ी नहीं क्रिएट करती है, मैं क्रिएट करता हूँ एट द थॉट ऑफ हैविंग बॉट दैट साड़ी। आपने अभी इतनी सुंदर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है लेकिन वो साड़ी के पास फीलिंग्स थोड़ी है आपको देने के लिए, यू आर फीलिंग गुड
1: बिकॉज आई ओन दिस और व्हाट,
0: यू अचीव्ड इट, आपने कुछ खरीदा आपको वो अच्छा लगा, यू वर एबल टू बाय इट, आपने लिया, ये एक पहले थॉट क्रिएट करती है। फिर आपको चार लोग जरूर मिलेंगे जो बोलेंगे न्यू साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको और वो खुशी मिलती है,
1: पूरी वैल्यू मिल गई, यू नो, यस।
0: साड़ी इतनी देर में कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है वो मुझे फीलिंग कैसे दे सकता है। अब चार लोगों के बाद एक पांचवे इंसान ने आकर अगर कह दिया कनुप्रिया दिस कलर आई डोंट नो वेदर इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू,
1: आई डोंट लाइक हिम,
0: यू डोंट लाइक हिम एंड यू डाउट द साड़ी आल्सो,
1: ओह गॉड इज इट राइट और नॉट,
0: सी साड़ी वही की वही है लेकिन फीलिंग्स चेंज हो गई। तो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, फर्स्ट कि मैंने साड़ी खरीदी या गाड़ी खरीदी या नया मोबाइल जो लॉन्च हुआ है वो खरीदा, उसकी अचीवमेंट की थॉट जो मैं क्रिएट करती, एंड ऑपोजिट ऑफ दैट मैं नहीं खरीद पाती अगर
1: तो वो भी मैं
0: तो उसकी फेलियर की थॉट जो मैं क्रिएट करती वो मुझे दुख देता है, मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे आसपास के सब लोग ये खरीद पा रहे हैं। सपोज एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ 20,000 का है लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो तो वही पुराना वाला है, उसमें वो गाने नहीं बजते या जो भी फीचर्स है नहीं है, सबके पास दूसरा वाला है, मोबाइल नहीं खुशी दे रहा लेकिन ये फीलिंग सबके पास है मेरे पास नहीं है। फिर जिस दिन मैंने खरीद लिया जो सबके पास है वो मेरे पास, या मेरे पास जो है
1: वो किसी के
0: औरों से भी ज्यादा अच्छा है, एंड देन शोइंग इट टू एवरीवन, नॉट मे बी टू एवरी वन बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ कि मेरे पास वो है, ये सब फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं. मोबाइल क्या कर रहा है? उसके पास पावर कहाँ है फीलिंग क्रिएट करने की? लेकिन मैं क्योंकि वो मोबाइल खरीदने के बाद वो फीलिंग क्रिएट कर पाती हूँ, तो आई थिंक कि मोबाइल मुझे खुशी दे रहा है. मोबाइल कैसे देगा? उसके पास तो है नहीं.
1: हाँ एक्चुअली वेयर यू रीच दिस कि मैंने ये समझा था कि गाड़ी के कारण मुझे खुशी मिल रही है, तो गाड़ी क्योंकि चैतन्य तो नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस बींग नहीं है, मटेरियल है, वो कुछ भी नहीं दे सकती मुझे.
0: फिजिकल कंफर्ट.
1: यस, फिजिकल कंफर्ट दे सकती है जरूर, लेकिन खुशी जो है वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ. अनहैप्पीनेस है वो भी मैं खुद क्रिएट करती हूँ.
0: एब्सोल्युटली ना. अभी सपोज आपके पास इतनी सुंदर ब्लू साड़ी है, मैं तो नहीं ले सकती. लेट्स से मैं व्हाइट साड़ी पहना है, मुझे तो अलाउड नहीं है ब्लू साड़ी पहनना. अब ये सोच सोच के मैं अंदर परेशान होती रहूँ. सो लकी कनुप्रिया तो ब्लू भी पहन सकते है, रेड भी पहन सकते है. आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट, तो ये व्हाइट साड़ी थोड़ी दुख दे रही है मेरे को बैठकर. लेकिन मैं जो सोच रही हूँ उसको, आपको देख कर, अपने को देख कर, औरों को, मैं जो सोच रही हूँ आपको देख कर, आपने जो जो अचीव किया मैं नहीं अचीव कर पाई, तो दिस इज क्रिएटिंग माई दुख. देन आई गेट इन टू दिस कॉम्पिटिशन रेस कि इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी. नो, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा, मैं क्रिएट कर रही हूँ. हाँ ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं वो अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट करूंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा वो वाली थॉट्स.
1: तो मैं अभी भी क्रिएट कर सकती
0: अभी भी क्रिएट कर सकते हो. एग्जैक्टली.
1: हूँ. ओके, बट हाउ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू क्रिएट समथिंग, यू नो.
0: सो यू ऑब्जेक्ट डजंट क्रिएट द थॉट्स हियर. हियर
1: नो,
0: इज
1: बट
0: द
1: ऑब्जेक्ट
0: मोबाइल.
1: हैज टू बी देयर ना. सी, साड़ी हैज टू बी देयर
0: हाँ,
1: सो दैट आई क्रिएट द थॉट.
0: लेकिन साड़ी पहनने के बाद वही हमने अभी देखा, चार लोगों ने बोला बहुत अच्छी, तो आपने वो थॉट क्रिएट की. एक ने कहा नॉट वेरी नाइस, आपकी थॉट चेंज हो गई. साड़ी तो वही है. यू आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट. आप क्रिएट कर रहे हो, आपके पास पावर है टू चूज कौन सी थॉट क्रिएट करनी है. साड़ी वही है.
1: नहीं तो साड़ी हो या ना हो, आई कैन क्रिएट अ थॉट कि आई एम हैप्पी. मतलब लाइक साड़ी इज देयर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना.
0: हाँ,
1: सी, ऑब्जेक्ट है. आपने कहा कि
0: साड़ी इज देयर, ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन
1: माय
0: हैविंग
1: गॉड.
0: अचीव्ड बाइंग दैट ऑब्जेक्ट. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट ऑल आई हैव गैदर्ड. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव अचीव्ड.
1: बट यहाँ से शिवानी, हैप्पीनेस इज नॉट अ थॉट, इट्स अ फीलिंग.
0: या सो जो थॉट क्रिएट होगी फिर ही तो फीलिंग जनरेट होगी ना उसके
1: अगेन, दिस
0: बाद.
1: इज, वी नीड टू टॉक मोर
0: श्योर.
1: अबाउट इट, बिकॉज वट एवर वी हैव टॉक्ड टुडे इज एक्चुअली अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट नहीं करता है. वो कंफर्ट दे सकता है, वो मुझे यू नो लाइक जो जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है. हैप्पीनेस या कोई भी फीलिंग जो है वो खुद नहीं क्रिएट कर सकता.
0: उसके पास है नहीं.
1: हाँ, ऑफ कोर्स, दिस इज टू वी ऑल अंडरस्टैंड.
0: आई नो वी ऑल अंडरस्टैंड.
1: बट ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे. हमें फीलिंग है, लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं, इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच, आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जिन मटेरियलिस्टिक चीजों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था. यू नो, समवेयर आई वॉज गिविंग इट टू माई सेल्फ. थैंक यू सो मच अम शांति. बहुत लिबरेटेड फील करते हैं. इनफैक्ट अभी तो मैं फील कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो ऑब्जेक्ट और ना ही कोई सिचुएशन भी. अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दी, दे नहीं सकता, दे वो कंफर्ट सकता है. मोबाइल बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मेरा कंफर्टेबल कर देता है बात करना, या कोई भी और मटेरियलिस्टिक चीज जो है मैंने क्रिएट किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई. अगर वो नहीं खरीद पाई तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूंगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ? अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ? और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बदल बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है. सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय जिस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन अभी आज की इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है प्लीज फील फ्री, आप हमें जरूर फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए उसे स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है ये प्रयास चलता रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहाँ कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहाँ है और मैं आत्मा हूँ।
1: कैसे आत्मा हूँ?
0: मैं एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली
1: प्योर आत्मा हूँ,
0: एक वाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ
1: व्हाइल यू आर सेइंग इट, सी योर एक्सप्रेशन।
0: ओके,
1: अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड।
0: यस, एक्चुअली यू नो लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मोमेंट वी विल रियलाइज, आई थिंक आई हैड लेफ्ट इट एट दैट, कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतना सुंदर, इतनी सुंदर हूँ, तो फिर दुनिया कैसी हो, क्या फर्क पड़ता है।
1: नहीं, बट लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये रियलाइज होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है।
0: बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर
1: है। सो द वे आई फील नाइस अबाउट माई सेल्फ, आई विल फील नाइस about the other people also.
0: Of course, yes. And then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन द मोमेंट आई विल गो आउट इट विल नॉट बी दैट इजी। एंड अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मेडिटेशन से पॉसिबल हो पाएगा, पर मेडिटेशन है क्या, ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, या इट्स लाइक यू नो आई हैव टू get into something else and then get into meditation.
1: Meditation ke bare mein bhi kuch galat beliefs hai again. Meditation is very difficult. Meditation is very complicated. Mere se nahi ho sakta hai.
0: See, this is what I, you know, everybody has been saying, right. Start meditating.
1: Bilkul.
0: And I say, okay, but how?
1: Right. But that, wo isliye kyunki mujhe ye nahi pata, what am I talking about? You know, agar koi kahe start exercising, but what exercise, which exercise, how to do it? Ek bar wo pata chal gaya, then it will not be difficult. Lekin सिर्फ बोलते रहे कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिरी विच मीन्स टू हील। टू हील, एक वूंड है, एक चोट है, उसको हील करना है, या लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम टू क्लीन।
0: ओके, बिफोर यू गो इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड द रियल एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन, लेट्स स्टार्ट taking those aspects jise abhi tak hum meditation mante aa rahe, so that it becomes more clear to me also. You know, abhi tak mujhe ye tha ki aap jis bhi puja ki jagah pe aap jate hain, wahan baithiye, dhyan lagaiye, dhyan is meditation. Lekin dhyan main kisko lagaun, ek murti ko, ek us power ko, ek energy ko, aur kya karu, kaise dhyan lagaun, you know, aankh band karke kya karu, you know, like
1: meditation ko hum yoga bhi kehte hain. हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राज योगा मेडिटेशन। तो योगा कहते ही पहली चीज जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा, यू नो, जैसे हम प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है। यू कैन नॉट मिक्स दैट विद मेडिटेशन। मेडिटेशन इज इंटरनल, मेडिटेशन इज टू डू विद द माइंड, मेडिटेशन इज टू डू विद द सोल। मेडिटेशन आत्मा का कार्य है, प्राणायाम हठ योग ये शरीर का कार्य है, दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए वी कैन डू मेडिटेशन।
0: मेडिटेशन हैज टू बी साइलेंट, लाइक साइलेंटली हमें कुछ करना है, और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है,
1: ये भी एक अलग अलग तरीके है। सी अगेन, देयर इज नथिंग राइट, nothing wrong. I will have to try it out and see कि मेरे लिए कौन सी विधि right होती है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा।
0: अगर मैं एक,
1: अब वो हो जाता है जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर एकाग्र होता है और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज बेसिकली देयर इज नो लीकेज एट दैट टाइम. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज बोल रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया कि अगर रोज सेम खाना खाया, आप घर पहुंचे और रोज वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते. इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कंसंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं. इट इज लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता. कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए. वी वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग.
0: डेफिनेटली ये जो मंत्र उच्चारण की बात है, चैंटिंग की
1: सिमिलरली, तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था आज पता नहीं. तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं. तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है.
0: एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए. तो इट्स लाइक आई ट्राइड बट इट वाज नॉट पॉसिबल.
1: क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना. आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है. एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे जबरदस्ती, वो दब तो जाएगा लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा, इट विल जस्ट रीबाउंड. तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं. तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज नॉट स्टॉपिंग द माइंड. और वैसे भी स्टॉप करके फायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं. फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का. तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा,
0: वही अपने रॉन्ग बिलीव्स का,
1: वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से. मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना,
0: क्योंकि जनरेट ही नहीं.
1: हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ. There are two different things. आपने डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन क्या आपने चार्ज किया. तो मेडिटेशन शुड बी कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ चार्जिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए. आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है. आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरली रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं. तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए. तो मेडिटेशन राजयोगा, मेडिटेशन राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें.
0: स्वयं मतलब अब कौन
1: सेल्फ से पोत द माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स.
0: अनदर थिंग व्हिच इज देयर इज सोल, बॉडी एंड माइंड. They should be in sync. ये हम सुनते आए हैं.
1: Right. लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि सोल एंड माइंड ये दो अलग चीजें नहीं है, दो एनर्जीज नहीं है. सोल जब सोचने का काम करती है, हम उसको माइंड कहते हैं. तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड राजयोग, स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, सेल्फ सॉवरेनिटी, सेल्फ रूल. तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा कभी चिड़चिड़ापन. अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है. एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ. ओके, वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना, तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को?
0: चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के.
1: चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा?
0: जो मेन सॉकेट है,
1: पावर सप्लाई.
0: ओके,
1: तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया, तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी, फिर डिस्चार्ज. जैसे ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स, तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है. फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज्ड. इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं, तो बैटरी टू बैटरी चार्जिंग, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज. तो अगर रियली चार्जिंग करनी है, द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स. तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति.
0: बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस, यू नो,
1: कि मैं आत्मा हूँ. इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग. लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, दिस इज नॉट मेडिटेशन. ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है. मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ. हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खो सा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध. ये है योग.
0: एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस पावर, फुल पावर की बात कर रहे हैं जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है?

0: उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। प्रेयर इज लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन,
1: आस्किंग फॉर इट।
0: हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे। आप देखो, हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, यू नो,
1: कैन वी हियर हिम,
0: हाउ विल अ रिलेशनशिप डेवलप अदरवाइज,
1: कैन वी हैव अ कन्वर्सेशन विद परमात्मा।
0: दैट्स अ रिलेशनशिप ना।
1: हाँ,
0: आप देखो, आप और मैं बैठे हैं, सिर्फ मैं ही बोलती जाऊं, आप बिल्कुल बोले ही ना, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, मैं कुछ पूछूं, आप कुछ उसका जवाब दे, तब तो एक
1: रिश्ता बनता है।
0: रिश्ता बनता है। एक बोलता जाए, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय नहीं, कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है। और प्रेयर में और एक चीज जो थोड़ी सी हो जाती है कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसने सोचा मैं भी बोर हो रहा हूँ, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ। तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ये हो, आप कैसे हो, वट एवर, लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था। एक पंडित जी वहां से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो? जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती हैं। फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का
1: तरीका है,
0: तरीका
1: भाषा
0: होता
1: है।
0: है। तो वो वही बोलने लगा, वही बोलने लगा। रात को, कहानी है ऑब्वियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुंचे और भगवान को याद करने बैठे, तो उन्होंने भगवान की आवाज सुनी, पंडित आज क्या किया सुबह? वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो तूने क्या करा दिया उसको? अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है, ना उसके पीछे उसका कोई भाव है। सो दैट कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप। यू सी, इफ आई पिक अप अ बुक एंड आई लर्न अप अ फ्यू वर्ड्स एंड मैं वही वर्ड्स आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराते रहूं, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होके प्रार्थना रोज करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है। हमने सिर्फ उन शब्दों को ही मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है, सबका वही बोल कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट सेइंग समथिंग विच आई हैव लर्न्ड अप,
1: एंड
0: टॉकिंग टू गॉड,
1: कॉन्वर्सेशन टॉकिंग टू गॉड।
0: या इट्स इन कॉन्वर्सेशन विद गॉड, एब्सोल्युटली।
1: But then, will he talk back to us?
0: What do you think?
1: I don't know.
0: Is it possible?
1: I don't know. I'm saying, like, if you are saying it, I'm saying, but I don't think so because I don't know who God is.
0: आत्मा का परमात्मा से कॉन्वर्सेशन, राइट? आत्मा का आत्मा से कॉन्वर्सेशन कैसे होता है? इस मुख के द्वारा, राइट? लेकिन कभी कभी बिना मुख के द्वारा भी हमारा कॉन्वर्सेशन होता है। आप घर बैठे हैं, आपको मैंने फोन कर दिया, नहीं, जेस्टर्स की भी जरूरत नहीं है, आपको मैंने फोन किया, आपने कहा मैं आपको ही अभी याद कर रही थी, क्या, कौन, किसका कॉन्वर्सेशन चल रहा था? टेलीपैथी। एक संकल्प यहां से क्रिएट हुआ, वो आप तक पहुंचा, आपसे भी संकल्प आया। कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता है, आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं, व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन मुख से नहीं बोला जाता है, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ। और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज रीचिंग एंड यू विल गिव मी बैक, टेलीपैथी। अगर आत्मा आत्मा के बीच ये कम्युनिकेशन थॉट पावर पे हो सकता है, तो आत्मा और परमात्मा से नहीं हो सकता? फर्क क्या? इनफैक्ट इट्स इजियर, क्योंकि यहाँ तो हम सब थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और हमारे बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो वो रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा
1: मैच नहीं
0: मैच
1: कर रही
0: करना कभी
1: है।
0: कभी डिफिकल्ट हो जाता है। बट ही इज क्लीन, ही इज ब्यूटिफुल, ही इज वेटिंग फॉर मी, ऑल दैट आई हैव टू डू इज ट्यून माई फ्रीक्वेंसी टू हिम।
1: लेकिन एट वन पॉइंट लॉट्स ऑफ पीपल मस्ट बी ट्यूनिंग देयर
0: But
1: फ्रीक्वेंसी।
0: that he is the powerhouse.
1: तो ही
0: Lot
1: इज
0: of batteries can get connected at the same time. It's energy, it's not physical. देखो, ये सब limitations of being with so many people at the same time tab aati hai jab ek physical costume aap use kar rahe hain. Paramatma to ek shakti hai, wo nirakar hai, wo power hai. Jaise main ek power hu, wo bhi ek power hai.
1: To usko ye itna like it's amazing, but it looks so abstract actually.
0: It's not abstract, it's very simple. Once I get his introduction and I get to know him, without that it's abstract. Absolutely. Agar hum kahe ki ha bhagwan kuch hai, abhi tak kya tha bhagwan, kya tha mere liye concept tha. God was a belief. Isiliye abhi tak kehte hain, do you believe in God? You know, aap kabhi nahi kahenge do you believe in your parents. What is there to believe? They are my parents. Matlab usme belief kya karna, it's the truth. Similarly, there is no such thing as do you believe in God. God is my father. It's the truth. But abhi tak wo truth ko nahi pehchana, to abhi tak wo belief mein hi chal rahe hain. Do I believe in God? Which form of God? God kya hai? To ye sab cheezon ki thodi si pehchan chahiye, iska parichay.
1: You know, like waqt kam hai, to hum pehli cheez yahi pe, kyunki kahin program khatam ho jaye aur hum ye pahunch hi na paye ki kaise परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा.
0: इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैले हैं, विच इज क्वाइट बिग. एंड टुडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है. भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र है. तो जहां भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा. वहां बहने हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है. और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं, तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है. तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है. 7 days कोर्स है, 1 hour एवरी डे फॉर 7 days. जो समय हम चूज करते हैं, टाइम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बस थोड़ा सा समय निकालना है, दिन समय सब कुछ हम चूज करें और ये विधि को सीखते हैं. जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए, अपना परिचय चाहिए. ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम अपने आप कर सकते हैं.
1: यू सेड दिस 7 days में, 7 days जो एक घंटा, 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का, कि ये, और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं. ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे, तो ये 7 घंटे परिचय के लिए. उसके बाद हमें, हम अपने आप कभी भी,
0: उसके बाद इट्स अ रिलेशनशिप. सेंटर्स आर ऑलवेज देयर. वो सेंटर है क्योंकि वहां पर जाने से एक यू नो इजी हो जाता है, क्योंकि हम सारा दिन
1: माहौल
0: बहुत हाँ, तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं. लेकिन एक रिलेशनशिप हैज बिगन. उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं, अपना समय निकाल कर. और वो सारा दिन हो सकता है. इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है. इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड यू नो स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं होगा.
1: और सबसे बड़ी बात है, मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना चाहती हूं,
0: ये तो मेरी चॉइस है.
1: मैं कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूं, यू नो, लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर मी टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ स्ट्रांग रिलेशनशिप. और मुझे नहीं लगता कि अगर वंस माय इंट्रोडक्शन हैपेंस,
0: राइट,
1: आई वुड लाइक टू हैव एनी अदर रिलेशनशिप.
0: नहीं, दैट्स आल्सो यू नो, फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा, मतलब इस चीज में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया, तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए. दैट्स नॉट ट्रू. ये एक चार्जिंग प्रोसेस है, एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटिफुल हो जाते हैं, यू नो, जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे. You know, it's like this. मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो. We got connected to the power house. अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती.
1: और हम कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू करते
0: हैं. एक्स्ट्रा नहीं, हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है. जो चीज आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर देन. आप जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी. यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट. एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है, तो यू सी, जिसके साथ आपका संबंध होगा, आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं. एज द कंपनी नो, सो विल बी द इफेक्ट. तो सत्संग जिसके लिए

0: कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं. नहीं, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियां, अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जहां हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते
1: जो कि
0: हैं,
1: हमें बाकी सारे रिश्तों को ज्यादा बेटर कर देगा
0: जो
1: एक्चुअली.
0: कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है, तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं? और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है. आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ, तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम? नहीं. तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है. अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्जाम्स दे दूं, फिर उनकी तैयारी करूंगी,
1: बिल्कुल.
0: तब पढ़ेंगे बैठ के. नो, द एग्जाम इज नाउ, सो आई नीड द नॉलेज नाउ.
1: बिकॉज द जर्नी इज इम्पोर्टेंट, यू नो.
0: एंड देन आई एंजॉय द जर्नी, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस.
1: अगेन
0: और
1: हैप्पीनेस.
0: या एक चार्ज्ड बैटरी, यू नो, यू आर सो फुल एवरी डे, यू आर सो फुल व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो फिर लोगों का जो इन्फ्लुएंस, जो हमने सारी बात की, एंगर, टेंशन, एंग्जाइटी, लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में आते जाते हैं. तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे? ऑल दैट इट रिक्वायर्स प्रोबेबली 10 मिनट्स एवरी डे टू बिगिन विद. 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन, काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, परमात्मा से बातें. बेस्ट काउंसलर, बेस्ट काउंसलर, जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता, साथ में पावर भी दे देता है उस काउंसलिंग को प्रैक्टिकल की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने
1: और
0: की.
1: आज के वक्त में, यू नो, लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल, आई थिंक जितने भी दर्शक भी देखे होंगे, इवन टू मी, यू नो, हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने लॉजिकल हो गए हैं, दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल.
0: इट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ. इट्स नॉट इमेजिनेशन, ये कल्पना नहीं है, लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा,
1: एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा. जो इंट्रोडक्शन की बात है, दैट द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माय एंड.
0: एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट कीजिए, वर्क करता है, एक्सपीरियंस होता है, तो ये सत्य है.
1: वाह, वंडरफुल. तो शिवानी, ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट, एक यू नो, इतना हमने बात की, इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नजर आया जो कि पॉसिबल है, जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता. मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज नॉट डन, दिस कांट बी पॉसिबल. सो दिस इज इन फैक्ट सो ईजी. पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि आई द सोल हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए. इतनी सारी पहेलियों में हमने बात की, इतना सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. आंसर इतना सिंपल, इतना आसान था, पहला कदम हमें उठाना है. तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो भाई फोन कीजिए, ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए. आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी सवाल आपका है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत देने का, लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का, उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं, राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई जरूर करेंगे, पहला कदम जरूर उठाएंगे. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं धर्मवीर कंबोज जी का, जो कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मवीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मुबारक हो, जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं हमारे देश के किसानों के लिए और उनकी स्वउन्नति के लिए जो आप मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो।
4: देखो, मेरा सौभाग्य है, ओम शांति। आप लोग मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है। और मैं जो कर रहा हूँ ये शायद मैं ये कहूँगा कि कुछ बहनें मुझे मिली थी जब मैं अपने जीवन जर्नी में चल रहा था। और मेरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर पड़ता है, मेरा ब्लॉक अब रादौर हो गया है, पहले जगाधरी था। तब उस समय मैंने सोचा था कि मैं कुछ गांव की बहनों के लिए कुछ करूं। तो उस समय में मुझे एक बहन मिली और मेरा जो ब्लॉक रादौर है आज के डेट में वहाँ जटलाना गांव पड़ता है, तो ऐसे वहां से मुझे एक बहन मिली और जो यहाँ पर काम कर रही थी आपके इस सिस्टम में, तो वो सफेद कपड़े पहनती थी और एक युवा स्टूडेंट की तरह थी। उसने मुझे कुछ बातें की तो मैंने बोला कि मैं अपने गांव में कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी बहनें हैं बेटियां हैं कि वो टेलरिंग का काम करके अपना जीवन यापन करें। तो तब से मुझे ओम शांति के बारे में पता लगा था और मेरे भी सौभाग्य है। आप जहाँ से ये आप जो बात कर रहे हैं मुझे अच्छा लगा। ये आपका पहाड़ी क्षेत्र में है और ये गुजरात से और राजस्थान से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर भी सर्दी होती है बहुत। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गांव का ग्रामीण किसान रहा। मेरे पिताजी और माताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो मेरी माताजी अनपढ़ थी, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे। वो उर्दू जो बोलते ना, उर्दू भाषा होती है, उसको करते थे। लेकिन मैं जब उनके घर में पैदा हुआ, मेरे पहले एक बहन पैदा हुई और मेरी दो बहनें मेरे से एक छोटी और एक मेरे भाई से छोटी, तो मतलब हम पांच बहन भाई अपने गांव दामला में हमारा जन्म हुआ। तो ये हमारी जीवन जर्नी का जैसे शुरुआत हुआ तो मैं भाई होने के नाते अपनी बहनों का या परिवार में माँ का बेटे का बेटा होने के नाते मैं ज्यादा एजुकेशन का ज्यादा वो नहीं था। और जब मैंने मतलब पढ़ाई शुरू की तो उसमें भी मेरा जो एजुकेशन का सिस्टम था बहुत वीक था, क्योंकि गांव में जो ना मेरे पिताजी उर्दू पढ़ते थे, वो हिंदी नहीं जानते थे और मेरी माता जी तो हिंदी जानती ही नहीं थी, वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। क्योंकि पहले ऐसी शादी हो जाती थी कि भाई चलो ठीक है, वो बच्चे की शादी कर दो, एक दो क्लास पढ़ ले और वो क्लास में भी नहीं गई। वो जमाना था, बहुत इंटीरियर बात है ये, और इंटीरियर लागे तो गाँव था मेरा दामला गाँव, से मैं हूँ और मेरी माता जी गाँव माली माजरा जो ब्लॉक जगाधरी में पड़ता है उस इंटीरियर है जो जमुना नदी है उसके पड़ोस में ही कभी भी बाढ़ आ जाती है वहां पर, तो उस इलाके की मेरी माता जी थी और मेरे पिताजी वहां से कुछ 18 किलोमीटर दूर पे गांव धामला था, वो भी यमुना के किनारे था और माता जी का भी मामा जी का गांव भी यमुना किनारे था। इनकी शादी हुई और भगवान की दया से मेरे मामा जी एक दिन मेरे घर पे आए, मेरी मम्मी जी मेरे मामा जी से बोलने लगी कि हम लोग मेरी मम्मी और मेरी माता जी और पिताजी खेत में मक्का जो होता है ग्रोइंग सीजन और जो अगस्त जुलाई का उसमें थोड़ा बड़ा होता है उसकी खरपतवार निकालने के लिए निराई गुड़ाई करने के लिए खेत में जाना पड़ता है उनको। तो मेरे को मामा जी घर पे आ गए तो पता लगा कि भाई मैं मामा जी के साथ में जाऊं, तो माता जी ने बोला आप अपना कायदा जो पहली क्लास का है वो साथ लेके जाओ। तो मैं साथ लेके गया और उन्होंने मुझे वहां पर कायदा पढ़ाया, क्योंकि माँ को चिंता होती है वो अपने भाई को ही बोलेगी कि भाई अपने भांजे को तो ही पढ़ा दे। आज मामा ऋषिपाल जी वो भी नहीं रहे लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया और जो मैं स्कूल में 6 महीने से पढ़ रहा था पहली कक्षा में वो मुझे याद नहीं आता था। मैडम शर्मा जी हमको पढ़ाती थी स्कूल में, उसको पढ़ा नहीं आता लेकिन मेरे मामा जी ने जब मुझे पढ़ाया ऐसे आम ई से ईख जो गन्ना होता है ईख है और इस तरह का जब उन्होंने ऊसे ऊंट वैसे बकरी ऐसी बातें मैं एकदम समझ गया। जब मैं स्कूल में समझ पाया वो मामा जी ने मुझे मक्के के खेत में जहाँ मम्मी पापा निलाई गुड़ाई कर रहे थे वहां पर समझ गया है।
3: इसका मतलब कि जब आपके मामा जी ने आपको प्रकृति से चुने हुए चीजों को लेकर के ही आपको ज्ञान समझाने की कोशिश की तो आपको ज्यादा सरल रीति वो समझ में आया। जनरली लोगों को ऐसे समझाया जाता है जिससे कि उनका तारुमतार ही नहीं होता, कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, लेकिन जब प्रकृति में ही जो चीजें हैं उनको लेकर के जब किसी चीज को समझाया गया तो आप जल्दी आसानी से समझ गए।
4: मैं कह रहा हूँ मैं 6 महीने से ज्यादा मेरे आज भी ये बातें याद है कि जब मैं अगले दिन स्कूल में गया तो मैंने अपनी जो बहन जी हम बहन जी बोलते हैं टीचर को है उस जमाने में है, और बहन जी को जब मैंने बोला कि भाई समझ गया मुझे याद आने लग गया और ये जो लिपि है ए आ ई उ है त्रैग्या जो भी है इस लिपि को मैं समझ गया और मैंने बहन जी को बता दिया मैंने पढ़ के समझा दिया कि ऐसे अनार और ऐसे आम हैं और ई से ईफ हैं और ये सारा मैंने वैसे बकरी है और मैंने उनको जैसे झंडा ये सारा मैडम जो है ना हमारी माँ मैं तो मैडम इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के जमाने मैडम बोलते हैं तो बहन जी इतनी अप्रिशिएट होती ये क्या करती है कब से सीख गया ये है सबसे लालायक बच्चा ये तो पूरा अब तो पढ़ने लग गया है। तो उस खुशी को उस बहन जी की खुशी को मैंने महसूस किया और उसने जो है ना मुझे मैं सबसे पीछे बैठा था मुझे आगे बैठा दिया है। तो ये तो रहा मेरा पहली कक्षा का चैप्टर है जी
3: जी
4: जिसमें मैं अपनी मम्मी को और पापा को ज्यादा मामा जी को मम्मी को और मामा जी को वो भी नहीं है दुनिया में और मामा जी भी नहीं है लेकिन उनको मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने मुझे अपने हिसाब से समझाया और मैं सीख गया। नहीं तो मैं सबसे बुद्धू था स्कूल में है जी। अब आ गए छठी कक्षा आ गई। मैं पढ़ते पढ़ते पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा चौथी कक्षा पांचवी क्रॉस कर गया मैं बढ़िया समझ गया सारा और छठी कक्षा में आकर के आ गई अंग्रेजी है
3: जी।
4: अंग्रेजी में ABCD है। अब ये प्रॉब्लम आ गई है अब मैं फिर ब्रेक मार गया उसमें है अब मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है। तो अंग्रेजी नहीं आ रही है तो मैं लेकिन देखने में अच्छा लगता था और दूसरा ये भी थी कि भाई ना हमारे गांव में ना वो कपड़े बेचने आते थे लोग साइकिल पर साइकिल के ऊपर कुछ कपड़े लेके आते थे जैसे उसमें आपने रजाई का कपड़ा लेना सर्दी थी ना हमारे यहाँ काफी और
3: जी जी।
4: बिस्तर का जिसको बोलते हैं बिस्तर का निचले है और एक तो बेड के ऊपर बताते हैं बिस्तर और एक होता है रजाई है ओढ़ने के लिए है तो उसमें खद्दर के कपड़े होते थे निचले वाले बिस्तर पे ना वो खद्दर के कपड़े होते थे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो खद्दर का कपड़ा लेंगा मम्मी जी है तुम्हें से खतरे कपड़ा सिलवाया ले लिया और वो लट्ठा था, तो लट्ठा बोलती है अब उसको वो मतलब हाथ से काटा जाता है सूत से लट्ठा कपड़ा, तो ऐसे मैंने उससे वो सफेद कपड़ा खरीदा और मैंने उसको सिलवाया, क्योंकि वो 3 रुपये मीटर मिलता था है? अब मेरा 2-2.5 मीटर में मतलब 6-7 रुपये मेरा कुर्ता पैजामे का कपड़ा मुझे मिल गया है, और मैंने उसको अच्छे दर्जी से सिलवाया और मैं नेताजी बन गया है। तो देखने वाले मुझे बोले थे तो जवाहरलाल लग रहा है, नेताजी लग रहा है, स्कूल वाले बोले थे तो हमारे यहाँ स्कूल में नेताजी जवाहरलाल बोल के आ गए। अरे मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया। तो ये क्या हुआ, वहाँ 14 नवंबर को मतलब बच्चों को स्कूल में लेक्चर देना था कुछ है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लेक्चर देना था है। तो मेरे वो कपड़े पहन के मैं स्कूल में गया और मैंने जब वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आप लेक्चर दोगे, अब मैं लेक्चर कैसे दूँ, अंग्रेजी में मैंने बोलना था। तो सर क्या हुआ, अब मैं अब अंग्रेजी कैसे बोलूँ, मैंने अपने चाचा जी से पूछा, चाचा जी थोड़ा हिंदी भी जानते थे, उर्दू भी जानते, अंग्रेजी पिताजी तो नहीं जानते था। तो चाचा जी ने अंग्रेजी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुझे पोयम जो है ना वो लिखी हुई हिंदी में मैंने उसको कन्वर्ट करवाया है। 6ठी कक्षा में हिंदी की पोयम थी हमारे पास, इंग्लिश में पंडित जवाहरलाल की पोयम थी 6ठी कक्षा में। तो चाचा जी से बोला कि चाचा जी इंग्लिश से मेरे पास आती नहीं, तो आप इसको ना आप अंग्रेजी में बोला, मैं इसको हिंदी में लिख लूंगा। ऐसे चाचा ने उसको इंग्लिश में बोला, मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया और मैंने खेतों में जाकर के जोर जोर की आवाज से चिल्ला चिल्ला करके उसको बोला है, पंडित जवाहरलाल वाजे ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया है, ऐसा बोलने शुरू कर दिया है। ग्रेट लीडर का लेक्चर वो मैंने वहां जाकर के दे दिया 14 नवंबर को स्कूल में।
3: जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी इस कहानी से कि बचपन से ही आपके अंदर एक हुनर छुपा हुआ था जो था कि किसी भी समस्या का अपने रीति से एक समाधान ढूंढ निकालना।
4: तो चलो तो वहां से मैं ग्रेट लीडर बन गया स्कूल का है। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद में, मैं जो बड़ी मेरे 9th कक्षा है 8वीं कक्षा है मैट्रिक है वो मुझे ग्रेट लीडर बोलने लग गए हैं, ग्रेट लीडर है ग्रेट, मेरा नाम ग्रेट लीडर रख दिया। तो कोई बात नहीं, अब 9th कक्षा आई फिर मैं फेल हो गया। मैं क्या करता था, मैंने ना 6ठी कक्षा में जो गांव में जो गांव हमारे, तो मैं हूँ तो मैंने देखा कि बिजली आ गई गांव में है, और जो हीटर होते हैं हीटर जिसमें हम चाय बनाते हैं आज की डेट में, वो बड़ी एक प्लेट होती है उसमें एक वायरिंग होती है गोल गोल गोल गोल, तो तार होती है वो लाल हो जाती है जब करंट लगाएंगे है, तो उससे चाय पका लो उससे या फिर कमरे में से जला लो। तो ऐसे मैं सीखा और मैंने अपने स्कूल के साथियों से कोई 70-80 हीटर जो डिस्पोजल घी के डिब्बे होते थे डालडा घी के, मुझे प्लेट लगाई और मैं वो वायरिंग लगाई और उसमें वो जैसे प्रेस का प्रेस में डालते हैं हम लोग के प्रेस में करंट चला गया इस तरह को लेके सारा प्लग प्लग उस तरह हीटर बना करके मैंने कम से कम जो है ना वो 70-80 हीटर गाँव और स्कूल में बच्चों को बेच दिए, जिसमें मैंने प्रति हीटर मतलब 4 रुपए प्रति हीटर का मुनाफा हुआ। तो ये मेरे को अच्छा लगा और गांव के स्कूल के बच्चों ने मुझे इससे लिए, ये अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं फिर फेल हुआ 6ठी में, फिर ऐसी 7वीं पढ़ा 8वीं पढ़ा फिर 9th में, फिर मैंने मास्टर हमारे को मिले डीडी शर्मा जी, तो बोले देखो भाई ऐसा है बिजली भाग गई है और बिजली चली गई अब क्या करें, बिजली तो आती नहीं ज्यादा और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो कुछ समाधान निकाल लो आप। हमने समाधान निकालने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने एक ऐसा वो बनाया जुगाड़ कि भाई ये बिजली भागेगी और मैं बैटरी के सेल से लाइट चार्ज कर दूंगा। वहां से डायोड बाजार से खरीद के लेके आया, दुकान पे गया, जो रेडियो के डायोड होते हैं वो खरीद के लेके आया, जो रेडियो की बेल की शट्टी को पकड़ते हैं ना तो वो डायोड होते हैं छोटे कैप्सूल होते हैं बारीक कैप्सूल एकदम है, क्या बोलेंगे आपको जैसे जौ का दाना होता है ना इतना बड़ा डायोड होता है, 2 दाने होते हैं जुड़ी, तो ऐसे में खरीद के लेके आया चार पूछ करके। तो ऐसे मैंने वो डायोड जोड़े, वो एसी को डीसी को कन्वर्ट करते हैं, ऐसे मैंने एक इमरजेंसी लाइट बना दी 9th कक्षा में है। और वो 9th कक्षा में जो इमरजेंसी भाई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो बिजली चली जाएगी, बिजली चली जाएगी तो डॉक्टर वहां को लैंप कौन जलाएगा, गैस कौन जलाएगा, लैंप कौन जलाएगा, तो जैसे ही बिजली गई तो बैटरी की लाइट जल जाएगी। तो उसमें मेरे जिले में मुझे अवार्ड मिला, मेरे को बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये 9th भी चली गई फिर मैट्रिक में, 9th में तो फेल होकर के दोबारा कर लिया मैंने, लेकिन मैट्रिक में आ गया। अब मैट्रिक में भी मैं फिर दोबारा फेल हो गया, फिर एक बार और फेल हो गया, तीसरी बार में मैं मैट्रिक की सर मैं जवान हो गया। स्कूल में मेरे जो साथी थे जो 5वीं कक्षा में पहली कक्षा में पढ़ते थे हमारे साथ, कोई मैट्रिक में चला गया, तो कोई बैंक में चला गया, कोई मतलब किसी और जगह नौकरी लग गया। लेकिन मैं तो अब कॉलेज में गया पहले बार, कॉलेज में जब जाने लगा, कॉलेज में क्या हुआ, मैं एक दिन कैंटीन में गया और वहां मैंने एक चाय का कप मंगाया, समोसा बड़ा टेस्टी बनाता था कैंटीन वाला, तो मैं चाय समोसा लिया तो मुझे याद आया कि तेरी माता जी बीमार है भाई, तेरी बहन बीमार है, यहाँ समोसे खा रहा है, चाय पी रहा है, कप में है, और इलाज करती तो जो दवाई का पैसा है वो तो तू खा गया है, तू ये तो बेटे को पैसा दे रहे थे पिताजी तो है कि जा कॉलेज में पढ़ के या कुछ बन। तो साहब मेरा कॉलेज की मैं कैंटीन से उठा, वो चाय समोसा ऑर्डर तो कर दिया, पिया थोड़ा पिया, अच्छे दिमाग में घूम, क्योंकि मुझे बहन की दिमाग में आई वो बड़ी परेशान है और माता जी बड़ी परेशान है और तुझे चाय समोसे खाता है। मैंने वहां आधा समोसा खाया, वैसे पता नहीं पूरा खाया नहीं खाया, लेकिन मैं उदास हो गया। और आज से मैं कॉलेज बंद करता हूँ, पहले अपनी बहन का इलाज कराऊंगा, अपनी माता जी का इलाज कराऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दीवान हूँ, मैं खरीदार हूँ, अब तो मैं कम से कम नहीं भी जाना तो 22-23 साल को हो गया, क्योंकि बच्चे 16 साल के तो मैट्रिक कर जाते हैं, लेकिन मैं तो 22-23 साल लगा दिए ना, 5 साल तो इधर ही एक्स्ट्रा कर दिए ना मैंने।
3: और तभी आपने
4: सर उसके बाद में क्या हुआ, मैं अपनी माता जी को, गर्मियों का महीना था जुलाई का, और मैं उसको करनाल हॉस्पिटल लेके गया, वहां से उसका इलाज कराना शुरू किया, वहां एक्सपायर होने की तैयारी में थी। मैंने पिताजी को बुला दिया कि भाई देख पापा, ये आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है, मैं तो बेटा हूँ, जो आप कर सकते हो आपसे एक बार मिल लो, कहीं ये सुबह तक कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जो मुझे लग रहा है। मैं माता जी को जब वो बाथरूम से आई, मैंने उसके बाल सेट किए और बेड पे बिठाया, बाल सेट किए उसके, और मैं बोला माता जी क्या हाल है, माता जी बोल नहीं पाई, मैंने उसको बोला माँ आप बोल रही हो मेरी बात, वो सुन रही हो, उसने हाँ करी कि मैं सुन रही हूँ। मैंने बोला माँ आप जिसको ज्यादा भक्ति करती हो, जिसको ज्यादा भगवान को प्रेम करती हो, उसको याद करो, लेकिन मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा है। और माता जी ने मेरे को, मेरी आजू आ गए, उसने देखे आजू, क्योंकि उसका आवाज नहीं काम कर रही उसने, लेकिन उसका माइंड काम कर रहा था, सुन रही थी। उसने मेरे हाथ पे सिर फेरा, बेटे घबरा मत, ऐसे इशारा किया उसने, वो उंगली से भी इशारा किया उसने हैं कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन आफ्टर सम टाइम माता जी ऑफ हो गई वहां से, पिताजी भी आया और सारे आए, उसको जड़ी बूटी को लेके चले गए हम लोग। तो ऐसे फिर उसके बाद में मैंने शादी करा ली, तो घर में कोई खाना बनाने वाला था नहीं, मैडम आ गई घर पे, तो मैडम कहने लगी तेरी तो बहन बीमार है इस घर में, मैं कैसे रहूंगी, उसकी मेरे को कराने की आवाजें सुनती है, मेरे से चिंता ना कर, मैं उसका इलाज कराऊंगा, तो घबरा मत, तो अपना काम देख।
3: धर्मवीर जी मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके जीवन में इतनी समस्याएं थी, जो एक साधारण पढ़े लिखे भारतीय नागरिक जैसा नहीं था, लेकिन जिसके जीवन में इतनी सारे उतार चढ़ाव थे, वो एकदम से ऐसे कैसे इन चीजों का जो नवीनीकरण है, जो नए नए उत्पादन करना या मशीन बनाना ये सब करने लग गए, कैसे ये आपके पास ख्याल आया कि मैं एक ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव वाला फूड प्रोसेसर बनाऊं जिससे कि किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। तो वहां से यहाँ तक का सफर बड़ा ही रोचक रहा होगा, लेकिन मुझे ये जानने का है कि आपको किसानों के प्रति ये जो सोच है ये कहाँ से आई?
4: देखो मैं किसान का बेटा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी बात को समझो, मैं इसको शॉर्टकट में ले रहा हूँ। भैया देखो आप, वो बहन का भी इलाज कराया मेरे बहन ने, वो उसका ऑपरेशन हुआ, उस पर पैसा मेरे पर लग गया है, मैंने उसको इधर प्राइवेट हॉस्पिटल लगाया, फिर वहाँ बहुत पैसा लगा, फिर मैं उसको पीजीआई चंडीगढ़ लेके गया बहन को, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैडम ने बोला था कि इलाज कराओ कि खारा फेंका है, तो वो मेरी बहन ठीक हुई। तो जब मैं घर आया तब उसके बाद में मेरे बेटी ने जन्म लिया, वो भी हॉस्पिटल में लिया, उसमें मैंने खर्चा किया। मेरे पास बहुत देनदारी होगी एकदम, मैं किस किस के पैसे लुटाऊं जहां से उधार लिया मैंने। एक दिन वही जैसे मान लो 24 दिसंबर को बेटी ने जन्म लिया और 27 दिसंबर को हम हॉस्पिटल से घर आए प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो कुछ मांगने वाला पैसा जिसको मैंने पैसे देने लोगों को, एक आदमी मेरे घर आया और पिताजी बोला कि पैसे इसी से ले, मेरे से नहीं पैसे मांग, किसी से मांग पैसे, ये जवान लड़का है, ये करना जो ड्रामेबाजी हो रही है। मैंने उसको बोला तो घबरा मत, मैं तेरे पैसे दे दूंगा मैं, या कम से कम तुझे कुछ चाहिए मैं दे दूं, तेरे को एडवांस पैसे दे दूं, कुछ दू मतलब अपना सोना दे दूं, घर का कुछ और दे दूं, अगर कैश चाहिए तो रुक जा है। मैंने बेइज्जती ना कर मेरे पिताजी के सामने, पैसे वाले को ऐसे ही बोला मैंने, वो चला गया। और मैं शाम को अपना वहां से निकला, मेरे हाथ में हैंड वॉश थी एक, मैंने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिया और मैं एक बस में बैठा और ट्रक में बैठा और मैं लाडवा उतरा। लाडवा में मैंने जो है ना अपनी हैंड वॉच जो है ना एक दुकान पे रखी, 70 रुपए लिए, मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाके रात को उतरा, बहुत सर्दी थी, 27 दिसंबर की रात थी, मुझे मैं भूल नहीं सकता रात को कैसे मैं गुजारा रात। तो वहां पर हाथ से करके कोई मेरे पास कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई लोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहां पर से सुबह निकला और मेरे पास जो है ना हैंडवाच के बाद में मेरे पास जो है ना कोई 25 रुपए रह गए वहां रात को चाय चू पीने में। और वहां से मैंने देखा भी यार पैसे वापस जाने का भी गाँव के नहीं रहा, तो चलो मैंने एक रिक्शा मिली, उसमें कंबोज गैरेज लिखा था। मैंने बोला भाई तो मुझे वहां छोड़ दे, जाओ तेरी कंबोज गैरेज है, वहां छोड़ा, मैं कंबोज बरादरी से हूँ। तो उसने वहां छोड़ दिया, मुझे वहां छोड़ दिया। तो वहां पर से मैंने उसको बोला सेठ को कि ये मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और ये मेरा टिफिन है, मेरे पास तो यही है, मैं गांव से आया हूँ और बहुत आर्थिक प्रॉब्लम है, मैं तो रोजगार की तलाश में आया था, यहाँ मैट्रिक करने वाले को नौकरी मिलेगी दिल्ली में, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। तो मुझे रिक्शा किराए पे दे दी, उन्होंने मेरे को एक रिक्शा दे दी और ये मेरे को उसमें रख लिया है। तो मैं रिक्शा लेके दिल्ली मेरे से चलाने लगा। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर एक मैंने गली में निकला, वहां से उस गली में निकला, वहां फ्रूट जैम बिक रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया कि यहाँ मेरा अमरूद का बाग है गांव में और यहाँ गुआवा जैम जो है ना 200 रुपए का 200 ग्राम बिक रहा है, 200 ग्राम बिक रहा है 200 रुपए का। यहाँ पर जो है ना एप्पल का जो सेब है वो जो है ना आधा किलो जो है ना वो जो है ना मतलब 40 रुपए का बिक रहा है, और यहाँ पर टमाटो सॉस बिक रहा है, टमाटर की फोटो लगी उसमें कांच की बोतल पे। ये मैं देख के हैरान हो, जो गांव में कभी हमने देखा ही नहीं है। मैं रिक्शा चलाने लगा और एक रिक्शा वाले ने बोला तू इधर से इधर घूमता रहो भाई। मैं इधर से इधर पुरानी दिल्ली से लाल किला, लाल किले से फतेहपुरी, फतेहपुरी से लाल किला, ऐसे घूमते घूमते वहां पूरा बाजार है वो तो है, वहां देश को दुनिया में लोग आते हैं। वहां पर मैंने जड़ी बूटियों की मंडी देखी। जब जड़ी बूटियों की मंडी देखी, एक एक जड़ जो होते ना जड़ एक मतलब 1 इंच की जड़ जो है ना वो आपको 10 ग्राम जो है ना आपको 100 रुपए की मिलेगी उस जमाने में है, 1 इंच की जड़। जैसे कोई भी जड़ है, मूली की जड़ तो मोटी होती है, मूली मोटी होती है, ड्राई वहां पर बहुत महंगी, अकरकरा की जड़ है, अशोकगंधा की जड़, ये बहुत जड़े हैं ऐसी। जब मैंने बोला यार ये तो हमारे यहाँ वैसी ग्रो होती है जड़े, हम तो किसान आदमी है, हम तो ट्रोली की ट्रोली ग्रो कर देंगे भाई, गाँव में ट्रोली ट्रैक्टर है और किसान हम लोग हैं, खेती हमारे पास है, हम तो ऐसी जड़े पैदा करके बेच देंगे। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर मैंने देखा कि बड़े बड़े गुलाब की परफ्यूम बहुत महंगी है। परफ्यूम हमने पहले बार देखी, मैंने शादी में भी क्या ना जो परफ्यूम वो तो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन वहां पर मैंने पहले बार ऐसी परफ्यूम देखी कि रोज परफ्यूम है बहुत महंगी देखी, चंदन की परफ्यूम बहुत महंगी देखी। मैंने बोला हम किसान है हमें करेंगे है। तो सर ऐसे मैंने वहां पर बहुत परफ्यूम तो देखने को मिला, स्पाइसी परफ्यूम देखने को मिली, वो भी दिल्ली के बाजार में, पहले बार गांव में कहां से चीजें देखने को मिलती थी है। ऐसे करते करते एक लाइब्रेरी थी वहां पर दिल्ली में, उस लाइब्रेरी में मेरा मैंने लाइब्रेरी में जाता पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, उस लाइब्रेरी में बैठता, उसमें देखता अंग्रेजी की किताबें, यूरोप की सब्जियां कौन सी हैं, यूरोप के फ्रूट कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के फ्रूट कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया की जड़ी बूटियां कौन सी हैं, ऐसा मैं सर्च करने लग गया है। और हमारे इंडिया की कौन कौन सी हर्बल हैं, ऐसे मैं इंग्लिश में सारा उनको पढ़ा। तो ऐसे पढ़ता और समय पास करते थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया वहां पर। मैं वहां पर पुरानी दिल्ली से कांगा स्टैंड था, वहां कोरिया पुल पे पुरानी दिल्ली के, बस वहां से दो सिल्ली तो बर्फ की लेके मैं पीली कोठी जा रहा था, एक फ्रेट कार ने मेरे को टक्कर मारी, मुझे दिखा काली फ्रेट कार ने टक्कर मारी है दिखा, बट जब मैं जैसे गिरा साहब मुझे नहीं पता मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं जब देखा मैं होश आई मैं बैठा, मेरा बर्फ का पानी बन रहा था, टुकड़े बन रहे थे और रिक्शा भी टूटी थी और मुझे किसी ने उठाया नहीं साहब जी, कम से कम उठा दे पूछ ले तेरा क्या हाल है, एक इंसान इंसान की मदद नहीं कर रहा है वहां पर, वो लोग जा रहे हैं दिल्ली वाले, मैं बैठा हुआ मैं होश आई मैं बैठा हुआ मेरी रोनी आ गई साहब जी, कम से कम मदद मेरी बेटी छोटी जिसका श्रीमती जी वो जिसमें छोड़ के आ गया था और मेरा तो मदद ही नहीं कर रहा है, क्या करूँ इस दिल्ली का, मैं जा रहा हूँ दिल्ली को छोड़ के, क्या मेरे कोई आई नहीं पाई नहीं पाई नहीं बहन नहीं कोई ताऊ चाचा नहीं आती, सब लोग बिजी हैं, यहाँ कोई किसी मदद करने वाला नहीं, मुझे पता अगर आज मैं मर जाता तो मैं बच गया, मेरे यहाँ कोई इलाज करने वाला भी नहीं था, मेरे को पानी पिलाने वाला नहीं, यहाँ कोई मुझे पता है यहाँ कोई पानी नहीं पिलाता है, सब सब मतलब के लोग हैं, तो साहब मैं तो जी भी वो बच गया, मैं जब भी रिक्शा वाले को बुलाया और अपने रिक्शा को लोड कराया उस रिक्शा के पीछे वो टूटी वो और मैं उसमें बैठ के वहां जिस सेठ से वो चली थी मैं उसको पकड़ाई, तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ साहब, मैं गांव चलाया।
3: एक बहुत ही जबरदस्त अनुभव आपने शेयर किया हमारे श्रोताओं के साथ कि एक ऐसी भागती जिंदगी जहां पर लोगों के पास एक सामने वाले व्यक्ति की मदद करने का समय नहीं है, ऐसे जीवन में कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, इसका कुछ पता ही नहीं है। और ये जिस दर्दनाक अनुभव से आप गुजरे हैं उसके लिए हम सब आपके हौसले का, आपके ताकत का सच में बहुत बहुत उत्साहवर्धन करते हैं कि आपने जो अनुभव किया है और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर रहे हैं, ये जीवन की वो अनुभव है जो एक इंसान को इंसान से ज्यादा कहीं आगे ले चलता है, उसकी इंसानियत को भी मजबूत करता है, उसके अंदर की ताकत को भी मजबूत करता है, और वही ताकत आज आपको आगे भी बढ़ा रही है। और आज आप एक बहुत सुव्यवस्थित और साथ ही साथ एक बहुत ही विख्यात और एक बहुत ही लोगों के लिए आदर्श बन चुके हैं आप, और जो काम आज आप धर्मवीर कंबोज कॉरपोरेशन के द्वारा अपनी कंपनी के द्वारा जो आप मदद पहुंचा रहे हैं गाँव गाँव तक, किसानों तक, जनमानस तक, उसके लिए सच में आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं।
4: सर मैं घर पे आया, पिताजी को नमस्ते करी, गलती माफी मांगी कि मेरे पिताजी मुझे एक्सेप्ट करें, मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी बात पे चला गया था, लेकिन फिर मैंने जो है खेती बाड़ी में खूब जोर लगाया और मैंने वहां पर गांव में टमाटर की खेती शुरू की और ऐसी टमाटर की खेती शुरू की जो मैंने दिल्ली में टमाटर देखे थे हाइब्रिड टमाटर, तो मेरे खेतों को देखने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर आए जी, गाँव के किसान आए जी। हाँ फिर मैंने मक्का की खेती शुरू की, उसमें जो बेबी कॉर्न होता है उसको पैकिंग करके मैंने दिल्ली बेचना शुरू किया और मैंने बम्बई भी बेचना शुरू किया और मशरूम की खेती की डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के साथ मिलकर के, और मैंने मशरूम को बम्बई बेचा और मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती भी शुरू की और उस स्ट्रॉबेरी को मैंने जो है ना कलकत्ता बेचना शुरू किया, अपने गाँव से ही जहाज में लेके जाता था यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जहाज में, तो मेरा अखबारों में नाम आया, मेरा खेत पे डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर आए देखने के लिए, मेरा बेबी कॉर्न की खेती मैंने तीन फसलें की थी, नीचे गर्लिक गर्किन गर्किन जो छोटा खीर होता है, ऊपर मतलब बेबी कॉर्न, उससे ऊपर मतलब करेला, तीन फसलें ये जो है ना उसमें जापान के मैगजीन में छपे थे, जहाँ जापान की गुड़िया फेमस होती है वहां धर्मेंद्र दामला यमुनानगर का भी नाम वर्ल्ड में जापान की मैगजीन ने छापा था है, तो इस तरह मेरा हौसला आया, मीडिया ने मेरा साथ दिया और डीसीएम ने मेरे साथ मेरे खेत देखने आए, तो ये पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में 1992 में डीसीएम नगर मेरे खेत पे आए, जो आजकल संजीव कौशल जी जिला यमुनानगर के डीसी थे, आजकल वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के हैं जी, तो बड़ा मेरा हौसला बढ़ा, उसके बाद में हौसला बढ़ गया, अधिकारी मेरे खेत में आने लग गए और मैंने फिर जो है ना उसके बाद में जड़ी बूटियों में सप्रे करता था है, जो बैंगन करना, स्ट्रॉबेरी करना, टमाटर करना और फसलों को जो कीट पतंगे लगते हैं उनको मार देना है, तो मुझे महसूस हुआ तू क्यों मार रहा है इनको है, इनका भी तो अधिकार है, मेरे खेत में चिड़िया मरी, कौआ मरा, गरसल्ली मरी, सांप मरा, चूहा मरा, एक सुंडी को मारने के, एक माइट को मारने के लिए मैं क्यों मारू इनको है? मैं एक स्प्रे मशीन बना ली, बैटरी से चलने वाली जो ग्लूकोज बहन को लगती थी, उस बहन की ग्लूकोज जो लेके ड्रॉप ड्रॉप और मिक्सी के फिरकी पे लगा के टेबल बोर्ड की बैटरी में जोड़ के ऐसी मैंने स्प्रे की मशीन बना के मैंने अपने खेतों से कौवा गरसल्ली चीटी कीट पतंगे सारे मार दिए, मैं बच गया, सांप भी मर गए। मैंने फिर सोचा हो तू क्यों मार रहा किसी को
3: जी,
4: क्या मिलेगा है? सब्जी बेचनी है, मंडी में जाएगी है? मैं नहीं करूंगा काम, मैंने बंद किया साहब जी, बंद कर दिए और मैं पलट गया एकदम। मैं जड़ी बूटियों खेती पे आ गया और मैं जो भी उगेगा वो नेचुरल उगेगा। मैंने फिर जड़ी बूटियां उगानी शुरू की, जब जड़ी बूटियां उगाई तो मेरे खेती पर DFO और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट के बड़े बड़े ऑफिसर और के स्टेट के कंजर्वेटर मेरे खेत में आने लग गए एकदम। देखो एक किसान ने जड़ी बूटियां उगानी शुरू कर दी, मेरे खेतों पे बड़े बड़े ऑफिसर आने लग गए और मैं जड़ी बूटियों में अच्छा काम करने लगा। फिर मैं अजमेर पुष्कर गया राजस्थान के, वहां पर मैंने देखे बहने आंवले से लड्डू बना रहे हैं, वो उनके हाथ बड़े पेनफुल होता है आंवले को कद्दूकस करना, तो किसानों के साथ में मैंने सोचा तो मशीन में बना दूंगा। जब मैं वापस आया गांव में तो मैंने DHO से बोला, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से, कि भाई ये तो मशीन में बना दूंगा, आंवले को कद्दूकस करना बाएं हाथ का काम है, गाजर मूली कद्दूकस करने की मशीन बना दूं मैं। तो मैंने एक ऐसी मशीन बनाई, उन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिए जिससे मैं एक ऐसी मशीन बनाई जो गुलाब जल बनाए और वो आंवले कद्दूकस करे। फिर इस मशीन से मैंने जो है पूरा एलोवेरा मंगाया, उसके जूस बना के फिर हरिद्वार भेजने शुरू करे, जलंधर भेजने शुरू करे, दिल्ली भेजने शुरू करे, आंवले के लड्डू बना कर बेचने शुरू करे। इस तरह मैं पूरा फेमस हुआ और मेरे को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने पकड़ लिया और फिर ये मशीन जो है ना मेरी पेटेंट कराई और जो गांव के किसान है भाई, और फिर इस मशीन को अफ्रीका में दूसरे कंट्री में भेजा है और वहां पर मेरी टेक्नोलॉजी को भेजा, तो वहां पर लोगों को हमने जाकर ट्रेनिंग दी अफ्रीका के लोगों को कि भी आप वैल्यू एडिशन करके ऐसे मैंगो का जूस बनाओ, गुठली भी नहीं टूटेगी, जूस भी निकला, छिलका भी नहीं कटेगा। तो इस तरह अफ्रीका के कम से कम 17-18 कंट्रियों में ये मशीन जाने लग गई और इससे जो है ना मैंने बेटी को MBA कराया और बेटा जो है अब मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। ऐसे बदलाव आया और मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया 2013 में, 2014 में 20 दिन में राष्ट्रपति का गेस्ट रहा और अब आज की डेट में पैडमैन फिल्म में भी मुझे रखा 2018 में और मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बोर्ड का मेंबर बना और पूरे देश के स्कूलों में अब मेरे बारे में किताबें पढ़ाने लगे। एक रिक्शा पोलर टू जर्नी, एक एंटरप्रेन्योर बन गया वो। मेरे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 20-22 लड़के काम कर रहे हैं, कई महिलाएं काम कर रही हैं, काफी महिलाएं, और हम ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और हमने भी जो है ना एक्सीलेंस सेंटर ही बनाया जिसमें गांव की बहनें आए और सीखे, अलग अलग स्टेट से बहुत मतलब 20-22 हज़ार लोगों को हमने ट्रेनिंग दे दी है और वो अपने काम पे खड़े हो गए। इस तरह की मेरी ये जनजात चल रही है। आज मैं उड़ीसा में हूँ, यहाँ पर भी हमने कैसे मैंगो कटिंगों का मैंगो तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने गाजर की कटिंग, जिंजर कटिंग, गार्लिक कटिंग और इस तरह के प्रोडक्ट अचार बनाने इन बहनों को सिखा रहे हैं। अभी मैं उड़ीसा में हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है सर जी वो आप मुझसे पूछिए, मुझे तो इतना पता कि आज मैं 87 कंट्री में मैं अवार्ड ले चुका हूँ और मेरे ट्रेनिंग दिए हुए आदिवासी चाहे वो गुजरात की बहन है वो भी 50-55 लाख रुपए सालाना कमा रही है। ऐसे फौजी रिटायर होकर के आए जो 2-2 करोड़ रुपए सालाना कमाने लग गए। ऐसे भी बहुत मतलब जेल के जो निकले हुए आदमी है वो भी लाखों रुपए 20-20 लाख रुपए कमाने लग गए। तो हम जेलों में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम इधर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लोग आगे बढ़े, अपना वैल्यू एडिशन करें, तो इस तरह हम काम कर रहे हैं
3: जी। तो ये जो आपका एक सफर है जिसमें आपके सामने एक एक समस्याएं आती गई उसका आपने समाधान करना शुरू किया और न केवल समाधान किया, उसमें एक नवीनता लाई, एक नए तरीके से उसमें एक जो इनोवेशन आपने लाया वो करने के लिए साधारणतः किसी को लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, साइंस का बहुत बड़ा बैकग्राउंड होना जरूरी है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ये सवाल उठते हैं। तो आपके पास तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी आपने इन सवालों का एक मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने फिर भी कई सारे ऐसे प्रौद्योगिकी नवीनीकरण किए हैं, कई इनोवेशन किए हैं जो कि बहुत टेक्नोलॉजिकल हैं। तो वो करने में आपने किस तरीके से किसी और की मदद ली या कैसे आपने ही किया, इसका थोड़ा सा हमको बताइए।
4: ऐसा है, मैं अपने दम पे काम कर रहा था, अभी मैं ये करूं, मेरा लोगों को लोग जो है ना दूसरे कोई मेरी बात सुनता वो मेरी नकल मारने में खड़ा हो जाता कि मैं इससे पहले ये काम कर लूं, तो मेरी आदत है लोगों को बताने की, अरे भाई मैं कर लूं पहले आप ही फिर बाद में कर लेना। तो ऐसे भी हुआ, कुछ लोगों ने ऐसे में साथ में किया और धोखा भी खाया, लेकिन मैं चलता रहा और मैंने इस काम को छोड़ा नहीं, और जो मैंने सोच रखा है और मैं आज भी छोड़ नहीं रहा हूँ। मैंने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो घंटे में 200 किलो लहसुन को छील देती है, 1 घंटे में कोई आटा भी गूंद देती है मशीन, कुछ टमाटो कैचअप भी बना देती है मशीन, 1 घंटे में 200 किलो वो चिली सॉस भी निकालती है, वो गुलाब जल तो बनाती है लेकिन गुलाब का तेल भी निकाल देती है, वो गुलकंद तो बनाती ही है लेकिन गुलाब की टोकरियां भी बना देती है, वो पकाती तो इतना है कि इसमें पके हुए चलता ही नहीं, कच्चे आम का जूस निकालेगी तो पक्के आम का भी जूस निकालेगी, 1 घंटे में 200 किलो बिना बीज तोड़े बिना छिलका तोड़े, उसे पिकल भी बने कटिंग करेंगे, गाजर की भी कटिंग करेगी, गाजर का हलवा बना देगी। तो इस तरह की जो मशीन है पूरे वर्ल्ड में पहले हमारे देश की मशीन है, जिससे बाहर के कंट्री के लोग भी चाह रहे हैं कि हम जड़ी बूटियों के तेल निकाल लें, हम क्रीम बनाए, शैम्पू बनाए, जेल बनाए, जैम बनाए, या हम जो है पिकल बनाए, या फिर हम
3: तो
4: परफ्यूमरी तेल बनाए, हैं जी।
3: धर्मवीर जी, ये मशीन अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी
4: हाँ,
3: किसान को या किसी साधारण घर की महिला को जो कि चाहते हैं कि भाई अपना
4: किसी
3: छोटा
4: बहन
3: मोटा
4: को
3: कुछ
4: बेचारे
3: व्यवसाय
4: गरीब लोग
3: शुरू
4: का है,
3: करे
4: सीधी बात।
3: जी,
4: हाँ,
3: तो अगर किसी को लेना हो ये मशीन तो कितने रुपए से या कितने खर्चे में वो लेना जी
4: जो सबसे छोटी मशीन है 72,000 रुपये आज की रेट में रेट है उसका, जीएसटी अलग
3: जी
4: है,
3: जी
4: सिंगल फेज बिजली बिल किया, वो चाहे मक्के का दूध बनाओ, चाहे उसमें दूध से खोया निकालो, चाहे उसमें बर्फी बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, गाजर की छीलेगी वो लहसुन की छील, गाजर की छील करके उसका हलवा बनाएगी, और इसमें चाहे ड्रैगन फ्रूट है चाहे स्ट्रॉबेरी है सबके जैम बनाएगी, कोल्ड ड्रिंक जूस बहुत बनाएगी, कोल्ड ड्रिंक जूस पे तो बहुत ज्यादा काम कर रही है, 1 घंटे में छोटी मशीन भी मतलब कम से कम है 100 लीटर कोल्ड ड्रिंक जूस बना देगी, जो पीने के लिए मैंगो जूस हो गया आपका, फिर ये मतलब पाइन एप्पल जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, क्योंकि उसमें तो हमें पानी भी डालना पड़ेगा, चीनी भी डालनी पड़ेगी, वो हम ट्रेनिंग देते हैं जी। और ये ट्रेनिंग जो है ना
3: जी
4: वो ट्रेनिंग 2 दिन की होती है जी, उसमें उस ट्रेनिंग में हम समझा देते हैं सारा, और उस ट्रेनिंग को लेकर के लोग चाहे मेहंदी के यहाँ जंगलों में मेहंदी खड़ी है, चाहे वो मेहंदी की पेस्ट बनाए तो इसमें बन जाएगी, मेहंदी के पत्ते ला के डालो तो पेस्ट बना देगी, चाहे इसमें जिंजर डालेंगे जिंजर की, ये जो खजूर होती है जो जंगलों में खजूर खड़ी है, ये खजूर का बीज नहीं तोड़ेगी, खजूर की पल्प निकाल देगी, चाहे इसमें करौंदा है
3: जी
4: करौंदे को भी जूस बनाएगी,
3: तो ये
4: ऐसी
3: जो
4: मशीन है।
3: आपका
4: हाँ
3: ट्रेनिंग है, क्या ये ट्रेनिंग करने के लिए किसी को बहुत पढ़ा लिखा होना आवश्यक है या कितनी कितनी
4: ना,
3: साक्षरता की
4: देखो
3: आवश्यकता है?
4: कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ाई की जो है ना, वो तो एक समझाएंगे हम लोग, ये मशीन है ये स्विच दबेगा ये घूमना शुरू होगी, अगर बीज वाले फल है या बीज वाली जड़ी बूटियां हैं उनको डालेंगे बीज नहीं टूटेंगे, बीज साबुत आ जाएंगे, अनार डाल दिया अनार का बीज साबुत मिल गया, अमरूद डाल दिया अमरूद का बीज साबुत डाल दिया, अमरूद की पलप से चाहे आप बर्फी बनाओ चाहे आप उससे उसको पलप से आइसक्रीम में कन्वर्ट करो रेफ्रिजरेटर के, सीताफल है सीताफल की पलप निकाल लो और चाहे उसकी बर्फी बनाओ चाहे सीताफल की आप जगह जूस बना करके बेचो, तो जिस सीताफल का बीज बच गया अनार का बीज बच गया उनको कोल्हू में निकाल करके तेल निकलवा करके उससे प्रोडक्ट बना के बेचो, वो तो महंगे बिकेंगे, सीताफल का तेल भी 25-30 रुपये बिकता है और ये अनार का तेल भी 25-30 हजार रुपये बिकता है, तो अमरूद का तेल भी 15 हजार रुपये से ऊपर बिकता है, अमरूद का हमको पलम भी मिल गया, उसे चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम ट्रेनिंग में बताएंगे, चाहे अमरूद का फेस पैक बनाए, चाहे अमरूद का आप साबुन बनाए, चाहे टमाटो केचप बनाए, चिली सॉस बनाए, और सर जी खजूर है आपकी खजूर की टोफी बनाओ, ड्रैगन फ्रूट है उसकी आप जैम बनाओ टोफियां बनाओ, या आपने जो भी खेत में उगा रखा मक्का है मक्के का दूध निकालो, हम सारा ट्रेनिंग पार्ट में रहते हैं।
3: आपका जो ये मैं कहूंगा सर्व सक्षम मशीन है आपका, ये तो एक बार में तैयार नहीं हुआ होगा, इसको तैयार करने में कितने इसके कॉपीज बने होंगे, उसमें फिर आपने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, फिर उसमें कुछ और नया चीज जोड़ा होगा, तो ऐसे करते करते वर्तमान में जो मशीन आप इस्तेमाल करते हैं या जिसका आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं या जो अभी व्यवसाय के तौर पे लोग खरीदते हैं आपसे, उस मशीन तक पहुंचने में और जो पहली मशीन आपने सोची थी उसके बीच में कितने आपने इन मशीनों का वो अपडेट किया होगा या कितनी बार
4: डिजाइन डिजाइन
3: इसको वर्क
4: बदले
3: किया?
4: डिजाइन डिजाइन
3: जी
4: बदले गए, डिजाइन बदले गए, काफी बदलाव आया। पहले चार टांगों के ट्रक के ऊपर जो है ना, हमने एक मशीन को मोटर को अटैच करा, नीचे आग जलाते थे, फिर हमने उस ट्रक को चेंज करके उसमें जो है ना नीचे हीटर लगाए, कंट्रोल टेम्परेचर करा, फिर वो फिर भी हमको मजा नहीं आया क्योंकि धोने में प्रॉब्लम होती। फिर NID

0: इससे जो है ना ऐसे इंटीरियर ग्रामीण जो बहने सड़क पे रोड़ी तोड़ दी थी, कोई 55 साल 2 लाख रुपए सालाना कमाने लग गई। मैं कहूंगा ऐसी बहने जो आदिवासी समाज में रहती हैं, जहाँ जंगल है, अमरूद है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, उनके पास अनार है, जामुन है, वो अब जो है ना मतलब 5-6 लाख रुपए महीना कमाने लग गई। ऐसे तो बहुत उदाहरण है, चाहे वो सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट है, चाहे गुजरात का डीडिया पाड़ा है, चाहे हरियाणा के ऐसे किसान है के बेटे हैं जो डिफाल्टर हो गए थे, वो भी 55-60 लाख रुपए कमाने लग गए। वो अपने पापा को कहने लगे पापा मैं कमाने लग गया हूँ। ऐसे बहुत जाट लोग भी है जो कमाने लग गए हैं। माफ करना, इस मशीन ने मेरी तो जिंदगी बदली बदली, लेकिन दुनिया में यूरोप में वो लोग जो आइसक्रीम बनाते थे दूध की, उन्होंने फलों की जूस की एक मतलब वो कुल्फियां बना के बेचनी शुरू कर दी, वो लोग दूध से परहेज करने लग गए। तो ऐसे भी दूधिया बनाती है, 10-12 तरह के तो दूध निकालती है ये 1 घंटे में। सबसे छोटी मशीन भी 1 घंटे में 70-80 लीटर दूध बना लेती है, चाहे वो इसका सोयाबीन को, चाहे मूंगफली को, चाहे बादाम को, चाहे अखरोट को, है जी, और चाहे आपके मक्के का हो। इस तरह मक्के का दूध, मक्के की आइसक्रीम, ये तो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गया अब है।
1: तो धर्मवीर जी, आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक जो खोजी होता है, या जो एक मैं समझता हूँ आपके जैसा व्यक्ति, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का रुझान होता है, और अपने नवीनतम जो भी उनके इन्वेंशंस होते हैं, उनके द्वारा वो कोशिश करते रहते हैं समाज में कुछ बदलाव लाए। तो अभी आपके लिए आगे का लक्ष्य क्या है? आप क्या आगे करना चाहते हैं?
0: देखिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस मशीन को प्रमोट करता रहूंगा। ये मशीन जो है ना और ज्यादा अभी वो मतलब R&D में भी चल रही है, लेकिन लोगों को करोड़ों रुपए सालाना खाने को देने लग गई है, लेकिन अभी भी हम इससे जो है ना अभी भी इस पे काम पे लगे हुए, और मैंने प्राइवेट कंपनी बनाई है तो 18 कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। अब भगवान की दया से, कहां मैंने सोचा था कि दिल्ली के फुटपाथ में सोने वाला आदमी है और एक देश के राष्ट्रपति का उसके गांव में एक सरकार ने वो बटन लगाया कि राष्ट्रपति सम्मानित गाँव है, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरे किसान भाई अगर वो वैल्यू एडिशन करेंगे, उनको भी तो समाज में उनका भी नाम रोशन होगा, और इन किसानों को भी चाहिए कि वो अपनी फसल को उगा करके वैल्यू एडिशन करे। और सर जी, मैं कैसे बताऊं आपको कि भाई उनके जो ना एक उजाला शुरू हो जाएगा। आप सूरज जानते हो, एक बारीक वो जानते हो बिंदु है, ये बिंदु कितना बड़ा जाके कितना बड़ा विस्तार लेता है, है? तो ये मशीन को केंद्र बिंदु मानिए, और उन किसानों को जिनको जानकारी नहीं है वो आगे बढ़े। इसमें कोई भी शरबत बनाइए आप, ऑल एनी फ्रूट, बेर का, जामुन का, ये जामुन की कैंडी हम लोग 3,000 रुपए किलो बेच रहे हैं। जामुन की कैंडी यहाँ सड़कों पे सड़ती है, गाड़ियां गुजरती है जामुन को, सीताफल ऐसे ही फट जाते हैं। तो इनके पलब जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में हुई है, जिंजर को काट दिया है, जिंजर का तेल निकालती है, हल्दी के पत्तों का भी तेल निकालती है ये, उससे भी हम कॉस्मेटिक पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पत्ते पूरा देश वेस्ट करता है, हम तो बोले अभी हल्दी के पत्तों में हल्दी से ज्यादा तेल है, सर्च कर लो पुदीने में कितना तेल है, उसकी जड़ों में तेल नहीं है पुदीने की, हल्दी के जड़ों में तेल इतना नहीं है जितना हल्दी के पत्तों में, हम किसान वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, गाजर है, हम लोग गाजर के पत्तों को वेस्ट फेंक देते हैं, गाजर के तेल देख लो क्या भाव है, गाजर का एसेंशियल ऑयल, गाजर के पत्तों में तेल है, सारे किसान वेस्ट फेंक रहे हैं। मैं तो बार बार
1: ये जो आपने बात कही कि हल्दी से ज्यादा तेल हल्दी के पत्तों में है, पुदीने के पत्ते में तेल है, इसके लिए तो व्यक्ति को पढ़ते रहना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं, नई नई रिसर्च करते रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा अनुभव जो अपना शेयर किया, इससे लोगों को ये बात जरूर पता चलेगी कि कहीं रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक काम मेरा सेट हो गया तो मैं उसमें ही लगा रहूं, अगर आगे बढ़ने की प्यास है, ललक है, तो आपके पास भी ज्ञान कहीं ना कहीं से आता रहेगा, जिसको यूज करके आप और आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे धर्मवीर जी ने किया। और जैसे आज उन्होंने बताया, मेरे लिए भी ये नई बात थी दोस्तों, कि जैसे हल्दी के पत्ते में हल्दी से ज्यादा तेल है, अगर धर्मवीर जी रुक जाते, उन्होंने अध्ययन नहीं किया होता, तो कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल वो अपने काम को और अपने काम के जरिए पूरे देश को आगे बढ़ाने में नहीं लगा पाते। धर्मवीर जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि अध्ययन करते रहना चाहिए, कभी भी इस बात से सहमत नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने तो बहुत कर लिया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है।
0: हर किसान बहन को, हर किसान भाई को हर रोज नया अध्ययन करना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो मेरे से ज्यादा मतलब उन

0: पास एनर्जी है, वो मेरे से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन वो शर्म करते हैं, वो डर जाते हैं, उन्हें झिझक छोड़ देनी चाहिए और अपने प्रयोग निरंतर करें और अपने वैल्यूएशन करके अपने फार्म के फार्म फ्रेश उत्पाद को, चाहे वो एसेंशियल ऑयल है, देखो नीलगिरी के पत्ते कितने हैं और सफेदा, उसमें पत्ते में तेल है, उससे कितने प्रोडक्ट बनते हैं, दांतों के दर्द है, चर्म रोग है और है, बालों की प्रॉब्लम को आराम कवर करते हैं, ये लोग करना नहीं चाहते, ये सारा वेस्ट कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि समझो भाई, समझो, अभी भी समय है, समझ लो, मुफ्त
1: दोस्तों,
0: समय।
1: धर्मवीर जी का जो जीवन है उसमें दोनों बातें एकदम तय है कि सफलता तभी होगी जब आप उसके लिए जी नहीं रहे हैं लेकिन उसके लिए जूझ रहे हैं। कई लोगों का जीवन ऐसा होता है कि केवल सफलता मिले और वो शांत होके बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मवीर जी के जीवन से पता चलता है कि वो अपनी सफलता के द्वारा अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उनके नाम में ही है धर्मवीर, वीरता उनका धर्म है और उन्होंने इस धर्म का पालन करते हुए कभी भी जीवन की समस्याओं से डर नहीं देखा। निडर
0: देखो
1: होकर के वीरता के
0: हाँ,
1: साथ, उनके नाम में ही है धर्मवीर, उन्होंने वीरता को ही अपना धर्म समझा और इस धर्म का पालन करते हुए जीवन के सभी चुनौतियों से निडर होके वीरता के साथ सामना किया और उसका परिणाम दोस्तों हम सबके सामने है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने ढेरों समस्याएं आई लेकिन आज वो राष्ट्र को बदलने में, एक उन्नत जीवन देने में हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मदद कर रहे हैं। धर्मवीर जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जो
0: जी
1: युवा पीढ़ी है जो पढ़ाई लिखाई आदि बहुत कुछ करते हैं लेकिन कई बार पढ़ते लिखते हुए उनको वो टारगेट या वो नहीं मिलता जो जो कर रहे हैं। समझिए कोई इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन जब वो ऐसे अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं तो वो कई दफा अपने साथ कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे परिवार वालों को बड़ा दुख होता है। अपने जीवन के साथ वो खेल बैठते हैं क्योंकि उनको हताशा या निराशा हाथ लगी है। लेकिन आपके भी जीवन में कई बार हताशा सामने आए, कभी आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे आपके परिवार वालों को या आपके जीवन को दुख हो, तो आप ऐसे युवा वर्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि भले निराशा सामने आए, भले हार सामने आए, लेकिन उसको आगे, उसके आगे क्या है, कैसे पहुंचे उस तक के लिए, उस पहुंचने के लिए क्या मदद आप उनको आज अपने मैसेज के द्वारा देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं पूरे देश के किसानों से, किसान भाई बहनों से ठीक कहना चाहूंगा, आपके पास माइंड है, पैसा नहीं है, दूसरी बात आपके पास नेचुरल संपत्ति है, नेचुरल ग्रोइंग है, आपके पास यहाँ पर लेबर का कम रेट है, लेबर के कम रेट में हमारी मशीन और ज्यादा आपकी मदद करेगी। आप बाहरले मुल्कों में जाओगे, वहां पर लेबर का बहुत रेट है, हमारे कुछ भाई बहन बाहरले मुल्कों में जा करके लेबर करने जा रहे हैं, जहां पर उनको ये सोचते हैं कि हमको बहुत महंगा रेट मिल रहा है। क्यों ना हम अपने यहाँ देश में इतनी जमीन पड़ी है, यहाँ से ग्रो करें, फार्म फ्रेश उत्पाद बना करके हम वर्ल्ड में अपनी मोहर मार के बेचें, और जो हमारा देश हमारे साथ खड़ा है, हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, हमारे देश में भी पैसा आए और हमारे जो है ना कम रेट में जो है ना उत्पाद बनेंगे और वो दूसरे मुल्कों में जाके कई गुना ज्यादा रेट में दूसरे मुल्क के लोग खरीदेंगे, चाहे वो हमारे देश वाले भी उन इंडिया का समझ के खरीदेंगे, लेकिन जो हमारे नेचुरल आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, जो नेचुरल ग्रो होते हैं, वो हमारे खेतों में, हमारे जंगल में उगते हैं, दूसरा हम जो ग्रो करेंगे और कर रहे हैं उनको नेचुरल वैल्यू एडिशन करके उनको वर्ल्ड में बेचें और ज्यादा मुनाफा लें, इससे ज्यादा पैसा वर्ल्ड में हमारे घर पे आएगा। जैसे मेरे साथ ही रहा है, बाहरले मुल्क कई मुल्क के लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और मुझे फोन पे पता लगता है कि तेरे अकाउंट में आज इतने पैसे आ गए हैं। तो ये सभी के साथ ऐसा होना चाहिए, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा आप करो। ईमानदारी से आपको ट्रेनिंग दूंगा, जानकारी दूंगा और आपका जो सहयोग है ये एक बिंदु पूरी दुनिया को घुमाएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपने मेरे को मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे युवा भाइयों, आप अपना दिमाग लगाओ कि बाहर मुल्क में आपको कितने रुपए मजदूरी मिलती है वर्क करने के लिए, और हमारे देश में कितनी सस्ती मजदूरी में आपको बढ़िया वैल्यू डील करके हम अच्छी पैकेजिंग करके उसको गवर्नमेंट से एनालिसिस करवा करके अपने प्रोडक्ट को अपना ब्रांड बना के वर्ल्ड में बेचे, तो हमारा देश भी मान होगा हमारे को भी खुशी मिलेगी और आपके यहाँ बहुत लोगों को रोजगार आएगा और सभी को बढ़िया पैसा मिलेगा। बहुत धन्यवाद जी और बहुत बहुत आभार जी। और मैं कहूंगा जो बचपन का सपना आज आप लोगों ने मेरा पूरा कर जी, ये बात आगे
1: धर्मवीर
0: बढ़ेगी
1: जी
0: बढ़ेगी
1: आपके
0: बढ़ेगी।
1: साथ, धर्मवीर जी आपके साथ बात करने के लिए एक एपिसोड काफी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आपके साथ कई सारे एपिसोड करने चाहिए, क्योंकि आपका जीवन ही जो है एक बहुत रोचक कथा है, जिसमें हर घटना पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। इसलिए मैं हमारे श्रोता साथियों से जरूर उम्मीद रखूंगा कि जो धर्मवीर जी ने कहा कि बाहर क्या बेहतरीन है, ये झांकने से पहले, ये देखने से पहले हमारे देश में मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखना जरूरी है। क्योंकि आज भी दोस्तों हमारे पास करने को बहुत कुछ है, हम अगर थोड़ा सा अपना समय, अपनी ताकत और अपना लगन, अपना प्यार अपने देश के प्रति लगाए, तो हमारे देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। धर्मवीर जी के जीवन के इस सुंदर अनुभव को आप अपने दिल में संजो करके, जरूर अपने दिल में रख करके आगे बढ़ते रहिएगा। और जी हाँ दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए मेहमान के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत।

0: Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi, Shepard.
1: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
2: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
0: डाइटिंग? लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारे तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़े और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्नेह और मोह, इनमें क्या अंतर है। मैं इस पर अपना चिंतन शेयर करूँगी। दोस्तों, ये स्नेह और मोह क्या एक हैं या इनमें कोई अंतर है, चलिए इस विषय को जानने की कोशिश करते हैं। स्नेह माना अफेक्शन। स्नेह निस्वार्थ होता है, इसमें व्यक्ति की भलाई की कामना होती है बिना किसी स्वार्थ या प्रतिबंध के। स्नेह स्थायी और शुभ भावना वाला होता है, जिसमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलती है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह, गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह या सच्चे मित्र का दूसरे मित्र के प्रति स्नेह, ये सारे उदाहरण स्नेह के हैं। मोह माना अटैचमेंट और ऑब्सेशन। मोह स्वार्थ से जुड़ा होता है, इसमें व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसे अपने अधिकार में रखना चाहता है। मोह अस्थायी होता है और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख, क्रोध या पीड़ा उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव होना मोह का उदाहरण है। जैसे माता पिता का अपने बच्चे को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध रोकना या किसी व्यक्ति का प्रेम में अंधा होकर सही गलत भूल जाना, ये मोह की कुछ परिभाषाएं हैं। आज इस चिंतन के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि स्नेह प्रेम का शुद्ध रूप है, जबकि मोह एक मानसिक बंधन है। यदि हम जीवन में स्नेह को अपनाएं और मोह से बचें, तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सुखद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
3: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
4: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता. दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी. बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी. ये लैपटॉप है तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता. ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है. ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता. बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है. तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स. क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स. कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है. तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट.
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
4: ओम शांती.
3: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
4: थैंक यू सो मच.
3: ये आपकी लास्ट एपिसोड के बाद मुझे एक बहुत अच्छी लाइन मिली. मैं शेयर करना चाहूंगा. एज यूजुअल इट सेज यू कांट चेंज पीपल. वो तो आपने और कहा है कई बार. आइदर यू एक्सेप्ट हु दे आर और स्टार्ट लिविंग लाइफ विदाउट देम.
4: See, it's a very strong statement.
3: हाँ तो भाई एक्सेप्ट हो दिया तो हम नहीं कर पा रहे हैं.
4: ये कोटेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है.
3: ओ
4: है ना, दो ही ऑप्शन है. एक ऑप्शन है एक्सेप्ट देम एज दे आर, मतलब वो जैसे हैं उनको स्वीकार करें. और स्वीकार करें मतलब सारा दिन उनको देखते हुए, उनके व्यवहार, उनके कर्म, उनके शब्द को. यहाँ एक इनर कमेंट्री नहीं चलनी चाहिए. स्वीकार, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर. स्वीकार,
3: मजबूरन आपके साथ रहना ही है तो एक्सेप्ट करके चलना ही है, ऐसा नहीं है.
4: वो करने से मजबूरी और एक्सेप्टेंस सेम नहीं है. मजबूरी इज अ विक्टिम, एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर.
3: Acceptance is a master.
4: Acceptance is a master of the self.
3: Oh, acceptance is the master of my own self.
4: Yes, no, I accept you as you are. मतलब अब आपका कोई भी कर्म मुझे नहीं हिला सकता. Master
3: and
4: of the
3: I
4: self.
3: Do not allow any of my thoughts or my mind or my indriyas to control me anymore.
4: So I become a master, na?
3: Master, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक.
4: इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जो हम मेडिटेशन सीखते हैं उसका नाम ही राजयोग है.
3: Okay.
4: स्वयं पर राज्य करना, स्वराज्य, मास्टर ऑफ द सेल्फ. आज हम औरों पर राज्य करना चाहते हैं और जीवन का लक्ष्य है स्व पर राज्य करना, स्वराज्य. सच अ कॉमन वर्ड, वी से स्वराज्य. लेकिन कौन स्व और कौन सा राज्य? स्व पर राज्य. तो अगर हम औरों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कोई भी बात. And which means कोई भी, and it will reach to that level. हम पहुंचेंगे उस level तक. शुरू होगा छोटी छोटी चीजों से और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम उस level तक पहुंचेंगे कि कोई भी बात हमें हिलाएगी नहीं उसके बाद. सिर्फ इस इट्स लाइक या तो ये रास्ते जा सकते हैं या तो ये रास्ते जा सकते हैं. किसी भी रास्ते चलना शुरू कर दो तो आगे तो बढ़ते ही जाएंगे. आज हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, which means देखी उनकी बात इरिटेट हुए, सुनी उनकी बात परेशान हुए.
3: बात क्या, उनकी शक्ल देखते ही पता चला उनकी गाड़ी का दरवाजा ठक किया, दरवाजा खुला तो दिमाग में शुरू, अब ये आने वाले हैं.
4: ये एक जीवन जीने का तरीका है और इस पर चलेंगे तो जीवन हमेशा ऐसे ही होगी. एंड फिर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो एक आत्मा के प्रति नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा ग्रूव वो वाला बन जाएगा, मेरा रास्ता वो वाला बन जाएगा कि हरेक के अंदर छोटी बड़ी जो बात नहीं पसंद आई
3: आदत बन जाएगी.
4: आदत बनेगी ना, आई एम ऑन दिस पाथ.
3: ये पॉइंट्स ढूंढने की, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने की,
4: नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं ढूंढ रहे. जब तक वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं कि सही है, तब तक मुझे डिस्टर्ब होना अलाउड है.
3: नेचुरली उनकी दूसरी बातें नेगेटिव ही लगेंगी ना. मुझे ये कितना गलत कर रहा है, देखो ये कप सीधा नहीं रखता है, ये राइट हैंड से खाना झूठे हाथ से खाना खा लेता है. तो मतलब मेरे अनुसार नहीं चलने में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का भी हो लेकिन नेगेटिव तो लगता ही उनका.
4: हाँ, और विच मीन्स मैं गुलाम.
3: किसका?
4: मैं गुलाम अपने मन का, मैं गुलाम उनके संस्कारों का।
3: ये पॉइंट नहीं सोचा था मैं।
4: अभी सपोज आपने कहा कि क्या कहा अभी,
3: मैंने कहा कि खाते खाते वही हाथ से वो बीच में से
4: चल खाना। इतनी वाली बात भी कि खाते खाते वो वही हाथ से बीच में खाना उठाएंगे, ठीक है। अब मैं गुलाम इस संस्कार का, क्योंकि जितनी बार जितने लोग ये कर्म करेंगे मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो मैं गुलाम इस संस्कार का। मतलब उस संस्कार के सामने मैं अपना राज्य खो देता हूँ तो मैं गुलाम। आई लूज माय
3: कंट्रोल
4: एंड माय पावर ना।
3: तो
4: जब एक के सामने दूसरा कमजोर पड़ जाता है तो वो उसका गुलाम बनेगा ना फिर। तो मैं गुलाम उस संस्कार का। अब मुझे सिर्फ एक संस्कार आज चूज कर लेते हैं, भाई यही वाला चूज कर लेते हैं, कोई भी। अभी हम बड़े पे भी नहीं जाएं। देखो बड़ी बड़ी बातें किसी की, ये छोटी छोटी बातें। कोई पेन टिक टिक कर रहा है, कोई लोग ऐसे ऐसे ऐसे हाथ के साथ नकल्स कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो सारा दिन दिखने वाली हैं, जिसको हम कहते हैं आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। हम बहुत इजीली कहते हैं आई कांट टॉलरेट दिस, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बिल्कुल भी। मेरे नहीं अच्छा लगने से वो नहीं बदलेगा, लेकिन मैं बदल जाऊंगा।
3: छोटी छोटी बातें, मुझे सिस्टर अपने स्टाफ से भी ऐसा होता था पहले कि वहाँ रेड लाइट दिखी है ना, तो आप अभी से स्पीड स्लो कर लो ना, दिख रहा है सामने रेड है, आगे जाके तो रोक नहीं, नहीं वहां तक सेम फुल स्पीड में जाएंगे, नजदीक जाके वहां ब्रेक मारेंगे टाक।
4: राइट।
3: तो इवन दैट इज क्या, तुमको दिखता नहीं है। तो एक ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर, तीसरा ड्राइवर, अब यहाँ देखा कि आइदर यू स्टे विद देम और रन अवे। लेकिन फिर मेरा सवाल से बात करते करते थॉट आए, किस किस से रन करेंगे, कितने स्टाफ बदलेंगे, कितने ड्राइवर बदलेंगे जो हमारी थॉट के हिसाब से चले।
4: मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे आपने ये कहा कि वो रेड सिग्नल तक फास जाते हैं, राइट। एज अ पर्सन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देना है,
3: हाउ मेनी टाइम्स,
4: इट डजंट मैटर इवन इंस्ट्रक्शन 100 times 1000 times। एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि कोई कुछ भी करेगा, डिपेंडिंग ऑन माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं किसको कह सकता हूँ किसको नहीं कह सकता। लेकिन इंस्ट्रक्शन देना और डिस्टर्ब होके इंस्ट्रक्शन देने में फर्क है, इसमें फर्क है। वी कैन फील दैट कि डिड आई गेट डिस्टर्ब्ड और डिड आई ओनली गिव एन इंस्ट्रक्शन।
3: उसकी आदत एक बार पड़ जाती है ना, तो आपके नेचुरली जब भी आप इंस्ट्रक्शन देने लगते हो, अरे यार क्या कर रहा है, इतना भी नहीं आता तुमको, सोचो तुझसे, यूज योर ब्रेन, यू नो, इतनी बड़ी बड़ी बात यूज करके फिर इंस्ट्रक्शन देता है बंदा।
4: तो वो नेचुरली इसलिए हो गया है क्योंकि करते करते करते वो मेरा नेचुरल स्वरूप हो गया है। सी, आत्मा का जो नेचुरल स्वरूप होगा ना, वो एफर्टलेसली निकल के आता है। तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप से जो नेचुरल स्वरूप होना चाहिए था, ये कुछ ऐसे संस्कार हमारे आज नेचुरल स्वरूप हो गए हैं। जो चीज एक नेचुरल स्वरूप बन गई, उसके बाद उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो नेचुरली, जैसे हम कहेंगे एफर्टलेसली। हाँ, वो
3: एकदम एक रोल में जब करता हूँ, उस टाइम पे जब कैमरा ऑन होता है, तो मेरा नेचुरल स्वरूप है कि मैं वही हूँ। मैं अगर गुलाम का रोल कर रहा हूँ तो राजा का तो पॉइंट आता ही नहीं है।
4: तो नेचुरल स्वरूप। लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये नेचुरल आदतें जो मैंने बना ली, इससे मेरा नुकसान हुआ। एंड नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ चेंज, विच मीन्स हम इस सड़क पे जा रहे थे, अब हमने इस सड़क पे जाना है। ये दोनों सड़क बिल्कुल डिफरेंट है, दे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेंज आने वाला
3: है।
4: हाँ, ये थोड़ा चेंज नहीं आएगा, ये जो चेंज आएगा इट विल बी अ बिग पैराडाइम शिफ्ट, जैसे दिन और रात जितना अंतर होगा इस चेंज के अंदर। लेकिन मुझे सिर्फ ये सारा दिन ध्यान रखना है मैं इस सड़क पे चल रहा हूँ, ये नहीं सोचे कितना फास्ट चल रहा हूँ, चेंज आया कि नहीं, मैं कहाँ तक पहुंचा, डजंट मैटर। एज लॉन्ग एज आई एम वॉकिंग ऑन दिस रोड, आई एम वॉकिंग ऑन द राइट रोड। इट डजंट मैटर वेयर आई रीच्ड, इट डजंट मैटर वेदर आई रीच्ड वेयर आई स्टिल वॉन्टेड टू, एज लॉन्ग एज आई एम वॉकिंग ऑन द राइट रोड, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
3: सही बात है, जब मैं इंडिया में गाड़ी चलाता था लेफ्ट हैंड ड्राइव, और अमेरिका जाके राइट हैंड, दो दिन में तीन दिन में आदत हो जाती थी। तो यहाँ राइट चलाना है,
4: बस दैट्स इट,
3: राइट हैंड पे ही रहना है मुझे।
4: तो मुश्किल थोड़ी आदत को चेंज कर,
3: टर्निंग में उसमें थोड़ी ओवरटेकिंग में थोड़ा बिगिनिंग में,
4: लेकिन कितने दिन उसमें भी
3: एक फ्यू आवर्स और डे
4: आवर्स, तो आदत बदलना मुश्किल नहीं है ना?
3: नहीं।
4: तो आज हम कुछ छोटी छोटी आदतें लेते हैं सिर्फ, लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टेंस विद स्मॉल हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें दूसरों की, और अपने आप को तैयार करें, मैं किसी की आदत का गुलाम नहीं बन सकता, आई एम अ पावरफुल सोल,
3: ब्यूटीफुल,
4: मैं किसी और की कमजोरियों का मैं गुलाम, ये मैं नहीं बन सकता, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं जो चूज करूं उस बात को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, ये हर आत्मा के पास वो पावर है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्मॉल थिंग्स, एक दिन में छूटेगी छोटी बातें, एक दिन में, सिर्फ यहाँ एक स्विच होता है कि इसके लिए मैं आज तक सालों से इरिटेट हो रहा था और इसके लिए आज मैं बोलूंगा, अगर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता तो वो भी नहीं, कई लोगों को हम नहीं बोल सकते, कई लोगों को हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो वो भी नहीं, बट इट्स फाइन, दे आर गोइंग टू डू इट दिस वे,
3: स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ,
4: इट्स एज सिंपल एज दैट, छोटी चीजों में, क्योंकि छोटी चीजों में, सी छोटी चीजों में इरिटेशन होती है, हर्ट नहीं होती, तो दोनों में फर्क है। इरिटेशन को फिनिश करना इजियर है। सपोज मैं कहूँ, आपने जैसे कहा राइट हैंड से ये कर दिया खाना खाते, ये छोटी चीज है, ये मुझे हर्ट नहीं करती, तो वूंड नहीं बना, कोई घाव नहीं है। सपोज आपने मुझे चीट किया, वो मुझे हर्ट करता है, तो वो हर्ट के संस्कार के ऊपर वर्क करना और उस चीटिंग को एक्सेप्ट करना मुझे थोड़ी मेहनत लगती है, दैट विल सी लेटर, लेकिन ये छोटी चीज,
3: मैं भी सोच रहा था छोटी कौन सी चीज मुझे इरिटेट करती है, जैसे मेरे ग्रैंड चाइल्ड की मेड है, उसको एक होम्योपैथी टाइप की कुछ गोलियां बच्चे को खिलाते हैं, तो वो बॉटल से हाथ में लेती है, उसके मुंह में डालती है, तो मैं उसे ढक्कन में डाल के, ढक्कन से क्यों नहीं करती है, एक बार इवन दीज थिंग्स डिस्टर्ब मी एंड इरिटेट मी, कि तुम्हारे हाथ में कितना बैक्टीरिया है एंड ऑल दैट, तो फिर ये
4: बात, दिस इज व्हाई इफ वी मेक अ लिस्ट ऑफ इट, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट,
3: तो कितना मतलब मेरा ब्रेन थक जाता है, शाम को
4: मन थक जाता है, आत्मा थक नहीं जाती, सिर्फ डिस्चार्ज हो रही है पावर, संयम खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं,
3: थॉट भी चलता है, देन मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, देखो इन लोग को कैसा है, बच्चे के हाथ से दवा तो हमको ही देनी चाहिए कल से, वो ऐसा करते हैं, फिर एक चीज रोकने तक
4: दूसरी चीज हो जाती,
3: वो फिर दूसरा कुछ कर देते हैं,
4: दिस इज व्हाट एंड व्हिच मींस,
3: कब तक, कितनों के साथ और कितनी बार,
4: मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं, अगर वो आपका स्टाफ है, बच्चे हैं, ऑफिस में कोई है, हमें इंस्ट्रक्शन देनी है,
3: हाँ, आपने जो पहले बोला बहुत अच्छा बोला, ड्राइवर के लिए इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई देखो हमको डिस्टर्ब होता है, आप रेड लाइट देखो तो आप पहले से स्लो कर लो, आई डू नॉट लाइक यू,
4: दिस इज द स्टाइल, ये इस तरह से होना है।
3: और एक्चुअली मैं एक बात अभी थॉट चलते चलते आया कि इरिटेट होना, ये क्या कर रहे हो, ये हाथ से क्यों दे रहे हो, उसे बेटा देखो अपने हाथ गंदे होते हैं, बैक्टीरिया होता है, हम लोग कहीं भी हाथ लगाते हैं सब गंदा, इसको बच्चों को ढक्कन से दिया करो, एंड दे ऑल्सो लाइक इट, फिर सुनता है बंदा,
4: राइट, वो
3: इरिटेट होके बोलो,
4: हाँ,
3: तो उसको रजिस्टर नहीं होता है, उसको सिर्फ गुस्सा गुस्सा रजिस्टर होता है,
4: रजिस्टर क्यों नहीं होता,
3: पॉइंट रजिस्टर नहीं होता, एंगर रजिस्टर होता,
4: क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन तो पहले पहुंच गई ना, नेगेटिव, आपने मुझे अटैक किया पहले,
3: ओके,
4: यू हिट मी विद अ नेगेटिव एनर्जी, आपने मुझे, सपोज मैं कर रही हूँ वो काम जो ठीक नहीं है, तो आपने बोल, सी थॉट्स पहले शुरू,
3: हिला दिया, डिस्टर्ब हो,
4: हाँ, थॉट्स तो पहले शुरू होते हैं ना, फिर वर्ड्स में आता है, जितनी एनर्जी टर्बुलेंट होगी शब्दों की पावर घट जाएगी,
3: जितनी
4: हमारी एनर्जी टर्बुलेंट होगी,
3: हाँ,
4: हमारे शब्दों की शक्ति कम हो जाएगी।
3: वाह,
4: आप देखो जो महात्मा है वो एक शब्द बोलते हैं और उनका एक शब्द भी जाके हिट करता है, कि दूसरा कहता है दिल को बस छू ही गया, एक लाइन बोली मेरा तो जीवन परिवर्तन हो गया,
3: और मैं सुन भी लिया उनकी बात, मान भी लिया,
4: मेरा जीवन ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि उनके संकल्पों में इतनी प्योरिटी और पावर है कि फिर उनका एक शब्द भी, उसको फिर वाक्य नहीं महावाक्य कहा जाता है, कि शब्द पावरफुल हो जाता है, लेकिन हमारी एनर्जी क्योंकि टर्बुलेंट है बहुत टाइम, तो हमारे शब्दों में कोई शक्ति नहीं रहती, हमारे शब्द ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं वहां, दूसरों के ऊपर जैसे कोई उसका असर ही नहीं होता। जैसे बीज है ना, अंदर नहीं जाएगा बीज, यहीं गिर के खत्म। हम बीज डाल रहे हैं दूसरे के अंदर, उसके फायदे के लिए है, अच्छा है, लेकिन बीज जाना चाहिए ना अंदर। बीज सिर्फ ऊपर ही गया, उड़ गया उधर से, और फिर चार दिन बाद हम, हाँ चार दिन बाद हम क्या बोलेंगे, रोज इनको समझाओ तो भी समझ में नहीं आता, रोज बात बोलो तो भी समझ में नहीं।
3: प्यार से हम बीज लगाते, जब कुछ उगाना हो तो पहले वीड्स हटाते हैं, खड्डा अच्छा खोदते हैं, वो उधर की मिट्टी को
4: फर्टाइल भी करते
3: हैं, उसको नरम करते हैं ताकि वो कड़क मिट्टी में बाहर नहीं आता बीज, सॉफ्ट करते हैं, फिर हल्का पानी का छींटा देते हैं, फिर देखते हैं, फिर केयर करते हैं।
4: अभी आप ये सारी लाइंस देखो, वीड्स हटाओ, पहले सॉफ्ट करो उसको, पानी डालो, फिर बीज डालो और फिर प्रोटेक्ट करो।
3: बट नर्चरिंग आई थॉट वॉज ओनली फॉर चिल्ड्रन।
4: नर्चरिंग इज फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन।
3: नहीं, बट आज तक मैं नर्चरिंग अपने बच्चों के लिए सोचा था, अभी आपसे
4: बात। नर्चरिंग हम एक्सटर्नल करते हैं, नर्चरिंग पालना एक्सटर्नल कि खाना
3: खिलाना। इवन विद द स्टाफ नर्चरिंग, आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट।
4: सोल को नर्चर कर रहे हैं ना हम, फिजिकल नर्चरिंग।
3: वहाँ तो एक्सपेक्टेड है कि तुमको पेमेंट दे रहे इतने महीने साल महीने में, सो यू शुड बी ऑलरेडी नोइंग दैट यू पेड फॉर इट।
4: Nurturing every soul is the purpose of our life.
3: Beautiful.
4: Nurturing every soul. अब जैसे आपने कहा, बीज को डालने के लिए भी कितनी पहले सॉफ्टनेस चाहिए उसके अंदर, यही इसका ऑपोजिट कर दिया तो, कि और बीज लगा दिए, जमीन को और भी ज्यादा कड़क कर दिया, और फिर ठाक करके उस पर एक बीज ऐसे फेंक दिया,
3: मर जाता है वो।
4: ये हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले अंदर क्रिटिसिज्म की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एंड ये जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये सिर्फ उस टाइम नहीं हो रही जब वो इंसिडेंट हो रहा है। सपोज ये स्टाफ को ही फिर से लेते हैं कि दवा हाथ में डाली, अब दवा हमें पता है हाथ में नहीं डालनी चाहिए, हमें नॉलेज है। पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज उनको, हम कभी भी कोई दवाई हाथ में रख के नहीं खाएंगे, उसमें से ही निकाल के खा लेंगे या फिर हाथ पहले धोएंगे फिर खाएंगे, पहली बात उनको वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब हम देख देख के उनको जब इरिटेट होते हैं, फिर आपने कहा पीछे बाद में वाइफ को भी बोलते हैं, तो ये वैसे भी इतनी टर्बुलेंट एनर्जी,
3: व्हाइल स्पीकिंग टू द वाइफ भी उसको थॉट जाती है क्या?
4: हाँ वही ना, इसीलिए तो
3: तब भी जा रही है,
4: तब भी तो जा रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
3: आई थॉट कि मैं अकेले में जब बैठ के उसके
4: क्यों, जब बात करेंगे तो
3: इवन हम जैसे अभी मैं जब बोल रहा हूँ तभी भी जा रही
4: है। नेगेटिव सोच रहे हैं ना आप उस आत्मा के लिए, अगर आप उस आत्मा के बारे में जो सोचेंगे, सी वी ऑलवेज सो कि दो आत्माओं का एनर्जी कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है ना, वी आर ऑल नेटवर्क लाइक दैट। हम जिसके लिए जो सोचेंगे वो वाइब्रेशन रेडिएट हो गई। क्यों दूर बैठे भी रिश्ते या तो बहुत प्यारे हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। तो हमने क्रिटिसिज्म की एनर्जी सिर्फ जब वो सिचुएशन आई तब नहीं क्रिएट की, हमने पहले भी क्रिएट की हुई है। उस आत्मा को हमारे से वो एनर्जी ऑलरेडी एक जैसे मिल रही है, फिर जब वो सिचुएशन आई तब तो हम थोड़ा सा इरिटेट भी हो गए, विच मीन्स हमने वीड्स पहले ज्यादा लगाए जब भी हम उसके लिए सोच रहे थे, सिर्फ उस बात के लिए नहीं और बातों के लिए भी, जब भी उसके बारे में बात कर रहे थे मतलब वीड्स और लगाए, फिर हमने उस समय इरिटेट भी हो गए, तो मतलब हमने जमीन को और ज्यादा कड़क कर दिया, और ये सब करने के बाद हमने उसको एक अच्छी बात बोली, पता है दवाई ऐसे नहीं खिलाते तो वो बीज कहाँ जाएगा, वो बीज डलेगा ही नहीं, वो बीज डलेगा ही नहीं। एनर्जी एक्सेप्टेंस, और उसमें सिर्फ सिंपल चीज पहले क्या करनी है, किसी का संस्कार मेरी मन की स्थिति को नहीं हिलाएगा। जैसे ही मेरी मन की स्थिति नहीं हिली, वीड्स हट जाएंगी, जमीन सॉफ्ट हो जाएगी, पानी डल जाएगा, अब आप बीज डाले। सिर्फ हमारे एक्सेप्ट करने से, सिर्फ हमारे स्टेबल रहने से ये सारी चीजें हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं करना है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज
3: एक्सेप्टेंस में मुझे भी ऐसे लग रहा है कि इवन बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर जनरली इफ आई स्टार्ट लविंग पीपल, तो पूरा प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा।
4: दैट ओनली लव मीन्स एक्सेप्टेंस।
3: नहीं,
4: लव मीन्स एक्सेप्टेंस
3: एक पार्ट है उसका।
4: एक्सेप्ट करे बिना आप कह नहीं सकते कि आप किसी से प्यार करते हैं।
3: अच्छा।
4: प्यार की एनर्जी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं. दो ही चीजें हो सकती हैं.
3: नहीं, मैंने कहा इन जनरल लव द स्टाफ, लव द पीपल.
4: सो लव मीन्स व्हाट? सेंड देम व्हाट?
3: ओरिजिनल लविंग वाइब्रेशन लव. सेंड देम लव.
4: सेंड देम लव, व्हिच मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड देम. आपने जैसे एक्सेप्ट नहीं किया किसी को, आप डिस्टर्ब हुए, लव ब्लॉक हो गया, जाएगी नहीं.
3: वेयर इज द फॉल्ट, वेयर डज इट लाई? कि एक बार मुझे एक चीज अच्छी लगी आपकी, फिर 10 चीज अच्छी लगी, फिर 11वीं पे मैं फिर चिढ़ गया.
4: हाँ.
3: एक बार मतलब वंस आई लव यू, वंस आई डोंट लव यू, आई लव यू.
4: नो, इट्स नॉट वंस आई लव यू, वंस आई डोंट लव यू. जब मैं चिढ़ गया, मेरी प्यार की एनर्जी रुक जाती है.
3: तो वेयर डज द फॉल्ट लाई? कि मैं उनके 10 अच्छे पॉइंट में एक्सेप्ट किया, 11वें में चिढ़ गया. इज इट दैट कि मैं अभी तक कच्चा हूँ?
4: 10 उनकी बातें वैसी थी जो मुझे अच्छी लगती हैं, 1 उनकी बात वो थी जो मुझे सही नहीं लगती.
3: हाँ, लेकिन द गोल आई वॉन्ट टू रीच, जिस सड़क पे मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ अभी मेरी कमजोरी है ना. वो
4: ये हमारी ही कमजोरी. हाँ. है ना, दूसरे की जो है संस्कार, वो तो दूसरा वर्क करेगा उसमें. मुझे अपनी प्यार की एनर्जी को कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रखना है.
3: कॉन्स्टेंटली, आई गेस दिस इज द राइट वर्ड.
4: राइट.
3: जब वो कॉन्स्टेंट नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी.
4: हाँ.
3: तो फिर स्टिल दैट मीन्स वहाँ अभी मैं कच्चा हूँ.
4: इट्स लाइक अगर हम फिजिकली देखें, मुझे अपनी हेल्थ को कॉन्स्टेंटली अच्छा रखना है. दस दिन अच्छी, फिर 1 दिन बीमार, फिर 4 दिन अच्छी, फिर 1 दिन बीमार. मुझे ऐसे नहीं करना है. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ. तो एक बार मुझे दिखा कि मेरी तबीयत किन चीजों से खराब हो रही है, फिर मैं बैकवर्ड जाके उन चीजों को रेक्टिफाई करूं. जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि ये पर्टिकुलर चीज खाने से मेरी तबीयत खराब होती है. ठीक है, किसी का खट्टा खाने से, किसी का तीखा खाने से, किसी को रात को लेट खाने से, किसी को कम नींद से. वी नो आर पैटर्न्स ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन कई बार क्या होता है, पता होते हुए भी, मालूम भी है इसके बाद तबीयत खराब होगी, फिर भी उस समय वो चीज सामने आ गई, खा लिया. दिस इज अनअवेयर, अनइंटेलिजेंट.
3: खा लिया और पी लिया.
4: सी, नॉलेज जब तक नहीं थी, पहले हमें नॉलेज नहीं थी. जैसे एलर्जी हो जाती है किसी चीज के खाने की, तो पहले हमें नॉलेज नहीं होती कि इस चीज की मुझे एलर्जी है. वी डोंट नो. तो हम खाते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, खाते जाते हैं बीमार. फिर हमें थोड़े दिन बाद पता चल जाता है इस चीज की मुझे एलर्जी है, उसके बाद भी खाना, दैट्स माय चॉइस नाउ. द सेम, अभी हमें पता नहीं था पहले कि किन किन चीजों से मेरी पावर और खुशी और प्यार सब खत्म होता जा रहा है. क्यों मैं इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, अच्छा पढ़ लिख के, अच्छा बिजनेस करके, अच्छा परिवार होके, सब कुछ होके, मैं फिर क्यों बोलता हूँ मैं खाली खाली हूँ? हमें नॉलेज नहीं थी. फिर हमें नॉलेज मिलती है कि ये देखो, ये छोटी छोटी छोटी छोटी चीजें हम सारा, छोटी छोटी, बड़ी वाली भी नहीं, छोटी छोटी छोटी छोटी हम चीजें सारा दिन कर रहे हैं, इससे मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है. तो टुडे नाउ अगेन स्टार्ट, कि आज से ये वाली चीज मैंने नहीं करनी, इससे मेरी शक्ति कम होती है. वो स्टाफ वो बच्चे को दवाई दे रही है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे कई कई कई कई गुणा गड़बड़ मेरे अंदर हो गई उस सीन को देख के. फिर मेरे लिए तो कोई दवाई भी नहीं होगी उसके बाद.
3: वो छोटा मोटा बैक्टीरिया जो बच्चे के पेट में चला जाता था,
4: this,
3: वो तो उसका इम्यून सिस्टम उसको ठीक भी कर देगा.
4: दिस इज वेरी,
3: लेकिन मेरा तो परमानेंट मार्क है.
4: This is very important. And ये सारा दिन की चीजों में देखो. अब वापस वो गाड़ी को भी देख लो जो रेड सिग्नल पे फास्ट जाती है. वो जाती है तो थोड़ा नुकसान किस चीज का होता? गाड़ी का होता, थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन का होता. जनरली सारा दिन में हम देखेंगे ना, तो बाहर के नुकसान की वजह से हम अंदर अपना कितना नुकसान करते हैं कि ये क्यों किया, ये क्यों किया. विच इज गुड, वी विल टेक केयर ऑफ इट. लाइट क्यों ऑन छोड़ दी? हाँ तो बोलो ना, लाइट ऑफ कर दो प्यार से.
3: या बंद निकले, गीजर ही नहीं बंद किया,
4: बंद
3: कभी करते ही नहीं है.
4: तो वी वॉन्ट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी वॉन्ट टू सेव मनी, वी वॉन्ट टू सेव रिसोर्सेज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग आवर सेल्फ. तो फिर ऐसी सेविंग का क्या फायदा होगा?
3: ये तो डबल लॉस है.
4: डबल लॉस नहीं है, ये इररिपेरेबल लॉस है. कितना नुकसान हो गया, सेहत पे असर हो गया, उसके सामने गीजर और

0: तो अपने सामने कोई एक आत्मा को लेकर आए
1: ओके,
0: और उसकी कोई एक आदत, ज्यादा नहीं लंबा करना है, सिर्फ एक आत्मा, एनी वन पर्सन क्लोज टू यू कि जिसकी आदत को आपको कई बार देखना है दिन के अंदर. तो ब्रिंग बिफोर योरसेल्फ वन पर्सन एंड वन हैबिट ऑफ दैट वन पर्सन, जो हम कहते थे ये मुझे इरिटेट करती है, एंड देन लेट्स मेडिटेट फॉर दैट.
1: श्योर,
0: सिट बैक. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. आई एम अ पावरफुल सोल. I am a master over my thoughts, feelings and sanskars. मैं अपना राजा हूँ. किसी की छोटी छोटी आदत मुझे अपने राज्य से हिला नहीं सकती. लेकर आए उनको अपने सामने जिनकी कोई आदतें आज तक डिस्टर्ब किया करती थी. देखे उनको और देखे उस संस्कार को. आज से विद अंडरस्टैंडिंग कि ये उस आत्मा का संस्कार है, I accept this sanskar. I accept this sanskar. आज से ये संस्कार मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा. इंस्ट्रक्शन देंगे, राय देंगे, बात समझाएंगे, लेकिन पहले अपने राज्य में स्थित होकर कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, मास्टर ओवर माई सेल्फ एंड देन एडवाइस एंड ओपिनियन टू अदर्स. आई एक्सेप्ट देम एज दे आर. ओम शांति.
1: आई एक्सेप्ट देम एज दे आर. थैंक यू सिस्टर.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.
2: Swarajya means rule over the self, where the soul is in charge of its every thought, feeling, sanskar, word and behavior. When we are unable to rule over the self, we look for control over people and situations. If we repeatedly get disturbed by the sanskars of others, then we become a slave to their sanskar. We are unable to remain in our seat of power whenever we encounter that sanskar or behavior. When we accept their sanskar, we remain in our seat of power and become a master. If our thoughts are negative, our energy is turbulent, then our words lack power. Powerless words accompanied by negative energy will not have an impact of transformation on people. A peaceful mind will create powerful words, and these influence people and inspire them to change. Let us make a list of simple habits of people which we are unable to tolerate and get irritated. It is only a programming of the mind. We always told ourselves we cannot talk.

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐकलत
1: बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांट। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाए के चौथे अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं प्रीत माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण का प्रेम इतना सुंदर और गहन है कि हर हृदय की भक्ति और अनुराग भर उठता है। गोपियों के प्रति उनका स्नेह, मित्रों के प्रति उनका अपनापन और भक्तों के प्रति उनका असीम करुणा, यही है प्रीत माधुरी का सार। कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप केवल शक्ति या ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तो वह केवल दो आत्माओं का संगम नहीं होता बल्कि यह ब्रह्मांडीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। हर भक्त जब श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में अनुभव करता है तो उसका जीवन भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस अध्याय में डूब जाए उस प्रीत माधुरी में जो हमें सिखाती है कि प्रेम ही ईश्वर का सबसे मधुर उपहार है। तो दोस्तों सुनते हैं प्रीत माधुरी कलाए का एक सुंदर गीत।

तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था, वह प्रेम वृंदावन की हर गोपी, हर जीव जंतु और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जन स्वार्थ था, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्पण था। इसी कारण श्री कृष्ण को कृत माधुरी की कला का प्रतीक माना जाता है। यह कला हमें सिखाती है कि ईश्वरीय प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समस्त सृष्टि को आलिंगन करता है। हर हृदय में, हर जीव में, हर कण में वही प्रेम व्याप्त है। तो दोस्तों, आइए इस अध्याय में हम अनुभव करें उस प्रीत माधुरी को, जो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही ईश्वर का सबसे सुंदर मधुर उपहार है।

तो दोस्तों, भागवत कथा में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण रासलीला करते थे तो हर गोपी को वो लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। ये अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। हर भक्त को लगता है कि वह ईश्वर का सबसे प्रिय है और यही अनुभूति भक्ति को अमर बना देती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही है प्रीत माधुरी, वह कला जो हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ सर्वव्यापी और अनंत है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गूंजती बांसुरी सब मिलकर यह संदेश देते हैं कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा के सीमित नहीं था, वह तो हर जीव, हर प्राणी और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जनस्वार्थ या जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्पण था। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है और हर हृदय ईश्वर के आलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं प्रीत माधुरी कला का तीसरा और सुंदर गीत। तो दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो, सुनते रहिए और सुनाते रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, प्रीत माधुरी हमें सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ है आत्मा पूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देते हैं, तब हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। कृष्ण का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। यह प्रेम हमें बताता है कि भक्ति का मार्ग त्याग और समर्पण से ही प्रशस्त होता है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गुंजती बांसुरी तब यही दर्शाते हैं कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है आत्मा का परमात्मा में विलय। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तभी सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण का एक प्यारा सा सुंदर गीत।

तो दोस्तों श्रीमद् भागवत में कहा गया है राघव माधव वंदे राधा माधव माधवम। इस श्लोक का भावार्थ है कि राधा और माधव का प्रेम अद्वितीय है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। जब भक्त अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो उसका जीवन प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण यह दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम की ओर भावना नहीं बल्कि भक्ति का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम अनंत और हर हृदय को अलौकिक करता है। तो दोस्तों सुनते हैं प्रीत माधुरी का अगला एक सुंदर गीत।

तो श्रोताओ, यह थी चौथी कला प्रीथ माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला पड़ाव होगा गीता माधुरी, यानी श्री कृष्ण की मधुरता। वह गीत जिनमें भक्ति का रस है, प्रेम का संदेश है और जीवन को आनंद से भर देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य साधन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, सुनते रहो और सुनाते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम। तो आइए आज के इस शो में हम लोग के अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने सुनेंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग के अक्षर के गाने सुनकर बहुत खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि के अक्षर के जो खूबसूरत गाने हैं वो पूरे एपिसोड में, पिछले भी एपिसोड में हमने सुनाया था और आज के इस एपिसोड में भी आप के अक्षर वाले गाने जरूर सुनेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, किशोरदा का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत, तीन देविया इस एल्बम से। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कौन सा गाना ये, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। चलिए मैं गाने लग जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, आपको गाना सुनाते हैं। कहते हैं सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग। आप सुनाए हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म तीन देवियों से। ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है देवदत्त, और वो दुकान में संगीत वाद्य यंत्र बेचने का बहुत ही सिंपल काम करता है। लेकिन समय के साथ साथ हालात कुछ अच्छे बदल जाते हैं। उसकी लिखने की कला जो है रंग लाती है। उसकी एक छोटी सी आदत थी कविता लिखने की, और ये उसके बॉस को बहुत पसंद आता है, और फिर बात कुछ और ही बन जाता है। देखते देखते व्यक्ति जो है कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं, और इसमें तीन हीरोइन हैं जिसके बीच में क्लाइमेक्स लव स्टोरी को भी दिखाया गया है। कलाकार थे देवानंद नंदा, सिमी गारिवाल और कल्पना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। कैफी इरफानी का लिखा ये गीत है, मुकेश साहब का गाया। किसे याद रखूं किसे भूल जाओ कभी कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं। आग लगाना मेरी फितरत में नहीं है, मेरी सादगी से लोग जले तो मेरा क्या जी हाँ, राजेश एक व्यक्ति है जिसके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया था फिल्म अनुराग, जो एक ही शर्त पर गरीब नेत्रहीन लड़की के साथ उसकी शादी के लिए सहमत होता है। उसकी दृष्टि एक सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन सर्जरी के लिए लड़की को एक दृष्टिदाता की भी जरूरत पड़ती है। फिर क्लाइमेक्स वहीं पर है। तो आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

जी हाँ, अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत गीत राजेश खन्ना, अशोक कुमार, मौसमी चट्टान जी और विनोद मेहरा पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गीत अनुराग 1965 का आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फरिश्ते ही होंगे जिनका हुआ इश्क मुकम्मल, इंसाना को तो हमने सिर्फ बर्बाद होते देखा है। जी हाँ, ये आगे बढ़ते हैं। 1959 का एक खूबसूरत गीत मुझे याद आ रहा है जिसका नाम है अनारी। अनारी इस फिल्म का ये गीत है जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, मुकेश जी ने गाया है, शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए, किसी की मुस्कुराहटों पे। जी हाँ, एक ईमानदार व्यक्ति राज खुद को मुसीबत में पाता है जब उस पर उसकी मालकिन को मारने का आरोप लगता है जिसकी मृत्यु जहर से होती है। पुलिस उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आता है और गिरफ्तार करती है। उसके बाद फिर उसकी रिहाई के लिए काफी जो है मशक्कत करनी पड़ती है। हीरोइन हीरो का साथ देती है, इस तरह से ये बताया है। राज कपूर, नूतन, ललिता पवार, मोतीलाल और शोभा कोटे पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, शंकर जयकिशन साहब के संगीत से सजा ये गीत अभी आपके लिए।

तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, कश्मीर की कली। बस यही सोचकर कोई सफाई नहीं दी हमने कि इल्जाम भले ही झूठे हो पर लगाए तो तुमने। ऐसे बिहारी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, ओपी नैयर का संगीत। किसी न किसी से कभी न कभी, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। एक और खूबसूरत गीत मुझे याद आ रहा है 1967 का, और ये गाना साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था, महेंद्र कपूर ने गाया था, रवि साहब ने संगीत दिया था। फिल्म हमराज। इस फिल्म में एक मंच अभिनेता कुमार अपनी पत्नी पर संदेह करता है, जो अजीब तरह से बर्ताव करना शुरू करती है। हालत मोड़ लेते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन्हें समझ में आता है कि ये सिचुएशन क्या थी। तो एक सस्पेंस फिल्म है, सुनील दत्त, राजकुमार, विम्मी, मुमताज और सारिका पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म हमराज। इसी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। तेरे शहर के कारीगर बड़े अजीब है ए दिल, कांच की मरम्मत करते हैं पत्थर के औजारों से।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, पता नहीं तू रूठी थी या मैं रूठा था, पर साथ हमारा बस जरा सी बात पर छूटा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1953 में आई थी पतिता, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है निर्मल। राधा के साथ अपनी शादी की सभी व्यवस्था करता है, लेकिन राधा अचानक भाग जाती है। बाद में निर्मल राधा को बच्चे के साथ मस्त राम के घर निवास करते हुए पाता है, और राधा वो बच्चा खुद का होने का दावा भी करते हैं। तो इस तरह से ये फिल्म में ये एक ट्रेजेडी बताई गई है। तो आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है इस फिल्म में, और इस फिल्म के कलाकार है देवानंद, ललिता पवार, उषा किरण और C.S. दुबे। शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका मालूम है हाँ।

0: लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे चाचा,
0: तू जा जा, ए जा जा, जा मुंह धो के आ।
1: अरे चाचा,
0: तू जा जा, अरे जा जा,

की पहाड़ी है, काटे की लाड़ी।

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी कालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। जी हाँ, जहाँ सेंसेक्स के इंडेक्स को देखते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है। तो जब हमने अपने आप को देखा और हमने पिछली कड़ी में आपसे कहा था कि एक मिनट का पॉज जरूर लें, एक सेकंड का पॉज जरूर लें और देखें कि दिन भर में आपकी खुशी कहाँ तक जाती है, तो यो यो करती इस हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास है इस पूरी श्रृंखला में। और हमारा सौभाग्य कि आज भी हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। टुडे इट्स परफेक्टली फाइन अभी तक तो, लेकिन अगेन यू नो लाइक हम इतने अनप्रडिक्टेबल हो चुके हैं कि हमें नहीं पता
1: कब क्रैश करेगा,
0: कब क्रैश करेगा और कब कोई। अब अगर पिछली कड़ी को देखते हैं तो हमने ये समझा था, देखा था ये बात कि जैसे ही किसी अपने को जिस पर जिसकी खुशी पर मेरी खुशी निर्भर कर रही थी उनका इंडेक्स खराब हुआ तो मेरा इंडेक्स भी खराब हो रहा था। वो एक्चुअली हम अल्टीमेटली इस पर भी आना चाहेंगे शिवानी कि कैसे ये सब अनअफेक्टेड में रह पाऊंगी।
1: एक्चुअली जो पिछली बार हमने बात किया, आई वाज जस्ट थिंकिंग राइट नाउ व्हाइल यू वर टॉकिंग, वो एक कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल फेलियर भी बनता है।
0: हाँ,
1: यू नो सपोज आई वाज जस्ट पुटिंग इट ऑन माय सेल्फ एंड आई थॉट कि अगर मैं आज सारा दिन मेहनत करूं आपके लिए कुछ करने के लिए कि आपको खुश करूं और फिर आप नहीं खुश हो, तो देन दैट बिकम्स माय पर्सनल फेलियर कि मैं नहीं खुश कर पाई आपको। तो दो मेरे ऊपर वो आ जाते हैं, एक कि आप खुश नहीं हुए और दूसरा मैं केपेबल नहीं थी,
0: मैं फेल हो गई।
1: तो वो पर्सनल फेलियर भी कहीं ना कहीं मुझे दर्द में ले जाता है और आप खुश नहीं हुए वो भी मुझे दर्द में ले जाता है,
0: तो मेरी खुशी बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। वंडरफुल। सो अगर दो तरह का दबाव पड़ेगा तो मेरा सेंसेक्स डेफिनेटली डाउन जाएगा, तो उन दबावों से कैसे अपने आप को ध्यान रखना है वाली बात है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं खुशी के बारे में सोच रही थी शिवानी, तो ना सिर्फ लोगों के साथ, मेरे पास बहुत सारी और चीजें खुशी देती हैं। When I buy a new dress, you know.
1: You're wearing a new sari today.
0: Yes. People have been talking about my saris, actually, if I look at it. Yeah. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं, या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूं कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूं कि घर, इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, यू नो कई बार, या फर्नीचर, सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिजाइनर है, जो बहुत इट definitely gives me happiness.
1: Let's keep buying every day new things.
0: No, but we can't.
1: We can't do that. सही बात है। It is true. एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में जरूर ढूंढते हैं। एक्चुअली तो अगर हम अपनी पूरी दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, समटाइम्स एन एडिक्शन, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना। समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस।
0: अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज देखी, सपोज मैंने शोरूम में देखी, सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विद मी till the time I buy it, it stays, you know.
1: Yes.
0: And True. The thought keeps on coming that True. I have to buy that.
1: Because जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई, you know. अगर आप अटैचमेंट की बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहां पे ड्रेस है या गाड़ी है, whatever, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ इट इज देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड। चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माय माइंड। एनीथिंग व्हिच इज ऑन माय माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर
0: इज अटैच्ड,
1: माय अटैचमेंट, पीपल ऑन माय माइंड।
0: एक्टर पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग
1: में। मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर
0: हमेशा, यस,
1: इट इज लिविंग विद दोज पीपल या वो ऑब्जेक्ट्स या वो सिचुएशंस, तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड। तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते ही हैं सुख सुविधाओं के साधन, यू नो, सुख भी सुविधा भी, तो सुविधा डेफिनेटली कम्फर्ट, बट समवेयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने मिक्स कर दिया और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी।
0: लेकिन इफ आई एम कम्फर्टेबल, आई एम हैप्पी।
1: कम्फर्टेबल फिजिकली,
0: अदरवाइज
1: लेट्स लुक एट इट फाइन अगर मैं लेट्स लुक एट इट डज दिस लॉ वर्क फॉर मी कि अगर मैं फिजिकली कंफर्टेबल हूँ देयरफॉर मैं खुश हूँ विल दैट ऑलवेज बी एप्लीकेबल
0: आई फील दैट वे
1: अच्छा चलो आज आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं ठीक है
0: इट फील्स गुड यस
1: इट फील्स गुड और फिर आप उस गाड़ी में बैठ गए गाड़ी इज कम्फर्टेबल एनी गाड़ी व्हिच एवर गाड़ी वी हैव इट्स कम्फर्टेबल हम पहले 4 लाख की गाड़ी खरीदी खरीदते खरीदते खरीदते हम 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच गए ऑफकोर्स फीचर्स
0: बढ़ते गए
1: कम्फर्ट्स वो बढ़ते गए हैप्पीनेस भी उतनी बढ़ती गई प्रोपोर्शन फ्रॉम 4 लाख टू 40 लाख
0: No, when I am sitting there, see, I'll tell you. Huh. When I'm sitting there and I'm playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that. Okay. There were like so many gadgets in the car. I enjoyed them, you know. Yeah, that's happiness.
1: Stimulant.
0: Yes.
1: स्टिम्युलेंट है एक नवीनता है एक कुछ एक्साइटिंग है वो मैं कर रही हूँ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है कितनी देर
0: हाँ उतनी देर तक
1: है ना अब उतनी ही देर में वो कंफर्टेबल गाड़ी कम्फर्ट वो गाड़ी कम्फर्टेबल है और वो हमेशा कम्फर्टेबल रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड ठीक है ना लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड
0: नहीं
1: दिस इज व्हाट वी हैव टू से कि वो ऑब्जेक्ट किस क्या चीज देने के लिए बना है
0: वो कम्फर्ट दे रही है वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है वो सब
1: उसका
0: कुछ कर रही
1: एसी बहुत अच्छा
0: फीचर्स
1: है
0: उसके हैं ये
1: उसका एसी हाँ. बहुत अच्छा है उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है उसका सब कुछ बहुत अच्छा है ये चीजें मेरे शरीर को मेरे कानों को मेरे कंफर्ट को मेरे बैठने के पोस्चर को मेरी बैक को ये सब चीजों को बहुत कंफर्टेबल है आज कंफर्टेबल है कल होगा और हमेशा रहेगा उसका कंफर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं आपका कंफर्ट लेवल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा जो फीचर उसने आपको सेल किया उस कार ने उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा तो हमेशा रहेगा ना हमेशा रहेगा आप कभी भी उसमें बैठो लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे
0: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम खुश हैं
1: अभी आप ऑफिस से निकले आपके अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में खुश हैं या कंफर्टेबल
0: नहीं है खुश
1: कंफर्टेबल तो है ना लेकिन
0: तो कंफर्टेबल होते ही मैं थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है सी
1: कंफर्ट तो इज नो डिनाइंग कि हमें फिजिकल कंफर्ट चाहिए लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे हमने कहा आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल बी हैप्पी बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर हो सके बहुत परेशान हूँ बहुत दुखी हूँ मेरे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ में कि मैं एक्चुअली सुसाइड करने का सोच रही हूँ या मैं अभी अभी साइकाइट्रिस्ट से ही आ रही हूँ उस गाड़ी के अंदर बैठ के
0: सही बात है वो तो एक्चुअली
1: आई मीन इट जस्ट द कार इज नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व माई इश्यूज इन लाइफ द कार इज नॉट बीइंग एबल टू गिव मी हैप्पीनेस
0: लेकिन उतनी देर तक तो दे रही है ना हैप्पीनेस
1: कंफर्ट दे रही है ना कंफर्ट दे रही है सी अब हो सकता है कि मैं 1-2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी में हूँ
0: यहाँ ना अगर मैं एंगर में हूँ आई एम वेरी एंग्री अपने या मैं कुछ बहुत पेन में या हर्ट में आती हूँ और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ अब यहाँ पे ये कंफर्ट भी ना होता तब तो मैं और एंग्री हो जाती
1: नो डिनाइंग दैट
0: कम से कम एक नॉच कम तो किया उसने एंगर को
1: गुस्से को आपको ये कम नहीं करेगा
0: हाँ मतलब
1: आपका शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा तो आपका एक जिस चीज का आपको ध्यान रखना होता है एक चीज आपके यहाँ से निकल जाएगी लेट्स से एसी भी नहीं है तो बहुत पसीना है तो मैं उस बात से परेशान हूँ लेकिन चलो कम से कम कुर्सी तो ठीक है ना ठीक है अगर कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होती तो एसी भी नहीं है कुर्सी भी नहीं है लाइट्स भी इतनी ज्यादा तो ऑब्स्टिकल्स जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कंफर्टेबल कुर्सी दे दी तो मेरा वो एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ वो मेरी लिस्ट से बाहर चला गया लेकिन कुर्सी मुझे खुशी दे देगी
0: ये नहीं
1: या मुझको ताकत
0: मेरा जो
1: दे
0: वो
1: देगी
0: बेसिक वो था वो नहीं कर पाती
1: नहीं करेगी हाँ ये है कि कंफर्टेबल कुर्सी होने की वजह से मैं उसके बारे में एटलीस्ट निश्चिंत हो गई हूँ नहीं तो मैं कुर्सी पर भी बैठ के बोलती रहती बैठा ही नहीं जा रहा इधर भी दर्द हो रहा है इधर भी दर्द हो रहा है लेकिन कुर्सी खुशी नहीं दे रही है खुशी नहीं दे रही अगर ये मुझे खुशी दे देती तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊं ना इस पर बैठते आई एम स्टिल इन पेन, आई कुड बी इन एंग्जाइटी, आई कुड बी इन एंगर. कुर्सी पर बैठने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता. हाँ, एक और बात जिसके लिए आप गुस्सा करने वाले थे,
0: तो एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं आने देता
1: वो, ठीक
0: और
1: है.
0: दूसरा एक और भी है कि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आते ही, आई हैव सीन दैट, मतलब ज्यादातर लोगों के सामने, कि अगर वो बहुत गुस्से में है कुछ है, अपनी कंफर्टेबल जगह पे आते ही एक बार को तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मतलब ले सकते हैं.
1: If they do that, that's fine. But फिर भी गुस्से का
0: पूरा साइकिल तो चलता.
1: और जो ये ऑब्जेक्ट्स जो हम
0: खरीदते भूल ही जाते हैं उसके बाद, तो जब इतनी मेजर प्रॉब्लम चल रही होती है, यस ऑफ कोर्स आई थिंक यू ऑल एग्री कि जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आ जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ये क्या कर रहे हैं.
1: जब पहले दिन अगर बड़ी गाड़ी खरीदी तो everyone in the house is very happy, everyone is very excited. But for how long? 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस. जैसे बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है. फिर वही जीवन है, झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही डिस्कशंस. फिर हम कहें कौन सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लें. सी व्हाट इज हैपनिंग, मेरी जीवन, जैसे आपने शुरू में बोला, वो यो-यो की तरह जो चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है. अब मुझे कुछ कुछ ऐसा करना है हर थोड़े दिन बाद जिससे आई गो टू द पीक.
0: यस, यू नो, बिकॉज
1: आई अग्रीड कि माय लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स. अब डाउन्स किस सिचुएशन में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग अलोंग विद पीपल, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार स्वभाव टक्कर में आ रहे हैं, मेरा दर्द है. अब मैं क्या करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं अप वाली फीलिंग क्रिएट कर सकूं.
0: क्योंकि जैसे हम ज्यादा देर लो में होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर
1: Now,
0: फिर लगता है कि उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए.
1: अब अगर मेरी फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है हम एक दूसरे से, ये चलो आज मैं एक चीज खरीद के लाती हूँ घर के लिए, एक प्लाज्मा ले लिया आज, ठीक है. See, the whole environment in the house changes.
0: We reached to that again, वो यो-यो का वो ऊपर वाला आ गया.
1: और सब एक दूसरे से आज बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, सब कहते हैं आज तो ट्रीट होनी चाहिए.
0: Let's throw a dinner party. You know, again, कई relationships में देखा है कई couples में कि जब ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है सो दे डू कि फ्रेंड्स के साथ एक डिनर कर लेते.
1: Yes, yes. So why are we doing all these things? तो जैसे हम ये लाते हैं घर के अंदर तो एक नवीनता आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक कुछ हमारी वो फीलिंग कि हमने अचीव किया वो बढ़ता है. और सडनली सब लोगों का अटेंशन किस चीज पर चला जाता है, उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट आने पर और उसके एक्साइटमेंट पे, तो पूरा एनर्जी लेवल घर में क्या हो जाता है,
0: बहुत अच्छा,
1: इट्स वेरी हाई, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज टॉकिंग वेरी नाइसली. कल झगड़ा कर रहे थे, कल आए तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू द हस्बैंड, हस्बैंड वॉज कंप्लेनिंग टू द वाइफ, बच्चे कह रहे हैं आपके पास तो हमारे लिए ये. लेकिन आज घर का वातावरण कैसा है, बहुत अच्छा है. 2-3 दिन वो प्लाज्मा का इफेक्ट रहेगा पूरे घर पे, फिर फाइनली कितने दिन, कितने दिन
0: प्लाज्मा एक तरह से वो लड़ाई फिर से,
1: फिर नॉर्मल आ गया, इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द वॉल. फिर उसके बाद मेरी वही वाली चल रही है सारी, फिर मैं थोड़े दिन के बाद अब मैं क्या नया खरीद.
0: दिस इज व्हाट लाइफ इज, सी What is the
1: yo-yo is what life is.
0: No, but that's what we say, you know, कि कभी खुशी है, मतलब जिंदगी में यही तो है कि अब हमेशा तो खुशी नहीं रह सकती, इन द सेंस कि हमेशा ही तो कुछ नहीं आप अचीव कर सकते. तो जब आप अचीव करो, जब आपको वो मिले, तब आप यू नो यू शुड एंजॉय इट, एंजॉय द मोमेंट्स एज मच एज यू कैन, लिव द मोमेंट्स, यू नो, दीज आर द ऑल,
1: नो डिनाइंग. लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग कितनी बार चीजें खरीदते रहोगे, कितने बार साल में नई गाड़ियां खरीदोगे, कितने बार नए टेलीविजन, नए मोबाइल. नया मोबाइल आया नहीं मार्केट में तो आई वॉन्ट टू बाय द न्यू मोबाइल.
0: यू नो नाउ टू अनदर थिंग विच हैज स्टार्टेड हैपनिंग टू सचिवानी इज आई वॉन्ट इट. People have just, you know, the moment they see it.
1: Now, ये जो आपने expression create किया, I want it. This is an expression of so much, you
0: need,
1: know,
0: need, yes,
1: so
0: yes.
1: much stress. Till I get it. तो जब तक मुझे नहीं मिला मेरी,
0: you know, I had
1: state
0: a,
1: of mind
0: an altercation with my daughter. Actually, I don't want to talk about it, but then that happened. She wanted different colored lenses, you know, and why? Because she had seen in the ad, and this was like, I want them. I need them.
1: You know? No, it's not I need them, I want them.
0: I want them, yes, you know, because what for? Everyone else has them.
1: ठीक है. तो फिर उसके लिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा हो सकता है, घर में झगड़ा भी. फिर सपोज वो आ गया तो वेरी हैप्पी, कितने दिन?
0: गुम अगले दिन गुम जाते हो जी,
1: दो दिन के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम, सो वी हैव टू बी नॉट सेइंग दैट वी डोंट वांट दीज ऑब्जेक्ट्स, भले घर में जितना खरीदना है खरीदते जाएं, लेकिन कई बार तो इन चीजों के पीछे ही घर में स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि मेरे घर में ये नहीं है, उनके घर में है, या हमारे पास ये होना चाहिए. तो ला तो खुशी के लिए रहे हैं, लेकिन क्रिएट क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस. जब वो आ जाएगा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें हमें क्या देती हैं. लेट्स बी वेरी क्लियर, ये हमें आराम देती हैं, आराम देने के लिए बनी है, शरीर को आराम देने के लिए बनी है, मन को आराम देने के लिए ये नहीं बनी थी. और ये शरीर को आराम देने के साधन इकट्ठे करने में कहीं ना कहीं हम मन को तंग कर रहे हैं सारा दिन. यू नो, आई क्रिएट पेन, जेलसी, कॉम्पिटिशन, एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई acquire these objects. तो ये तो comfortable हो गया, that's one part of the story. इसका क्या हाल है? और फिर इसको तो अगले दिन, ये तो comfortable रहेगा, जितना दिन कुर्सी पर बैठेगा comfortable रहेगा, इसके comfort का ध्यान रखने का क्या? तो जितना ध्यान शरीर के comfort का रखते हैं उतना ही ध्यान, इसीलिए हमने कहा साथ साथ मन को comfortable करने का क्या.
0: तो हमारी ये इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए, वेरी ट्रू. वन थिंग विच यू सेड विच वी नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट, कि हम जो चीजें चाह रहे हैं वो हमें क्या देंगी, पहले इस पे हमें क्लैरिटी रहे, यू नो, बिकॉज दिस इज अंडरलाइन.
1: यू नो, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से
0: समझ
1: यूज करती है. दे आर वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट आई फील. जो भी एड बनती है वो क्या दिखाती है, कि ये जब आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश हो जाएगी, आपके बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे, आपका रूठा हुआ हस्बैंड आपसे खुश हो जाएगा. नाउ दिस प्लेज विद माय साइकोलॉजी एंड आई से ओके, इफ आई आल्सो गेट दिस, मेरे भी ये जो सारे लोग हैं ना
0: ये
1: खुश हो जाएंगे. तो एक चीज है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों को जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वन इज फॉर फिजिकल कम्फर्ट, वेरी गुड, बट रिमेम्बरिंग खुशी नहीं देगी. दूसरा है लोगों को खुश करने के लिए हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि यू नो, अगर मैंने ये खरीदा तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा. एक बार रुक कर चेक करना पड़ेगा उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आजकल. बच्चों का कितने दर्द में है वो बच्चे आज, नोबडी इज लुकिंग एट दैट. हम रोज शाम को घर आते आते उनके लिए कोई एक प्ले स्टेशन, कोई ये वीडियो गेम, कोई ये ले आते हैं, सोचते हैं कि ये दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे.
0: एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए वो
1: हो जाते हैं. एग्जैक्टली. जैसे हम, अगर मैं खाली हाथ आ रही हूँ तो उन्होंने तो गुस्सा करना, आप आए इतने लेट, मुझे आज मेरे स्कूल में वो था, प्रोग्राम था, आप आए नहीं, व्हाटएवर. सो आई गेट वन प्ले स्टेशन वाइल कमिंग फ्रॉम वर्क, उनको दे दिया. वो भूल गए उस बात को, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, उसको खेला, हमें लगा हमने उनको खुशी दी, हमने उनको थोड़ी देर के लिए एक स्टिमुलेंट दिया, उल्टा हमने उनको और भी उस प्रोसेस से हटा दिया कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है. हमने उनको एडिक्शंस की तरफ लेकर गए कि जितनी ये चीजें आपके पास आती जाएंगी आपको खुशी मिलेगी. फिर कल हम बाद में मुड़कर कहते हैं इनकी तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती, ये रोज नई नई चीजें मांगते हैं. सिखाया हमने ही था कि ये कैसे लाना है. सो वन इज टू गिव हैप्पीनेस टू फैमिली. डिजायर बहुत प्योर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट वी आर बैड और व्हाटएवर, हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है, लेकिन तरीका समवेयर
0: हम क्या यूज कर रहे हैं. हमने खुद के लिए भी तो यही रखा ना. सी समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो एक्चुअली हम गलत नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यही समझा कि खुद को खुशी देने के लिए भी तो मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी, या मैं एक नई ड्रेस खरीद के, शॉपिंग में बहुत दुखी हूँ तो आई जस्ट गो एंड बाय समथिंग गुड, यू नो, लाइक एंड आई बॉट समथिंग गुड और आई गो आउट.
1: डेफिनेटली ये जो बाइंग समथिंग गुड की चीज है, ये हमें थोड़ी देर के लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है, लेकिन साड़ी नहीं क्रिएट करती है. मैं क्रिएट करता हूँ एट द थॉट ऑफ हैविंग बॉट दैट साड़ी. आपने अभी इतनी सुंदर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन वो साड़ी के पास फीलिंग्स थोड़ी है आपको देने के लिए. यू आर फीलिंग गुड
0: बिकॉज आई ओन दिस और व्हाट,
1: यू अचीव्ड इट. आपने कुछ खरीदा, आपको वो अच्छा लगा, यू वर एबल टू बाय इट, आपने लिया. ये एक पहले थॉट क्रिएट करती है. फिर आपको चार लोग जरूर मिलेंगे जो बोलेंगे न्यू साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको और वो खुशी मिलती है,
0: पूरी वैल्यू मिल गई, यू नो.
1: साड़ी इतनी देर में कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है. लेट्स बी वेरी क्लियर, जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है वो मुझे फीलिंग कैसे दे सकता है. अब चार लोगों के बाद एक पांचवें इंसान ने आकर अगर कह दिया कि अनुप्रिया दिस कलर आई डोंट नो वेदर इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू,
0: आई डोंट लाइक हिम,
1: यू डोंट लाइक हिम एंड यू डाउट द साड़ी आल्सो आफ्टर दैट,
0: ओह गॉड इज इट राइट और नॉट,
1: सी साड़ी वही की वही है लेकिन फीलिंग्स चेंज हो गई. तो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, फर्स्ट कि मैंने साड़ी खरीदी या गाड़ी खरीदी या नया मोबाइल जो लॉन्च हुआ है वो खरीदा, उसकी अचीवमेंट की थॉट जो मैं क्रिएट करती, एंड ऑपोजिट ऑफ दैट मैं नहीं खरीद पाती अगर,
0: तो वो भी मैं
1: तो उसकी फेलियर की थॉट जो मैं क्रिएट करती वो मुझे दुख देता है. मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे आसपास के सब लोग ये खरीद पा रहे हैं. सपोज एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ 20,000 का है, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो तो वही पुराना वाला है, उसमें वो गाने नहीं बजते या जो भी फीचर्स है नहीं है, सबके पास दूसरा वाला है. मोबाइल नहीं खुशी दे रहा, लेकिन ये फीलिंग सबके पास है मेरे पास नहीं है. फिर जिस दिन मैंने खरीद लिया जो सबके पास है वो मेरे
0: मेरे
1: पास,
0: पास भी
1: या
0: है
1: मेरे पास जो है
0: वो किसी
1: वो
0: के पास
1: औरों
0: नहीं
1: से
0: है,
1: भी ज्यादा अच्छा है. एंड देन शोइंग इट टू एवरीवन, नॉट मे बी टू एवरीवन बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ कि मेरे पास वो है, ये सब फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं. मोबाइल क्या कर रहा है, उसके पास पावर कहाँ है फीलिंग क्रिएट करने की, लेकिन मैं क्योंकि वो मोबाइल खरीदने के बाद वो फीलिंग क्रिएट कर पाती हूँ, तो आई थिंक कि मोबाइल मुझे खुशी दे रहा है. मोबाइल कैसे देगा, उसके
0: सो
1: पास तो
0: वॉट
1: है नहीं.
0: हाँ एक्चुअली वेयर यू रीच दिस कि मैंने ये समझा था कि गाड़ी के कारण मुझे खुशी मिल रही है, तो गाड़ी क्योंकि चैतन्य तो नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस बींग नहीं है, मटीरियल है, वो कुछ भी नहीं दे सकती मुझे.
1: फिजिकल कंफर्ट,
0: यस फिजिकल कंफर्ट दे सकती है जरूर, लेकिन खुशी जो है वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ. अनहैप्पीनेस है वो भी मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ.
1: एब्सोल्युटली. ना अभी सपोज आपके पास इतनी सुंदर ब्लू साड़ी है, मैं तो नहीं ले सकती. लेट्स से मैं व्हाइट साड़ी पहना है, मुझे तो अलाउड नहीं है ब्लू साड़ी पहनना. अब ये सोच सोच के मैं अंदर परेशान होती रहूँ. सो लकी कनुप्रिया तो ब्लू भी पहन सकते है, रेड भी पहन सकते है, आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट, तो ये व्हाइट साड़ी थोड़ी दुख दे रही है मेरे को बैठ कर. लेकिन मैं जो सोच रही हूँ उसको, आपको देख कर, अपने को देख कर, औरों को, मैं जो सोच रही हूँ आपको देख कर, आपने जो जो अचीव किया मैं नहीं अचीव कर पाई, तो दिस इज क्रिएटिंग माई दुख. देन आई गेट इन टू दिस कॉम्पिटिशन रेस कि इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी. नो वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा, मैं क्रिएट कर रही हूँ. हाँ ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं वो अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट
0: क्रिएट
1: करूंगी,
0: करोगे
1: लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा वो वाली थॉट्स,
0: तो मैं अभी भी क्रिएट कर सकती
1: अभी भी क्रिएट कर सकते हो. एग्जैक्टली
0: हूँ. ओके बट हाउ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू क्रिएट समथिंग, यू नो.
1: यू ऑब्जेक्ट डजंट क्रिएट द थॉट्स हियर, हियर
0: नो
1: इज
0: बट
1: द
0: ऑब्जेक्ट
1: मोबाइल.
0: हैज टू बी देयर ना, सी साड़ी हैज टू बी देयर
1: हाँ
0: सो दैट आई क्रिएट द थॉट.
1: लेकिन साड़ी पहनने के बाद वही हमने अभी देखा, चार लोगों ने बोला बहुत अच्छी, तो आपने वो थॉट क्रिएट की, एक ने कहा नॉट वेरी नाइस, आपकी थॉट चेंज हो गई, साड़ी तो वही है. यू आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट, आप क्रिएट कर रहे हो, आपके पास पावर है टू चूज कौन सी थॉट क्रिएट करनी है, साड़ी वही है.
0: नहीं तो साड़ी हो या ना हो, आई कैन क्रिएट अ थॉट कि आई एम हैप्पी, मतलब लाइक साड़ी इज देयर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना.
1: हाँ
0: सी ऑब्जेक्ट है, आपने कहा कि
1: साड़ी इज देयर, ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन
0: माय
1: हैविंग
0: गॉड
1: अचीव्ड बाइंग दैट ऑब्जेक्ट, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट ऑल आई हैव गैदर्ड, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट पीपल थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स विच आई हैव अचीव्ड.
0: बट यहाँ सिस्टर शिवानी, हैप्पीनेस इज नॉट अ थॉट, इट्स अ फीलिंग.
1: या सो जो थॉट क्रिएट होगी फिर ही तो फीलिंग जेनरेट होगी ना उसके
0: अगेन
1: बाद.
0: दिस इज वी नीड टू टॉक मोर
1: श्योर
0: अबाउट इट बिकॉज वट एवर वी हैव टॉक्ड टुडे इज एक्चुअली अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट नहीं करता है. वो कंफर्ट दे सकता है, वो मुझे यू नो लाइक जो जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है. हैप्पीनेस या कोई भी फीलिंग जो है वो खुद नहीं क्रिएट कर सकता.
1: उसके पास है नहीं.
0: हाँ ऑफ कोर्स दिस इज टू वी ऑल अंडरस्टैंड,
1: आई नो वी ऑल अंडरस्टैंड.
0: बट ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे, हमें फीलिंग है, लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं, इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच, आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जिन मटेरियलिस्टिक चीजों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था. यू नो समवेयर आई वॉज गिविंग इट टू माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. बहुत लिबरेटेड फील करते हैं. इनफैक्ट अभी तो मैं फील कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो ऑब्जेक्ट और ना ही कोई सिचुएशन भी. अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दी, दे नहीं सकता, दे वो कंफर्ट सकता है. मोबाइल बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मेरा कंफर्टेबल कर देता है बात करना, या कोई भी और मटेरियलिस्टिक चीज जो है मैंने क्रिएट किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई. अगर वो नहीं खरीद पाए तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूंगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ? अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ? और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बदल बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है. सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर हम बातचीत जरूर करेंगे. लेकिन अभी आज के इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है, प्लीज फील फ्री, आप हमें जरूर फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए उसे स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है ये प्रयास चलता रहेगा. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहाँ कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहाँ है और मैं आत्मा हूँ।
1: कैसे आत्मा हूँ?
0: मैं एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली
1: प्योर आत्मा हूँ,
0: एक वाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ
1: व्हाइल यू आर सेइंग इट, सी योर एक्सप्रेशन।
0: ओके,
1: अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड।
0: यस, एक्चुअली यू नो लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मोमेंट वी विल रियलाइज, आई थिंक आई हैड लेफ्ट इट एट दैट, कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो फिर दुनिया कैसी हो, क्या फर्क पड़ता है।
1: नहीं, बट लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये रियलाइज होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है।
0: बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर
1: है। द वे आई फील नाइस अबाउट माई सेल्फ, आई विल फील नाइस about the other people also.
0: Of course, yes. And then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन the moment I'll go out, it'll not be that easy. And again, we've talked about it कि meditation से possible हो पाएगा, पर meditation है क्या, ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या meditation आसानी से किया जा सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, या it's like you know I have to get into something else and then get into meditation.
1: Meditation ke bare mein bhi kuch galat beliefs again. Meditation is very difficult. Meditation is very complicated. Mere se nahi ho sakta hai.
0: See, this is what I, you know, everybody has been saying, right. Start meditating.
1: Bilkul.
0: And I say, okay, but how?
1: Right. But that wo isliye kyunki mujhe ye nahi pata what am I talking about. You know, agar koi kahe start exercising, but what exercise, which exercise, how to do it, ek bar wo pata chal gaya, then it will not be difficult. Lekin सिर्फ बोलते रहे कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिरी विच मीन्स टू हील।
0: ओके,
1: टू हील, एक वुंड है, एक चोट है, उसको हील करना है, या लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम टू क्लीन।
0: ओके, बिफोर यू गो इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड द रियल एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन, लेट्स स्टार्ट taking those aspects jise abhi tak hum meditation mante aa rahe, so that it becomes more clear to me also. You know, abhi tak mujhe ye tha ki aap jis bhi puja ki jagah pe aap jate hain, wahan baithiye।

0: ध्यान लगाइए, ध्यान
1: ध्यान
0: इज मेडिटेशन. लेकिन ध्यान मैं किसको लगाऊ, एक मूर्ति को, एक उस पावर को, एक एनर्जी को, और क्या करूँ, कैसे ध्यान लगाऊ, यू नो, आंख बंद करके क्या करूँ, यू नो, लाइक
1: मेडिटेशन को हम योगा भी कहते हैं. हम जैसे हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन. तो योगा कहते ही पहली चीज जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा, यू नो, जैसे हम प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है. यू कैन नॉट मिक्स दैट विद मेडिटेशन. मेडिटेशन इज इंटरनल, मेडिटेशन इज टू डू विद द माइंड, मेडिटेशन इज टू डू विद द सोल. मेडिटेशन आत्मा का कार्य है, प्राणायाम हठ योग ये शरीर का कार्य है. दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते, और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है आपको. मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए वी कैन डू मेडिटेशन.
0: मेडिटेशन हैज टू बी साइलेंट, लाइक साइलेंटली हमें कुछ करना है, और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है.
1: ये भी एक अलग अलग तरीके है. सी अगेन देयर इज नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग. आई विल हैव टू ट्राई इट आउट एंड सी कि मेरे लिए कौन सी विधि राइट होती है. जैसे हम मंत्र जाप करते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा. अगर मैं एक अब वो हो जाता है जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर एकाग्र होता है और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज, बेसिकली देयर इज नो लीकेज एट दैट टाइम. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया कि अगर रोज सेम खाना खाया, आप घर पहुंचे और रोज वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते. इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कॉन्सेंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं. इट इज लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता. कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए. वी वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग.
0: डेफिनेटली ये जो मंत्र उच्चारण की बात है, चैंटिंग
1: सिमिलरली, तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी, आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था, आज पता नहीं. तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं. तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है.
0: एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसेंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, तो इट्स लाइक आई ट्राइड बट इट वाज नॉट पॉसिबल.
1: क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना. आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है. एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे जबरदस्ती, वो दब तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा, इट विल जस्ट रीबाउंड. तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं. तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज नॉट स्टॉपिंग द माइंड. और वैसे भी स्टॉप करके फायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं. फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का. तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा,
0: वही अपने रॉन्ग बिलीफ्स का,
1: वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से. मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना,
0: क्योंकि जनरेट ही नहीं.
1: हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ. There are two different things. आपने डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन क्या आपने चार्ज किया. तो मेडिटेशन शुड बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, चार्जिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए। आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है। आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरली रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं। तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए। तो मेडिटेशन राजयोगा, मेडिटेशन राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें।
0: स्वयं मतलब अब कौन
1: सेल्फ
0: से बॉडी?
1: सेल्फ से पोत पोत द माइंड
0: ओके माइंड
1: इंटेलेक्ट संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स
0: ओके अनदर थिंग व्हिच इज देयर इज सोल बॉडी एंड माइंड दे शुड बी इन सिंक, ये हम सुनते आए हैं
1: राइट। लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि सोल एंड माइंड ये दो अलग चीजें नहीं है,
0: एक ही
1: दो
0: एस्पेक्ट है।
1: एनर्जीज नहीं है। सोल जब सोचने का काम करती है उसको माइंड कहते हैं। तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड राजयोग, स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, सेल्फ सॉवरेनिटी, सेल्फ रूल। तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा कभी चिड़चिड़ापन। अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है। एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ। ओके वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना। तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को?
0: चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के।
1: चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा?
0: जो मेन सॉकेट है,
1: पावर सप्लाई।
0: ओके
1: तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया, तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी, फिर डिस्चार्ज। जैसे ही ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स, तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज्ड। इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं, तो बैटरी टू बैटरी चार्जिंग, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज। तो अगर रियली चार्जिंग करनी है, द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति।
0: बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस, यू
1: कि
0: नो,
1: मैं आत्मा हूँ। इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग। लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है। मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ। हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खोसा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध, ये है योग।
0: एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस सॉकेट, पावर, फुल पावर की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है?
1: उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। प्रेयर इज लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन,
0: आस्किंग फॉर इट,
1: हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे। आप देखो, हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, you know,
0: can we hear him?
1: How will a relationship develop otherwise?
0: Can we have a conversation with Paramatma?
1: That's a relationship, na?
0: हाँ।
1: आप देखो, आप और मैं बैठे हैं, सिर्फ मैं ही बोलती जाऊं, आप बिल्कुल बोले ही ना, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, मैं कुछ पूछूं, आप कुछ उसका जवाब दे, तब तो एक रिश्ता बनता है। एक बोलता जाए, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है। और प्रेयर में और एक चीज जो थोड़ी सी हो जाती है, कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं, यू सी, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसने सोचा, मैं भी बोर हो रहा हूँ, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ। तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मैं ये हूँ, आप कैसे हो, वट एवर, अदर लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था। एक पंडित जी वहां से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो? जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती हैं। फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का
0: तरीका है,
1: तरीका
0: भाषा
1: होता
0: है।
1: है। तो वो वही बोलने लगा, वही बोलने लगा। रात को, कहानी है ओब्वियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुंचे और भगवान को याद करने बैठे, तो उन्होंने भगवान की आवाज सुनी, पंडित आज क्या किया सुबह? वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो तूने क्या करा दिया उसको? अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है, ना उसके पीछे उसका कोई भाव है। तो दैट कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप। यू सी, इफ आई पिक अप अ बुक एंड आई लर्न अप अ फ्यू वर्ड्स एंड मैं वही वर्ड्स आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराते रहूं, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होके प्रार्थना रोज करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है। हमने सिर्फ उन शब्दों को ही मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है, सबका वही बोल कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट सेइंग समथिंग विच आई हैव लर्न अप,
0: एंड
1: टॉकिंग टू गॉड,
0: कॉन्वर्सेशन टॉकिंग टू गॉड।
1: या इट्स इन कॉन्वर्सेशन विद गॉड, एब्सोल्युटली।
0: But then, will he talk back to us?
1: What do you think?
0: I don't know.
1: Is it possible?
0: I don't know. I'm like, if you are saying it, I'm but I don't think so because I don't know who God is.
1: आत्मा का परमात्मा से कॉन्वर्सेशन, राइट? आत्मा का आत्मा से कॉन्वर्सेशन कैसे होता है? इस मुख के द्वारा, राइट? लेकिन कभी कभी बिना मुख के द्वारा भी हमारा कॉन्वर्सेशन होता है। आप
0: जेस्चर्स
1: घर बैठे हैं, आपको मैंने फोन कर दिया, नहीं, जेस्चर्स की भी जरूरत नहीं है, आपको मैंने फोन किया, आपने कहा मैं आपको ही अभी याद कर रही थी, क्या कौन किसका कॉन्वर्सेशन चल रहा था? टेलीपैथी, एक संकल्प यहां से क्रिएट हुआ, वो आप तक पहुंचा, आपसे भी संकल्प आया। कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता है, आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं, व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन मुख से नहीं बोला जाता है, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ। और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज रीचिंग एंड यू विल गिव मी बैक, टेलीपैथी। अगर आत्मा आत्मा के बीच ये कम्युनिकेशन थॉट पावर पे हो सकता है, तो आत्मा और परमात्मा से नहीं हो सकता? फर्क क्या? इनफैक्ट इट्स इजियर, क्योंकि यहाँ तो हम सब थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और हमारे बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो वो रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा
0: मैच नहीं
1: मैच
0: कर रही
1: करना
0: है।
1: कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। बट ही इज क्लीन, ही इज ब्यूटिफुल, ही इज वेटिंग फॉर मी, ऑल दैट आई हैव टू डू इज ट्यून माई फ्रीक्वेंसी टू हिम।
0: लेकिन एट वन पॉइंट लॉट्स ऑफ पीपल मस्ट बी ट्यूनिंग देयर
1: But
0: फ्रीक्वेंसी
1: that he is the powerhouse.
0: तो ही
1: Lot of
0: इज
1: batteries can get connected at the same time. It's energy. It's not physical. देखो ये सब limitations of being with so many people at the same time तब आती है जब एक physical costume आप use कर रहे हैं। परमात्मा तो एक शक्ति है, वो निराकार है, वो power है, जैसे मैं एक power हूँ, वो भी एक power है, तो
0: लेकिन ये
1: उसको
0: एक
1: ये
0: इतना लाइक इट्स अमेजिंग बट इट लुक्स सो एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली यू नो।
1: It's not abstract, it's very simple. Once I get his introduction and I get to know him, without that it's abstract. Absolutely. अगर हम कहें कि हाँ भगवान कुछ है, अभी तक क्या था भगवान? क्या था मेरे लिए? कॉन्सेप्ट था। गॉड वॉज अ बिलीफ, इसीलिए अभी तक कहते हैं डू यू बिलीव इन गॉड? यू नो, आप कभी नहीं कहेंगे डू यू बिलीव इन योर पेरेंट्स? वट इज देयर टू बिलीव? दे आर माई पेरेंट्स, मतलब उसमें बिलीव क्या करना है? इट्स द ट्रूथ। सिमिलरली देर इज नो सच थिंग एज डू यू बिलीव इन गॉड? गॉड इज माई फादर, इट्स द ट्रूथ। बट अभी तक वो ट्रूथ को नहीं पहचाना, तो अभी तक वो बिलीफ में ही चल रहे हैं, डू आई बिलीव इन गॉड, विच फॉर्म ऑफ गॉड, गॉड क्या है? तो ये सब चीजों की थोड़ी सी पहचान
0: हाँ,
1: चाहिए,
0: लेकिन
1: इसका
0: शिवानी
1: परिचय
0: हमारे
1: चाहिए।
0: पास लाइक वक्त कम है, तो हम
1: हाँ
0: पहली चीज यहीं पे क्योंकि कहीं प्रोग्राम खत्म हो जाए और हम ये पहुंच ही ना पाए कि कैसे
1: करेक्ट,
0: परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा
1: इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैले हैं, विच इज क्वाइट बिग। एंड टुडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है, भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र हैं। तो जहां भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा। वहां बहने हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है, और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है। 7 days कोर्स है, 1 hour एवरी डे फॉर 7 days, जो समय हम चूज करते हैं, टाइम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस थोड़ा सा समय निकालना है, दिन समय सब कुछ हम चूज करें और ये विधि को सीखते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए, अपना परिचय चाहिए। ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है, और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम अपने आप कर सकते हैं।
0: यू सेड दिस 7 days में, 7 days जो 1 घंटा 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का
1: राइट, या
0: कि ये, और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं,
1: ट्रू,
0: ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे, तो ये
1: राइट,
0: 7 घंटे परिचय के लिए है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद हमें, हम अपने आप कभी भी
1: उसके
0: चाहें।
1: बाद इट्स सी इट्स अ रिलेशनशिप, सेंटर्स आर ऑलवेज देयर, वो सेंटर हैं क्योंकि वहां पर जाने से एक यू नो इजी हो जाता है, क्योंकि हम सारा
0: पूरा माहौल
1: दिन
0: वही है।
1: बहुत, हाँ, तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप हैज बिगन। उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं, अपना समय निकाल कर, और वो सारा दिन हो सकता है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है। इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड यू नो स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं
0: डेफिनेटली, और
1: होगा।
0: सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना
1: ये
0: चाहती
1: तो
0: हूँ,
1: मेरी चॉइस है,
0: मैं कितना कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूँ, यू नो लाइक
1: एब्सोल्युटली
0: हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी टू
1: राइट,
0: हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ
1: राइट,
0: स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप।
1: बिल्कुल
0: और मुझे नहीं लगता कि अगर वंस माई इंट्रोडक्शन हैपन्स
1: राइट,
0: आई वुड लाइक टू हैव एनी अदर रिलेशनशिप।
1: नहीं, दैट्स आल्सो यू नो, फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा, मतलब इस चीज में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया, तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए, दैट्स नॉट ट्रू। ये एक चार्जिंग प्रोसेस है, एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटिफुल हो जाते हैं, यू नो, जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे, यू नो इट्स लाइक दिस, मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो, वी गॉट कनेक्टेड टू द पावर हाउस, अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं
0: और हम
1: पड़ती।
0: कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू कर
1: एक्स्ट्रा नहीं,
0: देते।
1: हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है। जो चीज आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर, देन आप जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी, यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट। एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है, तो यू सी जिसके साथ आपका संबंध होगा आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं, एज द कंपनी नो सो विल बी द इफेक्ट। तो सत्संग जिसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, वो है उस सत्य का संग करना। सिर्फ हम जा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है, उस सत्य के संग में रहना, तो संग का रंग
0: अपने आप
1: ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरल है।
0: ओके, इट लुक्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल,
1: इट इज अ ब्यूटीफुल
0: बट इट इज
1: एक्सपीरियंस।
0: पॉसिबल लाइक यू नो सी वी लिविंग इन सच ब्लैक लाइफ।
1: सी आई टेल यू, ब्रह्मा कुमारीज में आज 9 लाख के करीब परिवार है, दे आर फैमिलीज, दे आर नॉट सरेंडर्ड, जो कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं, नहीं, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइव्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियां अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जहां हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते,
0: जो कि हमें बाकी सारे रिश्तों को ज्यादा बेटर कर देगा,
1: जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है, तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं? और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है. आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ. तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम? नहीं. तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है. अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्जाम्स दे दूं फिर उनकी तैयारी करूंगी.
0: बिल्कुल.
1: तब पढ़ेंगे बैठ के. नो, द एग्जाम इज नाउ, सो आई नीड द नॉलेज नाउ,
0: बिकॉज़ द जर्नी इज इंपॉर्टेंट, यू नो,
1: एंड देन आई एंजॉय द जर्नी. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
0: और
1: एक चार्ज्ड बैटरी, यू नो, यू आर सो फुल एवरी डे, यू आर सो फुल व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो फिर लोगों का जो इन्फ्लुएंस, जो हमने सारी बात की, एंगर, टेंशन, एंग्जाइटी, लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में आते जाते हैं. तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे? ऑल दैट इट रिक्वायर्स प्रोबेबली 10 मिनट्स एवरी डे टू बिगिन विद. 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन, काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, परमात्मा से बातें. बेस्ट काउंसलर जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता, साथ में पावर भी दे देता है उस काउंसलिंग को प्रैक्टिकल की लाइफ में इंप्लीमेंट करने के.
0: और आज के वक्त में, यू नो, लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल, आई थिंक जितने भी दर्शक भी देखे होंगे, इवन टू मी, यू नो, हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने लॉजिकल हो गए हैं, दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल.
1: इट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ. इट्स नॉट इमेजिनेशन, ये कल्पना नहीं है, लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा,
0: एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा. जो इंट्रोडक्शन की बात है, फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माई एंड.
1: एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट कीजिए, वर्क करता है, एक्सपीरियंस होता है, तो ये सत्य है.
0: वाओ, वंडरफुल. तो शिवानी, ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट, एक, यू नो, इतना हमने बात की, इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नजर आया जो कि पॉसिबल है, जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता. मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज नॉट डन, दिस कांट बी पॉसिबल, सो दिस इज इन फैक्ट सो ईजी. पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि आई द सोल हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए. इतनी सारी पहेलियों में हमने बात की, इतना सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. आंसर इतना सिंपल, इतना आसान था, पहला कदम हमें उठाना है. तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो भाई फोन कीजिए, ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए. आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी सवाल आपका है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत देने का, लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का, उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं, राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई जरूर करेंगे, पहला कदम जरूर उठाएंगे. आप दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कुड़ेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो,
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि हर मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें एक भी गुण ना हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम गुण देखते हैं या अवगुण। हर मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है। भगवान की संतान होने के नाते हर मनुष्य आत्मा में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता के संस्कार विद्यमान होते ही हैं। हर आत्मा में ये 7 गुण हैं। जो मनुष्य आत्मा जिस गुण को ज्यादा यूज करेगी, अपने कार्य में लाएगी, उस गुण का विकास होगा और वो मनुष्य आत्मा उसी गुण में मास्टर बनेगी। गुणों को बढ़ाने का सरल उपाय है उस गुण को अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करना। जब हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हैं, तब हम अपने अंदर के शांति को बढ़ाते हैं। हर परिस्थिति में कैसे रिएक्ट होना है, यह मेरी चॉइस है। अगर हम परिस्थिति में गुस्सा करेंगे तो गुस्से वाले बन जाएंगे। जब मनुष्य आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप के विपरीत अवगुणों को चुनती है, तब वह दुख महसूस करती है, क्योंकि उसने अपने ओरिजिनल स्वभाव के विरुद्ध जाकर अवगुणों को चुना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये अवगुण हैं। परमात्मा कहते हैं तुम्हें अवगुणों को छोड़कर अपने वास्तविक गुणों को चुनना है। जैसे राजहंस मोती चुगता है और बबूला कंकड़ चुगता है, उसी प्रकार हमें राजहंस बनकर गुणोरूपी मोती को चुगना है। हर मनुष्य आत्मा जब परम धाम से इस धरा पर आई, तब वह पवित्र थी, सातों गुणों से भरपूर सतोगुणी थी। आत्मिक शक्ति भरपूर होने के कारण उसकी बैटरी फुल चार्ज थी। जब हम मनुष्य आत्मा आत्मिक शक्ति से भरपूर होते हैं, तब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। अनेक जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, अर्थात हमारी आत्मिक शक्ति घटने लगती है। जब मनुष्य आत्मा की शक्ति घटती है, तब उसके कर्म विकर्म बन जाते हैं। आत्मिक स्मृति को छोड़ देहभान में आने के कारण मनुष्य आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रवेश करता है। कलयुग तक आते आते मनुष्य आत्मा के अंदर ये विकार बढ़ जाते हैं। आत्मिक शक्ति घटने के कारण मनुष्य आत्मा पर कलयुगी वायुमंडल का असर होने लगता है, इसीलिए उसके कर्म बिगड़ते हैं। जैसे ही कर्म बिगड़े, मनुष्य का भाग्य भी बिगड़ता है। मनुष्य आत्मा का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। देहभान, विकार, परचिंतन, परदर्शन, निंदा, ग्लानी से हमारी आत्मिक शक्ति घटती है। जिस शक्ति की हमें जरूरत होती है अच्छे कर्म कर अच्छा भाग्य बनाने के लिए, उसे हम दूसरों के अवगुण देखने में खर्च कर देते हैं। जितना दूसरों की निंदा ग्लानी करेंगे, अवगुणों का वर्णन करेंगे, अवगुण देखेंगे, उतनी हमारी आत्मिक शक्ति घटेगी, भाग्य बिगड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कमजोर मनुष्य आत्मा गलत कर्म करेगी ही, क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसे कमजोर मनुष्य आत्मा के कर्मों का चिंतन, वर्णन, निंदा, ग्लानी हमारी शक्ति भी घटाता है और हमसे भी कोई ना कोई गलत कर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के अवगुण देखने में गवा दी। हम भी कोई ना कोई गलत कर्म करने लग पड़ेंगे और हमारा भी भाग्य बिगड़ेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी के अवगुणों को ना देख, उसमें क्या गुण है उसे ढूंढने की कोशिश करो। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं हम जिस भी चीज पर ध्यान लगाएंगे वो चीज बढ़ेगी, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित किया है। अगर हम अवगुणों पर ध्यान लगाएंगे तो अवगुण समाज में बढ़ेंगे, सामने वाली मनुष्य आत्मा और कमजोर बनेगी और उसके साथ साथ हम भी कमजोर बनेंगे, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा निगेटिविटी की ओर लगाई। इसके विपरीत जब हम प्रयत्न पूर्वक किसी में गुण खोजने की कोशिश करते हैं तब हम अपनी ऊर्जा सकारात्मक बातों की ओर लगाते हैं और इसी कारण समाज में ये गुण बढ़ेंगे। सामने वाली मनुष्य आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी और हमारी भी शक्ति बढ़ेगी। कलयुग में ज्यादा अवगुण नजर आते हैं क्योंकि हर कोई शक्तिहीन हो गया है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भले सामने वाले मनुष्य आत्मा में कई अवगुण है लेकिन एक ना एक गुण तो होगा ही। आप अपनी ऊर्जा उस एक गुण पर लगाओ। जैसे ही हम अपना फोकस अवगुणों को देखने से हटाकर गुण खोजने में लगाते हैं तब हम गुणग्राही बन जाते हैं। गुणग्राही अर्थात दूसरों के गुणों को परखना और उन्हें अपने जीवन में धारण करना। गुणग्राही बनने से व्यक्ति की कल्याणकारी भावना जागृत होती है और मन में कभी भी हलचल नहीं होती। हर व्यक्ति में कमियां देखने के बजाय उनकी खूबियों को देखना और उसका सम्मान करना। परमात्मा कहते हैं जब आप गुणों को ग्रहण करने की आदत बना लेते हैं तो दूसरों की नकारात्मक बातें आपका मन अशांत नहीं कर पाती। परमात्मा कहते हैं हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। आज तक कलयुग में हमें दूसरों के अंदर की बुराई देखने की ही आदत पड़ी थी। परचिंतन, परदर्शन पतन की जड़ है। जितना हम बाह्यमुखी होंगे उतना हम दुखी होंगे। जितना हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते रहेंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे। दूसरे हमारे अनुसार नहीं चल सकते। हर मनुष्य आत्मा स्वतंत्र है। हर मनुष्य आत्मा के अपने संस्कार, स्वभाव, विचार है। हर मनुष्य आत्मा अपने अपने शक्ति अनुसार कर्म करती और भाग्य बनाती है। आज तक हमने दूसरों के अवगुणों को देखने में बहुत शक्ति गवाई, लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अब गुण को खोजो। गुणग्राही बनेंगे तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी, हम भी गुणवान बनते जाएंगे। हमें केवल अपनी आदतें ही तो बदलनी है। दूसरों के स्वभाव संस्कार देखने की आदत तो हमें है ही, तो क्यों ना परमात्मा के श्रीमत अनुसार बुराई देखने के बजाय अच्छाई देखने में अपनी ऊर्जा को लगाएं। अच्छाई देखते देखते एक दिन हम भी अच्छे बन ही जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि गुणों को देखोगे तो तुम भी गुणवान बन जाएंगे, अवगुणों को देखोगे तो तुम भी अवगुणी बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं कलयुग में बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन तुम्हें देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। स्वयं की रक्षा करनी है कलयुगी वायुमंडल से। परमात्मा ने सभी मनुष्य आत्मा को ज्ञान, शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, पवित्रता, आनंद, ये सातों गुण दिए हैं। इसीलिए हर मनुष्य आत्मा इन सातों गुणों को अनुभव करना चाहती है। शक्ति घटने से हर मनुष्य आत्मा ये गुण स्वयं में अनुभव करने के बजाय बाहर तलाशती है। जब बाहर भी नहीं मिलता तो दुखी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं तुम्हें ये गुण बाहर नहीं तलाशना है, बल्कि इन गुणों का चिंतन करो तो तुम्हें इन गुणों का अनुभव होने लगेगा। तुम हो ही शांत स्वरूप आत्मा। हमें इन सातों गुणों का चिंतन करके इन्हें अनुभव करना है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं हर व्यक्ति से, प्रकृति से, प्रकृति के पांचों तत्वों से, फूल पौधों से, नदियों से गुण धारण करो। परमात्मा कहते हैं सागर से गंभीरता का गुण धारण करो। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो सागर अपने लहरों के द्वारा उसे किनारा कर देता है, अपने अंदर नहीं समाता। उसी प्रकार हमें कलयुगी अवगुणों का कीचड़ा किनारे कर देना है, अपने अंदर नहीं समाना। जैसे गोताखोर सागर के तले में जाता है तब उसे मोती रत्न मिलते हैं, वैसे ही हम बच्चों को परमात्मा के ज्ञान सागर के तले में पहुंचना है ताकि हमें भी ज्ञान रत्नों की प्राप्ति हो। हवा के कारण सागर के ऊपर कितनी भी लहरें क्यों न हो, लेकिन सागर अंदर से शांत धैर्यव्रत होता है। परमात्मा कहते हैं बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें सागर के अंतरंग के समान शांत धैर्यव्रत होना चाहिए। सागर के किनारे पानी के वजह से घिस घिस कर पत्थर भी शालिग्राम बन जाते हैं, इसी प्रकार परिस्थिति के अनुभवों से तुम भी गुणवान बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जैसे अग्नि में कुछ भी डालने से वो उसे जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार जब हम परमात्मा याद की अग्नि को जलाते हैं तब हमारे जन्म जन्म के विकारों का कीचड़ा जलकर भस्म हो जाता है। परमात्मा कहते हैं वायु समान मन को हल्का रखो। मन से भूतकाल की घटनाओं का, दूसरों के अवगुणों का बोझ उतार दो। परमात्मा कहते हैं आकाश की तरह विशाल बुद्धि रखो, विशाल हृदय रखो। हद इंसान को बांधता है। आसमान की तरह अपनी बुद्धि को बेहद में रखो, अर्थात उच्च विचार करो। परमात्मा कहते हैं जल में वस्तुओं को धोने, शुद्ध करने का गुण है। जिस प्रकार जल शरीर को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार ज्ञान का जल मन बुद्धि को स्वच्छ करता है। जल में कोई पत्थर मारता है तो बहता हुआ पानी उस पत्थर के नामो निशान को मिटाकर आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब परिस्थितियां, लोग हमारे ऊपर वार करें तो उसके बाद

के नामों निशान को मिटाकर हमें भी आगे बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं, जैसे चंद्रमा शीतल है, उसी प्रकार आप भी शीतल बन जाओ। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी में संपूर्ण रूप में सुहावना लगता है, उसी प्रकार आपका संपूर्ण पवित्रता का रूप 16 कला संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न सुहावना रूप लगता है। परमात्मा कहते हैं, तुम्हें पूर्णमासी चंद्रमा के तरह संपन्न और संपूर्ण पवित्र बनना है। परमात्मा कहते हैं, जैसे गुलाब सुगंधित मनमोहक लगता है, उसी प्रकार परमात्मा के बच्चे भी खिले हुए गुलाब की तरह हर्षित मुख रहे। जैसे कमल फूल दलदल में रहते हुए भी उस दलदल के कीचड़ कमल फूल को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस कलयुगी वायुमंडल का कीचड़ा भी आपको स्पर्श ना करे। कमल फूल समान आप भी न्यारे प्यारे रहो। जैसे सूर्यमुखी फूल सदा सूरज को ही देखता है, उसी प्रकार आप भी सदा परमात्मा को अपने मन बुद्धि के नेत्र से निहारते रहो तो शक्तिशाली बन जाओगे। जैसे रात रानी का फूल रात्रि में सुगंध देता है, उसी प्रकार आप भी इस कलयुगी रात्रि में अपने गुणों की सुगंध फैलाओ। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा गुणों का सागर है। अगर हमें गुणमूर्त गुणग्राही बनना है तो हमें परमात्मा के गुणों का चिंतन करना होगा। परमात्मा क्षमा का सागर है, हमें भी मास्टर क्षमा का सागर बन सबको माफ करना होगा, क्योंकि हम भी तो परमात्मा की संतान हैं। जैसे हमारा परमपिता होगा वैसे ही तो हमें बनना होगा। हमारा परमपिता रहम का सागर है, वो ये नहीं देखता कि उसका बच्चा कैसा है, कितने अवगुण है, वो तो सब पर रहम करता है। हमें भी अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करनी होगी। परमात्मा अपकारी पर उपकार करने वाला है। भक्ति में अज्ञानता के कारण हमने परमात्मा की बहुत ग्लानी की, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा। कण कण में तो धूल मिट्टी पत्थर किचड़ा गंदगी सब आ गया। क्या पवित्रता का सागर, पतित पावन जो हमेशा पवित्र है, परम है, वो धूल मिट्टी पत्थर किचड़े में होगा? नहीं ना, परमात्मा तो सबसे पवित्र स्थान परम धाम में रहने वाला है। अज्ञानता के कारण हमने उसे सर्वव्यापी कण कण में कहकर उसकी ग्लानि कर दी। ऐसा अपकार करने वाले हम बच्चों पर भी परमात्मा ने उपकार किया। ग्लानि करने वाले को भी गले लगाया। इतना विशाल हृदय वाला है मेरा परमात्मा। हमें भी ऐसा बनना है। परमात्मा ज्ञान शांति शक्ति प्रेम सुख पवित्रता आनंद का सागर है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, सभी को सुख देता है। परमात्मा के सामने कोई भी आए वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, सभी को उनके कमी कमजोरियों के साथ अवगुणों के साथ स्वीकार करता है। परमात्मा पतित पावन है, पतित विकारों से भरे हुए मनुष्य आत्मा को पावन पवित्र बनाने वाला है। परमात्मा पत्थर बुद्धि वाले मनुष्य को भी पारस बुद्धि वाला बनाता है। परमात्मा नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने वाला है। परमात्मा मनुष्य आत्माओं में दैवी गुण भरकर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। परमात्मा कल्याणकारी है। परमात्मा किसी का अकल्याण नहीं करता। परमात्मा सभी को सुखों का रास्ता बताता है, सद्गति देता है। परमात्मा सभी को श्रेष्ठ कर्म करना सिखाकर सभी का श्रेष्ठ भाग्य जगाता है। परमात्मा सतचित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा सुख दुखों से न्यारा है। परमात्मा गुणों के भंडार है। अगर हम अपना ध्यान मनुष्यों के अवगुणों से हटाकर परमात्मा के गुणों पर लगाए तो हम कितने गुणवान बन जाएंगे। क्या रखा है मनुष्यों के अवगुणों का चिंतन करने में, हमारी ही शक्ति घटेगी। इससे तो अच्छा है कि अपना ध्यान गुण खोजने में लगाना, उन गुणों को धारण करने में लगाना, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना। जितना हम गुणों का चिंतन करेंगे उतना हम गुणवान बनेंगे। अब स्वयं को बदलना है, उस परमात्मा के गुणों को अपनाना है, क्योंकि हम भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चा बाप समान ही तो होगा। हमारा परमपिता इतना पवित्र, इतना अच्छा, और कलयुग तक आते आते हम क्या से क्या बन गए। अब वापस ऊपर चढ़ना है, व्यक्तियों से, प्रकृति से, परमात्मा से गुण उठाने हैं, गुणों को ग्रहण करना है, गुणों को धारण कर गुणग्राही बनना है। गुण धारण भी तभी होंगे जब हमारे अंदर शक्ति होगी, और शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना है। तभी हम गुणग्राही गुणमूरत बन पड़ सकेंगे।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रों नमस्कार, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग।
0: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जहां अपने प्रेरणादायी गीतों और व्यवहारिक संदेशों के लिए विख्यात हैं, वहीं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाओं में भी उनका कोई सानी नहीं। उन्होंने धर्म, इतिहास और प्रकृति के माध्यम से मातृभूमि के सौंदर्य सौष्ठव का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। इस गीत में कवि ने भारत की संस्कृति के विराट रूप को परिभाषित किया है। जहां वीणा की तान और मधुर सुरगान का आह्लाद है, वहीं प्रकृति की शांति से उपजा संतोष और आत्मविश्वास भी है।

0: अभी आपने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना सुनी।
1: ये वतन का
0: आजादी की लड़ाई में अनगिनत देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे जाबाजों ने जोश का जज्बा जगाया, वहीं दूसरी तरफ कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशवासियों में जागृति पैदा की। ऐसे कवियों में काजी नजरुल इस्लाम का नाम अमर है। काजी नजरुल इस्लाम अपने समय के प्रभावी और निराले बांग्ला कवियों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाओं ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर नई प्रेरणा प्रदान की। इस गीत में नजरुल ने आजादी की लड़ाई की तुलना एक अंधेरी रात की दुर्गम यात्रा से की है। यह गीत स्वराज के डूबे हुए सूरज को अपने खून में रंगकर फिर से उदित करने की प्रेरणा देता है। सारे जनमानस को आजादी की समर यात्रा के खतरों से आगाह करता यह गीत नए जोश नई चेतना का संचार करता है।
2: दूर गोमोगिरी कांतार मोरु दुस्तर पारावा लुंघिते हवे रात्रि निशिते

0: इस बांग्ला गीत के रचयिता थे काजी नजरुल इस्लाम।
1: ये वतन का
0: आजादी की लड़ाई में भारत का समग्र समाज कूद पड़ा था। शहर से लेकर गांव देहात तक आजादी की आग फैल चुकी थी। लोक कंठों से भी आजादी की तराने खेत खलिहानों में गूंजने लगे थे। धर्म, जाति, भाषा, शहर गांवों की हदों को तोड़कर जन जन तक संघर्ष की लहर पहुंच चुकी थी। ऐसी ही सामाजिक स्थिति को बयान करता ये भोजपुरी ग्राम गीत है। इस गीत में आजादी के दीवानों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया गया है। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित का जिक्र इस बात का प्रतीक है कि आजादी की लहर गांव गांव तक पहुंच गई थी।

0: इस भोजपुरी गीत के रचयिता थे वंशीधर शुक्ल। मित्रों, ये था कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे दिलीप कोरी, श्रीधर नागराज, मयूख सरकार, मृदुल घोष और अजीत तिवारी। संगीत निर्देशन तापसी और श्रीधर नागराज का, आलेख डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव का और वाचक स्वर मुरलीधर नागराज। कार्यक्रम परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
1: आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, खतों से हमें जरूर सूचित करें।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा
2: विथ ब्रह्मकुमारीज।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
4: थैंक यू सो मच।
3: ये आपके लास्ट एपिसोड के बाद मुझे एक बहुत अच्छी लाइन मिली। मैं शेयर करना चाहूंगा एज यूजुअल। इट सेज यू कांट चेंज पीपल, वो तो आपने और कहा है कई बार। आइदर यू एक्सेप्ट हु दे आर और स्टार्ट लिविंग लाइफ विदाउट देम।
4: सी, इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट।
3: हाँ हाँ, तो भी एक्सेप्ट हो दे यार तो हम नहीं कर पा रहे हैं।
4: ये कोटेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है।
3: ओ
4: है ना, दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एक्सेप्ट देम एज दे आर, मतलब वो जैसे हैं उनको स्वीकार करें, और स्वीकार करें मतलब सारा दिन उनको देखते हुए उनके व्यवहार, उनके कर्म, उनके शब्द को, यहाँ एक इनर कॉमेंट्री नहीं चलनी चाहिए। स्वीकार, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, स्वीकार।
3: मजबूरन आपके साथ रहना ही है तो एक्सेप्ट करके चलना ही है, ऐसा नहीं है।
4: वो करने से मजबूरी और एक्सेप्टेंस सेम नहीं है। मजबूरी इज अ विक्टिम, एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर।
3: एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर।
4: एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर ऑफ द सेल्फ।
3: Acceptance is the master of my own self.
4: Yes, no, I accept you as you are. मतलब अब आपका कोई भी कर्म मुझे नहीं हिला सकता, master
3: of the self. And I do not allow any of my thoughts or my mind or my indriyas to control me anymore.
4: So I become a master, na?
3: Master, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक।
4: हाँ, इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जो हम मेडिटेशन सीखते हैं उसका नाम ही राजयोग है।
3: Okay.
4: स्वयं पर राज्य करना, स्व राज्य, मास्टर ऑफ द सेल्फ। आज हम औरों पर राज्य करना चाहते हैं, और जीवन का लक्ष्य है स्व पर राज्य करना, स्व राज्य। सच अ कॉमन वर्ड, वी से स्व राज्य, लेकिन कौन स्व और कौन सा राज्य? स्व पर राज्य। तो अगर हम औरों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कोई भी बात, एंड विच मीन्स कोई भी, एंड इट विल रीच टू दैट लेवल, हम पहुंचेंगे उस लेवल तक। शुरू होगा छोटी छोटी चीजों से, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि कोई भी बात हमें हिलाएगी नहीं उसके बाद। सिर्फ इट्स लाइक या तो ये रास्ते जा सकते हैं या तो ये रास्ते जा सकते हैं। किसी भी रास्ते चलना शुरू कर दो तो आगे तो बढ़ते ही जाएंगे। आज हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, विच मीन्स देखी उनकी बात इरिटेट हुए, सुनी उनकी बात परेशान हुए।
3: बात क्या, उनकी शक्ल देखते ही पता चला उनकी गाड़ी का दरवाजा ठक किया, दरवाजा खोला तो दिमाग में शुरू, अब ये आने वाले हैं।
4: ये एक जीवन जीने का तरीका है, और इस पर चलेंगे तो जीवन हमेशा ऐसी ही होगी। एंड फिर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो एक आत्मा के प्रति नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा ग्रूव वो वाला बन जाएगा, मेरा रास्ता वो वाला बन जाएगा कि हरेक के अंदर छोटी बड़ी जो बात नहीं पसंद आई
3: आदत बन जाएगी,
4: आदत बनेगी ना, आई एम ऑन दिस पाथ।
3: ये पॉइंट्स ढूंढने की, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने की,
4: नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं ढूंढ रहे। जब तक वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं कि सही है, तब तक मुझे डिस्टर्ब होना अलाउड है।
3: नेचुरली उनकी दूसरी बातें नेगेटिव ही लगेंगी ना, मुझे ये कितना गलत कर रहा है, देखो ये कप सीधा नहीं रखता है, ये राइट हैंड से खाना, झूठे हाथ से खाना खा लेता है। तो नेगेटिव मतलब मेरे अनुसार नहीं चलने में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का भी हो लेकिन नेगेटिव तो लगता ही उनका।
4: हाँ, और विच मीन्स मैं गुलाम।
3: किसका?
4: मैं गुलाम अपने मन का, मैं गुलाम उनके संस्कारों का।
3: ये पॉइंट नहीं सोचा था मैं।
4: अभी सपोज आपने कहा कि क्या कहा अभी?
3: मैंने कहा कि खाते खाते वही हाथ से वो बीच में से
4: चल खाना। इतनी वाली बात भी कि खाते खाते वो वही हाथ से बीच में खाना उठाएंगे, ठीक है। अब मैं गुलाम इस संस्कार का, क्योंकि जितनी बार जितने लोग ये कर्म करेंगे मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो मैं गुलाम इस संस्कार का। मतलब उस संस्कार के सामने मैं अपना राज्य खो देता हूँ तो मैं गुलाम। आई लूज माई
3: कंट्रोल
4: एंड माई पावर ऑन
3: माइसेल्फ.
4: तो जब एक के सामने दूसरा कमजोर पड़ जाता है तो वो उसका गुलाम बनेगा ना फिर. तो मैं गुलाम उस संस्कार का. अब मुझे सिर्फ एक संस्कार आज चूज कर लेते हैं, भाई यही वाला चूज कर लेते हैं. कोई भी अभी हम बड़े पे भी नहीं जाए. देखो बड़ी बड़ी बातें किसी की, ये छोटी छोटी बातें. कोई पेन टिक टिक कर रहा है, कई लोग ऐसे ऐसे ऐसे हाथ के साथ नकल्स कर रहे हैं. छोटी छोटी बातें जो सारा दिन दिखने वाली है, जिसको हम कहते हैं आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस. हम बहुत इजीली कहते हैं आई कांट टॉलरेट दिस, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बिल्कुल भी. मेरे नहीं अच्छा लगने से वो नहीं बदलेगा, लेकिन मैं बदल जाऊंगा.
3: छोटी छोटी बातें. मुझे सिस्टर अपने स्टाफ से भी ऐसा होता था पहले कि वहाँ रेड लाइट दिखी है ना, तो आप अभी से स्पीड स्लो कर लो ना, दिख रहा है सामने रेड है, आगे जाके तो रोक नहीं है. नहीं, वहां तक सेम फुल स्पीड में जाएंगे, नजदीक जाके वहां ब्रेक मारेंगे टाक.
4: राइट.
3: तो इवन दैट इज क्या तुमको दिखता नहीं है. तो एक ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर, तीसरा ड्राइवर. अब यहाँ देखा कि आइदर यू स्टे विद देम और रन अवे. लेकिन फिर मेरा सवाल से बात करते करते थॉट आया, किस किस से रन करेंगे, कितने स्टाफ बदलेंगे, कितने ड्राइवर बदलेंगे जो हमारी थॉट के हिसाब से चले.
4: मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे आपने ये कहा कि वो रेड सिग्नल तक फास्ट जाते हैं. राइट. एज अ पर्सन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है. आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. इंस्ट्रक्शन देना है.
3: हाउ मेनी टाइम्स?
4: इट डजंट मैटर इवन इंस्ट्रक्शन 100 times, 1000 times. एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि कोई कुछ भी करेगा. डिपेंडिंग ऑन माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं किसको कह सकता हूँ किसको नहीं कह सकता. लेकिन इंस्ट्रक्शन देना और डिस्टर्ब होके इंस्ट्रक्शन देने में फर्क है. इसमें फर्क है. वी कैन फील दैट कि डिड आई गेट डिस्टर्ब्ड और डिड आई ओनली गिव एन इंस्ट्रक्शन.
3: उसकी आदत एक बार पड़ जाती है ना, तो आपके नेचुरली जब भी आप इंस्ट्रक्शन देने लगते हो, अरे यार क्या कर रहा है, इतना भी नहीं आता तुमको, सोचो तुझसे, यूज योर ब्रेन, यू नो. इतनी बड़ी बड़ी बात यूज करके फिर इंस्ट्रक्शन देता है बंदा.
4: तो वो नेचुरली इसलिए हो गया है क्योंकि करते करते करते वो मेरा नेचुरल स्वरूप हो गया है. सी, आत्मा का जो नेचुरल स्वरूप होगा ना, वो एफर्टलेसली निकल के आता है. तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप से जो नेचुरल स्वरूप होना चाहिए था, ये कुछ ऐसे संस्कार हमारे आज नेचुरल स्वरूप हो गए हैं. जो चीज एक नेचुरल स्वरूप बन गई, उसके बाद उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है. वो नेचुरली, जैसे हम कहेंगे एफर्टलेसली, हाँ, वो एकदम स्पोर्ट्स
3: रोल में जब करता हूँ, उस टाइम पे जब कैमरा ऑन होता है, तो मेरा नेचुरल स्वरूप है कि मैं वही हूँ. मैं अगर गुलाम का रोल कर रहा हूँ तो राजा का तो पॉइंट सोचता
4: आता ही नहीं है ना. तो नेचुरल स्वरूप. लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये नेचुरल आदतें जो मैंने बना ली, इससे मेरा नुकसान हुआ. एंड नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ चेंज, विच मीन्स हम इस सड़क पे जा रहे थे, अब हमने इस सड़क पे जाना है. ये दोनों सड़क बिल्कुल डिफरेंट है. दे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेंज आने वाला
3: है.
4: हाँ, ये थोड़ा चेंज नहीं आएगा. ये जो चेंज आएगा, इट विल बी अ बिग पैराडाइम शिफ्ट. जैसे दिन और रात जितना अंतर होगा इस चेंज के अंदर. लेकिन मुझे सिर्फ ये सारा दिन ध्यान रखना है, मैं इस सड़क पे चल रहा हूँ. ये नहीं सोचे कितना फास्ट चल रहा हूँ, चेंज आया कि नहीं, मैं कहाँ तक पहुंचा. डजंट मैटर. एज लॉन्ग एज आई एम वॉकिंग ऑन दिस रोड, आई एम वॉकिंग ऑन द राइट रोड. इट डजंट मैटर वेयर आई हैव रीच्ड. It doesn't matter whether I've reached where I still wanted to. As long as I'm walking on the right road, that's very important.
3: सही बात है. जब मैं इंडिया में गाड़ी चलाता था लेफ्ट हैंड ड्राइव, और अमेरिका जाके राइट हैंड, दो दिन में तीन दिन में आदत हो जाती थी. यहाँ राइट चलाना है,
4: बस दैट्स इट.
3: राइट हैंड पे ही रहना है मुझे.
4: तो मुश्किल थोड़ी आदत को चेंज कर.
3: टर्निंग में, स्पेस में थोड़ी, ओवरटेकिंग में थोड़ा, बिगिनिंग में.
4: लेकिन कितने दिन उसमें भी?
3: एक फ्यू आवर्स और डे
4: आवर्स. तो आदत बदलना मुश्किल नहीं है ना?
3: नहीं.
4: तो आज हम कुछ छोटी छोटी आदतें लेते हैं सिर्फ. लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टेंस विद स्मॉल हैबिट्स. छोटी छोटी आदतें दूसरों की, और अपने आप को तैयार करें. मैं किसी की आदत का गुलाम नहीं बन सकता. आई एम अ पावरफुल सोल.
3: ब्यूटिफुल.
4: मैं किसी और की कमजोरियों का मैं गुलाम, ये मैं नहीं बन सकता. आई एम अ पावरफुल सोल, मैं जो चूज करूं उस बात को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, ये हर आत्मा के पास वो पावर है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्मॉल थिंग्स, एक दिन में छूटेगी छोटी बातें, एक दिन में। सिर्फ यहां एक स्विच होता है कि इसके लिए मैं आज तक सालों से इरिटेट हो रहा था और इसके लिए आज मैं बोलूंगा, अगर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता तो वो भी नहीं। कई लोगों को हम नहीं बोल सकते, कई लोगों को हम बोल सकते, नहीं बोल सकते तो वो भी नहीं, बट इट्स फाइन, दे आर गोइंग टू डू इट दिस वे,
3: स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ।
4: इट्स एज सिंपल एज दैट, छोटी चीजों में, क्योंकि छोटी चीजों में, सी छोटी चीजों में इरिटेशन होती है, हर्ट नहीं होती, तो दोनों में फर्क है। इरिटेशन को फिनिश करना इजियर है। सपोज मैं कहूं, आपने जैसे कहा राइट हैंड से ये कर दिया खाना खाते, ये छोटी चीज है, ये मुझे हर्ट नहीं करती, तो वूंड नहीं बना, कोई घाव नहीं है। सपोज आपने मुझे चीट किया, वो मुझे हर्ट करता है, तो वो हर्ट के संस्कार के ऊपर वर्क करना और उस चीटिंग को एक्सेप्ट करना मुझे थोड़ी मेहनत लगती है, दैट विल सी लेटर। लेकिन ये छोटी चीज,
3: मैं भी सोच रहा था छोटी कौन सी चीज मुझे इरिटेट करती है, जैसे मेरे ग्रैंड चाइल्ड की मेड है, उसको एक होम्योपैथी टाइप की कुछ गोलियां बच्चे को खिलाते हैं, तो वो बॉटल से हाथ में लेती है, उसके मुंह में डालती है, तो मैं उसे ढक्कन में डाल के, ढक्कन से क्यों नहीं करती है, एक बार इवन दीज थिंग्स डिस्टर्ब मी एंड इरिटेट मी, कि तुम्हारे हाथ में कितना बैक्टीरिया है एंड ऑल दैट। तो फिर ये
4: दिस इज व्हाई इफ वी मेक अ लिस्ट ऑफ इट, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट।
3: तो कितना मतलब है, ब्रेन थक जाता है शाम को,
4: मन थक जाता है, आत्मा थक नहीं जाती, सिर्फ डिस्चार्ज हो रही है पावर, संयम खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं,
3: थॉट भी चलता है। देन मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, देखो इन लोग को कैसा है, बच्चे के हाथ से दवा तो हमको ही देनी चाहिए कल से, वो ऐसा करते हैं, फिर एक चीज रोकने तक
4: दो शिक्षित हो जाती,
3: वो फिर दूसरा कुछ कर देते।
4: दिस इज वॉट एंड विच मीन,
3: कब तक, कितनों के साथ और कितनी बार,
4: मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं, अगर वो आपका स्टाफ है, बच्चे हैं, ऑफिस में कोई है, हमें इंस्ट्रक्शन देनी है।
3: हाँ, आपने जो पहले बोला बहुत अच्छा बोला, ड्राइवर के लिए इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई देखो हमको डिस्टर्ब होता है, आप रेड लाइट देखो तो आप पहले से स्लो कर लो, आई डू नॉट लाइक यू,
4: दिस इज द स्टाइल, ये इस तरह से होना है।
3: और एक्चुअली मैं एक बात अभी थॉट चलते चलते आया कि इरिटेट होना, ये क्या कर रहे हो, ये हाथ से क्यों दे रहे हो, उसे बेटा देखो अपने हाथ गंदे होते हैं, बैक्टीरिया होता है, हम लोग कहीं भी हाथ लगाते हैं सब गंदा, इसको बच्चों को ढक्कन से दिया करो, एंड दे ऑल्सो लाइक इट, फिर सुनता है बंदा,
4: राइट वो
3: इरिटेट होके बोलो तो उसको रजिस्टर नहीं होता है, उसको सिर्फ गुस्सा रजिस्टर होता है।
4: रजिस्टर क्यों नहीं होता,
3: पॉइंट रजिस्टर नहीं होता, एंगर रजिस्टर होता,
4: क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन तो पहले पहुंच गई ना, नेगेटिव, आपने मुझे अटैक किया पहले,
3: ओके,
4: यू हिट मी विद अ नेगेटिव एनर्जी, आपने मुझे, सपोज मैं कर रही हूँ वो काम जो ठीक नहीं है, तो आपने बोल, सी थॉट्स
3: पहले शुरू हिला दिया, डिस्टर्ब हो,
4: हाँ थॉट्स तो पहले शुरू होते हैं ना, फिर वर्ड्स में आता है। जितनी एनर्जी टर्बुलेंट होगी, शब्दों की पावर घट जाएगी,
3: जितनी
4: हमारी एनर्जी टर्बुलेंट होगी, हमारे शब्दों की शक्ति कम हो जाएगी।
3: वाह,
4: आप देखो जो महात्मा है वो एक शब्द बोलते हैं, और उनका एक शब्द भी जाके हिट करता है, कि दूसरा कहता है दिल को बस छू ही गया, एक लाइन बोली मेरा तो जीवन परिवर्तन हो गया,
3: और मैं सुन भी लिया उनकी बात, मान भी लिया,
4: मेरा जीवन ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि उनके संकल्पों में इतनी प्योरिटी और पावर है कि फिर उनका एक शब्द भी, उसको फिर वाक्य नहीं महावाक्य कहा जाता है, कि शब्द पावरफुल हो जाता है। लेकिन हमारी एनर्जी क्योंकि टर्बुलेंट है बहुत टाइम, तो हमारे शब्दों में कोई शक्ति नहीं रहती, हमारे शब्द ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं, आवाज दूसरों के ऊपर जैसे कोई उसका असर ही नहीं होता, जैसे बीज है ना, अंदर नहीं जाएगा बीज, यहीं गिर के खत्म। हम बीज डाल रहे हैं दूसरे के अंदर, उसके फायदे के लिए है, अच्छा है, लेकिन बीज जाना चाहिए ना अंदर, बीज सिर्फ ऊपर ही गया, उड़ गया उधर से, और फिर चार दिन बाद हम क्या बोलेंगे, रोज इनको समझाओ तो भी समझ में नहीं आता, रोज बात बोलो तो भी समझ में नहीं।
3: प्यार से हम बीज लगाते, जब कुछ उगाना हो तो पहले वीड्स हटाते हैं, खड्डा अच्छा खोदते हैं, वो उधर की मिट्टी
4: को फर्टाइल भी करते
3: हैं, उसको नरम करते हैं ताकि वो कड़क मिट्टी में बाहर नहीं आता बीज, सॉफ्ट करते हैं, फिर हल्का पानी का छींटा देते हैं, फिर देखते हैं, फिर केयर करते हैं।
4: अभी आप ये सारी लाइंस देखो, वीड्स हटाओ, पहले सॉफ्ट करो उसको, पानी डालो, फिर बीज डालो और फिर प्रोटेक्ट करो।
3: बट नर्चरिंग आई थॉट वॉज ओनली फॉर चिल्ड्रन।
4: नर्चरिंग इज फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन।
3: नहीं, बट आज तक मैं नर्चरिंग अपने बच्चों के लिए सोचा था, अभी आपसे
4: बात। नर्चरिंग हम एक्सटर्नल करते हैं, नर्चरिंग पालना एक्सटर्नल के खाना।
3: इवन विद द स्टाफ नर्चरिंग, आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट।
4: सोल को नर्चर कर रहे हैं ना हम, फिजिकल नर्चरिंग।
3: वहाँ तो एक्सपेक्टेड है कि तुमको पेमेंट दे रहे इतने महीने के साल महीने में, सो यू शुड बी ऑलरेडी नोइंग दैट यू पेड फॉर इट।
4: नर्चरिंग एवरी सोल इज द पर्पज ऑफ आर लाइफ।
3: ब्यूटीफुल।
4: नर्चरिंग एवरी सोल। अब जैसे आपने कहा, बीज को डालने के लिए भी कितनी पहले सॉफ्टनेस चाहिए उसके अंदर, यही इसका ऑपोजिट कर दिया तो, कि और वीड्स लगा दिए, जमीन को और भी ज्यादा कड़क कर दिया और फिर ठाक करके उस पर एक बीज ऐसे फेंक दिया,
3: मर जाता है वो।
4: ये हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले अंदर क्रिटिसिज्म की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये सिर्फ उस टाइम नहीं हो रही जब वो इंसिडेंट हो रहा है। सपोज ये स्टाफ को ही फिर से लेते हैं कि दवा हाथ में डाली। अब दवा हमें पता है हाथ में नहीं डालनी चाहिए, हमें नॉलेज है। पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज उनको, हम कभी भी कोई दवाई हाथ में रख के नहीं खाएंगे, उसमें से ही निकाल के खा लेंगे या फिर हाथ पहले धोएंगे फिर खाएंगे। पहली बात उनको वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब हम देख देख के उनको जब इरिटेट होते हैं, फिर आपने कहा पीछे बाद में वाइफ को भी बोलते हैं, तो ये वैसे भी इतनी टर्बुलेंट एनर्जी।
3: व्हाइल स्पीकिंग टू द वाइफ भी उसको थॉट जाती है क्या?
4: वही ना, इसीलिए तो
3: तब भी जा रही है,
4: तब भी तो जा रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
3: माई थॉट की मैं अकेले में जब बैठ के उसके
4: क्यों, जब बात करेंगे तो
3: इवन हम जैसे अभी मैं जब बोल रहा हूँ तभी भी जा रही
4: है। नेगेटिव सोच रहे हैं ना आप उस आत्मा के लिए। अगर आप उस आत्मा के बारे में जो सोचेंगे, सी वी ऑलवेज सो कि दो आत्माओं का एनर्जी कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है ना, वी आर ऑल नेटवर्क लाइक दैट। हम जिसके लिए जो सोचेंगे वो वाइब्रेशन रेडिएट हो गई। क्यों, दूर बैठे भी रिश्ते या तो बहुत प्यारे हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। तो हमने क्रिटिसिज्म की एनर्जी सिर्फ जब वो सिचुएशन आई तब नहीं क्रिएट की, हमने पहले भी क्रिएट की हुई है। तो उस आत्मा को हमारे से वो एनर्जी ऑलरेडी एक जैसे मिल रही है, फिर जब वो सिचुएशन आई तब तो हम थोड़ा सा इरिटेट भी हो गए, विच मीन्स हमने वीड्स पहले ज्यादा लगाए जब भी हम उसके लिए सोच रहे थे, सिर्फ उस बात के लिए नहीं और बातों के लिए भी, जब भी उसके बारे में बात कर रहे थे मतलब वीड्स और लगाए, फिर हमने उस समय इरिटेट भी हो गए, तो मतलब हमने जमीन को और ज्यादा कड़क कर दिया। और ये सब करने के बाद हमने उसको एक अच्छी बात बोली, पता है दवाई ऐसे नहीं खिलाते, तो वो बीज कहाँ जाएगा, वो बीज डलेगा ही नहीं, वो बीज डलेगा ही नहीं। एनर्जी एक्सेप्टेंस, और उसमें सिर्फ सिंपल चीज पहले क्या करनी है, किसी का संस्कार मेरी मन की स्थिति को नहीं हिलाएगा। जैसे मेरी मन की स्थिति नहीं हिली, वीड्स हट जाएंगी, जमीन सॉफ्ट हो जाएगी, पानी डल जाएगा, अब आप बीज डालिए। सिर्फ हमारे एक्सेप्ट करने से, सिर्फ हमारे स्टेबल रहने से ये सारी चीजें हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं करना है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज
3: एक्सेप्टेंस में मुझे भी ऐसे लग रहा है कि इवन बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर जनरली इफ आई स्टार्ट लविंग पीपल, तो पूरा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा।
4: दैट ओनली, लव मीन्स एक्सेप्टेंस।
3: नहीं,
4: लव मीन्स एक्सेप्टेंस
3: एक पार्ट है उसका।
4: एक्सेप्ट करे बिना आप कह नहीं सकते कि आप किसी से प्यार करते हैं।
3: अच्छा।
4: प्यार की एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं।
3: नहीं, मैंने कहा इन जनरल, लव द स्टाफ, लव द पीपल।
4: सो लव मींस व्हाट, सेंड देम व्हाट,
3: ओरिजिनल लविंग वाइब्रेशन, लव, सेंड देम लव,
4: सेंड देम लव, व्हिच मींस यू हैव एक्सेप्टेड देम। आपने जैसे एक्सेप्ट नहीं किया किसी को, आप डिस्टर्ब हुए, लव ब्लॉक हो गया, जाएगी नहीं।
3: वेयर इज द फॉल्ट, वेयर डज इट लाई, कि एक बार मुझे एक चीज अच्छी लगी आपकी, फिर 10 चीज अच्छी लगी, फिर 11वीं पे मैं फिर चिढ़ गया। तो एक बार मतलब वंस आई लव यू वंस आई डोंट लव यू आई लव यू,
4: नो इट्स नॉट वंस आई लव यू वंस आई डोंट लव यू। जब मैं चिढ़ गया मेरी प्यार की एनर्जी रुक जाती है।
3: तो वेयर डज द फॉल्ट लाई कि मैं उनके 10 अच्छे पॉइंट में एक्सेप्ट किया, 11वें में चिढ़ गया, इज इट दैट कि मैं अभी तक कच्चा हूँ?
4: 10 उनकी बातें वैसी थी जो मुझे अच्छी लगती हैं, एक उनकी बात वो थी जो मुझे सही नहीं लगती।
3: हाँ, लेकिन द गोल आई वॉन्ट टू रीच, जिस सड़क पे मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ अभी मेरी कमजोरी है ना, वो
4: ये हमारी ही कमजोरी है ना। दूसरे की जो है संस्कार वो तो दूसरा वर्क करेगा उसमें। मुझे अपनी प्यार की एनर्जी को कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रखना है।
3: कॉन्स्टेंटली, आई गेस दिस इज द राइट वर्ड।
4: राइट,
3: जब कॉन्स्टेंट नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी,
4: हाँ,
3: तो फिर स्टिल दैट मीन्स वहाँ अभी मैं कच्चा हूँ।
4: इट्स लाइक अगर हम फिजिकली देखें, मुझे अपनी हेल्थ को कॉन्स्टेंटली अच्छा रखना है। 10 दिन अच्छी, फिर एक दिन बीमार, फिर 4 दिन अच्छी, फिर एक दिन बीमार, मुझे ऐसे नहीं करना है। आई वांट टू वर्क ऑन माय सेल्फ। तो एक बार मुझे दिखा कि मेरी तबीयत किन चीजों से खराब हो रही है, फिर मैं बैकवर्ड जाके उन चीजों को रेक्टिफाई करूं। जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि ये पर्टिकुलर चीज खाने से मेरी तबीयत खराब होती है, ठीक है, किसी का खट्टा खाने से, किसी का तीखा खाने से, किसी को रात को लेट खाने से, किसी को कम नींद से, वी नो आर पैटर्न्स ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है, पता होते हुए भी, मालूम भी है इसके बाद तबीयत खराब हो गई, फिर भी उस समय वो चीज सामने आ गई, खा लिया। दिस इज अनअवेयर, अनइंटेलिजेंट,
3: खा लिया और पी लिया।
4: सी, नॉलेज जब तक नहीं थी, पहले हमें नॉलेज नहीं थी। जैसे एलर्जी हो जाती है किसी चीज के खाने की, तो पहले हमें नॉलेज नहीं होती कि इस चीज की मुझे एलर्जी है, वी डोंट नो। तो हम खाते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, खाते जाते हैं बीमार, फिर हमें थोड़े दिन बाद पता चल जाता है इस चीज की मुझे एलर्जी है, उसके बाद भी खाना, दैट्स माई चॉइस नाउ। द सेम, अभी हमें पता नहीं था पहले कि किन किन चीजों से मेरी पावर और खुशी और प्यार सब खत्म होता जा रहा है, क्यों मैं इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, अच्छा पढ़ लिख के, अच्छा बिजनेस करके, अच्छा परिवार होके, सब कुछ होके, मैं फिर क्यों बोलता हूँ मैं खाली खाली हूँ। हमें नॉलेज नहीं थी, फिर हमें नॉलेज मिलती है कि ये देखो, ये छोटी छोटी छोटी छोटी चीजें हम सारा, छोटी छोटी, बड़ी वाली भी नहीं, छोटी छोटी छोटी छोटी हम चीजें सारा दिन कर रहे हैं, इससे मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो टुडे नाउ अगेन स्टार्ट, कि आज से ये वाली चीज मैंने नहीं करनी, इससे मेरी शक्ति कम होती है। वो स्टाफ वो बच्चे को दवाई दे रही है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे कई कई कई कई गुणा गड़बड़ मेरे अंदर हो गई उस सीन को देख के, फिर मेरे लिए तो कोई दवाई भी नहीं होगी उसके बाद।
3: वो छोटा मोटा बैक्टीरिया जो बच्चे के पेट में चला जाता था, वो तो उसका इम्यून सिस्टम उसको ठीक भी कर देगा।
4: दिस इज वेरी
3: इम्पोर्टेंट। मेरा तो परमानेंट मार्क है।
4: This is very important. And ये सारा दिन की चीजों में देखो, अब वापस वो गाड़ी को भी देख लो जो रेड सिग्नल पे फास्ट जाती है, वो जाती है तो थोड़ा नुकसान किस चीज का होता, गाड़ी का होता, थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन का होता। जनरली सारा दिन में हम देखेंगे ना, तो बाहर के नुकसान की वजह से हम अंदर अपना कितना नुकसान करते हैं कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, विच इज गुड, वी विल टेक केयर ऑफ इट। लाइट क्यों ऑन छोड़ दी, हाँ तो बोलो ना, लाइट ऑफ कर दो प्यार से,
3: बंद निकले गीजर ही नहीं बंद किया,
4: बंद
3: कभी करते ही नहीं है।
4: तो वी वॉन्ट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी वॉन्ट टू सेव मनी, वी वॉन्ट टू सेव रिसोर्सेज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग आवर सेल्फ। तो फिर ऐसी सेविंग का क्या फायदा होगा?
3: इधर डबल लॉस है।
4: डबल लॉस नहीं है, ये इररिपेरेबल लॉस है। कितना नुकसान हो गया, सेहत पे असर हो गया, उसके सामने गीजर और बिजली और पेट्रोल और ये व्हाट इज इट, नथिंग। सो दिस वी हैव टू ऑलवेज सी कि किस चीज को बचाने के लिए किस चीज का नुकसान हो रहा है। तो पहले अपने को बचाएंगे, फिर उन चीजों को बचाएंगे। That is something which we will have to put it on our priority list. Ki we are going to start accepting small things first.
3: This was wonderful, sister. Ek chota sa meditation kar le.
4: Theek hai. Aaj hum meditation mein apne aap ko prepare karte hain koi choti aadaton ko accept karne ke liye. To apne samne koi ek atma ko lekar aaye.
3: Okay.
4: Aur uski koi ek aadat, zyada nahi lamba karna hai. सिर्फ एक आत्मा, एनी वन पर्सन क्लोज टू यू, जिसकी आदत को आपको कई बार देखना है दिन के अंदर. तो ब्रिंग बिफोर योर सेल्फ वन पर्सन एंड वन हैबिट ऑफ दैट वन पर्सन, जो हम कहते थे ये मुझे इरिटेट करती है, एंड देन लेट्स मेडिटेट फॉर दैट.
3: श्योर.
4: सिट बैक. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. आई एम अ पावरफुल सोल. आई एम अ मास्टर ओवर माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड संस्कार्स. मैं अपना राजा हूं. किसी की छोटी छोटी आदत मुझे अपने राज्य से हिला नहीं सकती. लेकर आए उनको अपने सामने, जिनकी कोई आदतें आज तक डिस्टर्ब किया करती थी. देखे उनको और देखे उस संस्कार को. आज से विद अंडरस्टैंडिंग कि ये उस आत्मा का संस्कार है, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार. आई एक्सेप्ट दिस संस्कार. आज से ये संस्कार मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा. इंस्ट्रक्शन देंगे, राय देंगे, बात समझाएंगे, लेकिन पहले अपने राज्य में स्थित होकर, कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, मास्टर ओवर माई सेल्फ, and then advise an opinion to others. I accept them as they are. Om Shanti.
3: I accept them as they are. Thank you, sister.
4: Om Shanti.
3: Om Shanti. Om Shanti.
5: Swarajya means rule over the self, where the soul is in charge of its every thought, feeling, sanskar, word and behavior. When we are unable to rule over the self, we look for control over people and situations. If we repeatedly get disturbed by the sanskars of others, then we become a slave to their sanskar. We are unable to remain in our seat of power whenever we encounter that sanskar or behavior. When we accept their sanskar, we remain in our seat of power and become a master. If our thoughts are negative, our energy is turbulent, then our words lack power. Powerless words accompanied by negative energy will not have an impact of transformation on people. A peaceful mind will create powerful words, and these influence people and inspire them to change. Let us make a list of simple habits of people which we are unable to tolerate and get irritated. It is only a programming of the mind. We always told ourselves we cannot tolerate this habit and created irritation. Today, just one thought, I accept this habit of theirs, and from today, their habit will not have any effect on my mind.
4: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरे जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नटखट बंटी. पात्र परिचय. पापा के रूप में सैंडी, मम्मी के रूप में कृष्णा, बंटी के रूप में आदित्य और नरेटर शशिकांत. बंटी के पापा घर के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थे.
4: बिजली का बिल, फोन का बिल, केबल का बिल, पेपर का बिल, ओ मेरी तो पूरी तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है.
5: हाँ पापा, और मेरी स्कूल की फीस में भी तो काफी खर्चा होता है.
4: हाँ बेटा, कल्चर एक्टिविटी चार्ज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, ना जाने क्या क्या चार्ज देने पड़ते हैं.
5: पापा, एक आइडिया है खर्च बचाने का.
4: वो क्या है?
5: पापा, मैं अपने स्कूल से नाम कटवा लेता हूँ, काफी खर्च बच जाएगा.
4: चुप रहो शरारती बंटी, जब देखो तो पढ़ाई से बचने का तरकीब सोचते रहते हो.
5: सॉरी पापा, मैं कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ खर्च कम करने की.
4: ये हुई ना बात, खर्च बचाना ही है तो फिजूल खर्च बचाओ, ना कि जरूर की चीजों की कटौती करके स्कूल जाना ही छोड़ दो.
5: पापा, ये फिजूल खर्च क्या होता है?
4: फिजूल खर्च मतलब बेवजह के खर्च, जैसे बगैर जरूरत के सामान खरीदना, टीवी फालतू चलाना, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ी की सवारी और मुफ्त में पेट्रोल को बेकार जलाना.
5: पापा बस, मैं समझ गया, आज से इस घर में फिजूल खर्च बंद.
6: वाह बंटी, बहुत समझदार हो गए हो. मैंने गलती से गैस खुला छोड़ दिया था, तुमने फौरन बंद कर दिया.
5: हाँ मम्मी, आखिर फिजूल खर्च बचाना है.
4: बंटी, जाओ गोपाल के साथ मेरे स्कूटर पर और लॉटरी से मेरे कपड़े प्रेस करा लाओ.
5: नहीं पापा, स्कूटर से पेट्रोल जलेगा और लॉन्ड्री में प्रेस कराने से खर्च बढ़ेगा. मैं घर पर ही आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ.
3: पापा ऑफिस जाते वक्त अपना नया शर्ट पहन रहे थे, तभी चीख उठे.
4: ओ नो, ये मेरे नए शर्ट रोशनदार कैसे बन गए?
5: सॉरी पापा, प्रेस करते वक्त प्रेस जड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी.
4: भाई बंटी, खर्च बचाने की तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा काम नहीं है. इस तरह तो तुम और भी मुसीबत बढ़ा दोगे.
6: बंटी जरा देख कर आना, काम वाली बाई क्यों नहीं आ रही है? कहीं बीमार तो नहीं है?
5: नहीं मम्मी, बाई को तो मैंने मना किया है. वो क्या है कि फिजूल खर्च बचाना है.
6: ओ नो, फिजूल खर्चे के चक्कर में ये लड़का जीना ही हराम कर देगा. बंटी, आज से तुम खुद की फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करो, ना कि घर बार को डिस्टर्ब करो.
3: रात को बंटी महाराज अंधेरे में बैठकर टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे.
6: अरे शरारती बंटी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया? और ये अंधेरे करके टीवी क्यों देख रहे हो?
5: ओ मम्मी, आपने ही तो कहा था कि खुद की फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करो, इसलिए अंधेरा करके बिजली का बिल बचा रहा हूँ.
3: मम्मी ने समझाया कि अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती है, और इस तरह बंटी को फिजूल खर्च क्या है ये समझाने में मम्मी पापा को काफी मेहनत लगी.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही।

ओरिजिनल प्लान था कि लता के साथ डुएट होगा, तो लता उन दिनों में शायद बाहर गई हुई थी या कुछ प्रॉब्लम था, तो किशोर सजेस्ट थे दादा मैं अगर दोनों वॉइस में खुद गा लूं फीमेल और मेल, तो मैं सोचा जोक कर रहा है, नहीं आपको मैं गा के सुनाता हूँ आप सुनिए, एंड एक्चुअली ही डिड ए वंडरफुल थिंग, इमीडिएटली ही मेड इनटू फीमेल वॉइस एंड इमीडिएटली जंप बैक टू

0: गोरी बढ़ के बुदन चीर भी चक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हट जाओ ना करो।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना हम मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय।

0: साठ साल के और तुम होगी पचपन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

मुझे कुछ होता है आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता।

संभालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है।